ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। आपके बीच होंगे मुनीष चौली जी। 7:02 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सोनू भट्ट के साथ, और 8:02 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9:02 पर कार्यक्रम होगा दिल के तराने गाने नए पुराने, सोनू भट्ट ही ये कार्यक्रम लेकर आएंगे। और हिमानी दत्ता आपके बीच होंगी 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम लेकर।

ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, और इसके बाद होगा कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल, हिमानी दत्ता लेकर आएंगी। रेनबो हेल्पलाइन आप सुन सकते हैं 1:02 पर, और कार्यक्रम आशियाना होगा 2:02 पर। प्रियंका ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। श्रोता सुनेंगे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम गीतांजलि सोनी के साथ 3:00, और 4:02 पर आप सुनेंगे अल्फा जैन कार्यक्रम। सिटी लाइट होगा 5:02 पर, और 6:02 पर आप सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स अमरीन खान के साथ। हमारे श्रोता सुन सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम 7:02 पर लिपिका दास के साथ, और म्यूजिक मस्ती आप सुनेंगे 8:02 पर। खुर्शीद आलम 9:02 पर आपके लिए लाएंगे आपकी याद आती रही, और 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम होगा। श्रोता गजलों का आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम में रंगे महफिल के अंतर्गत 11:02 पर।

0: रेनवाणी आकाशवाणी।
1: छह बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में नक्सलवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका हुर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर से शुरू करेगा।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का। ये प्रोग्राम है सुप्रभात।

0: कमल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप। आज की सुबह आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह मुबारक हो। अजीब सा लगा, मेरे ख्याल से बहुत ही कीमती शब्द हैं ये कि आज की सुबह आप सभी को मुबारक हो, आज के दिन की शुभकामनाएं। कुछ अजीब लगा। सोचिए वो लोग जो शायद ऐसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि आज सुबह है या शाम है। मेहनत मशक्कत करने वाला वो इंसान जो रात भर मेहनत करके बस अब कुछ लम्हे की नींद लेना चाहता है, उसके लिए सुबह की रोशनी क्या मायने रखती है उससे पूछिए। पूरी रात सुख शांति के साथ आप और हम चैन की नींद लेते हैं, लेकिन सरहदों पर वो सिपाही जो आपके और मेरे लिए खड़ा है, रात भर कड़ाके की ठंड में, बारिश में, तूफान में, सुबह की अहमियत उससे पूछिए। सुप्रभात लेकर आए हैं हम ये प्रोग्राम, और हमारा मकसद यही होता है कि हम सुप्रभात में आप सभी लोगों से वो सारी बातें करें जिससे आपका दिन, आपका रुतबा बढ़े, आपका दिन बहुत ही खुशनुमा हो। तो आज फिर आधुनिक काल के एक गुरु के पास चलते हैं। ये वो गुरु हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इनके गुरु ने इनको बताया था कि तुम जब जब मुस्कुराओगे तो बला टलती रहेगी, ये उनके गुरु ने उनसे कहा था। कोई वेदों की बात करता है तो कोई शास्त्रों की बात करता है, आज के युग में कोई उपाय ढूंढता है इसको कैसे सीधा रखें, उसको कैसे अच्छा रखें, उपाय बताइए। तो गुरुओं के गुरु ने मुस्कुराने का ही उपाय बताया कि इससे बलाएं टलती हैं। खुशी जिंदगी में चाहें मुस्कुराहट लेकर आइए, पहले जिंदगी में खुशी आ जाएंगी। बस इसी पाठ के जरिए ये आधुनिक काल के गुरु मुस्कुराते रहते हैं और धीरे धीरे करके उनके तमाम शिष्य बनते रहे। आज स्मृति एक शिष्य है जो आधुनिक काल के गुरु के सामने बैठी है, और वो एक शिकायत लेकर आई है। शिकायत ये कि स्मृति की सुबह सुबह अपने पिता के साथ कुछ अनबन हो गई, किसी बात को लेकर तर्क हुआ, वितर्क हुआ। तो स्मृति अपने गुरु से पूछती हैं कि गुरुजी, आज के युग में देखिए ना, हम मॉडर्न लोग हैं, पिता हमें कैसे बोलते हैं, हमें इज्जत ही नहीं देते हैं। रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना गुरुजी। आधुनिक काल के गुरु

मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने स्मृति, रिस्पेक्ट। एक पिता अपने बच्चों की रिस्पेक्ट अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी के पीछे इसी बात का एक राज छुपा है, सुनना चाहोगी। स्मृति मुस्कुराते हुए हां कहती है। आधुनिक काल के गुरु मुस्कुराते हुए अपनी ज्ञानवर्धक एक कहानी साझा करते हैं।

गुरु कहते हैं, स्मृति सुनो, एक गरीब पिता ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने का फैसला कर लिया था। वो खुद गरीबी में जी रहा था और जब सुबह सुबह वो उन बच्चों को देखता जो स्कूल जाने के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बड़े स्मार्ट से बच्चे अपनी स्कूल बस की प्रतीक्षा करते थे, तो पिता ने कहा, उस गरीब पिता ने, कि मैं भी अपने बेटे को एक दिन अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। होगा ये कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर जब बड़ा होगा तो फिर दायित्व समझेगा, परिवार का, देश के प्रति दायित्व, और देश की प्रगति में और समाज की प्रगति में एक हिस्सेदार बनेगा। पिता दिन रात मेहनत किया करते थे ये ख्वाब देखने के लिए कि अपने बेटे को कब मैं पढ़ लिख के एक सफल इंसान बना सकूं। बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उस गरीब पिता ने रात दिन एक कर दिया। बेटा भी खूब मन लगाकर पढ़ता रहा। एक दिन पिता का ये सपना सच हो गया। बेटा पढ़ लिख कर बहुत सफल भाग्यशाली इंसान बनकर अपना दायित्व निभाने लगा। एक जगह नौकरी कर यह निश्चय किया कि अब अपना ही व्यवसाय शुरू करूंगा, और ये सोचकर अपने व्यवसाय में वो बहुत सफल हो गया। एक दिन उस बेटे को सम्मान दिया गया, उसकी तरक्की के लिए, उसके दायित्व के लिए, उसके योगदान के लिए। बेटे ने बहुत ही आलीशान ऑफिस बनाया और उसमें बैठकर अपने पिता को फोन करके कहा कि पिताजी, मैंने एक ऑफिस बनाया है बहुत ही सुंदर, कुछ लोग मेरे साथ काम करते हैं, आप मेरे ऑफिस में आइए ना। पिता बेटे का ये न्योता सुनकर खुश हो गया है और अपने बेटे के ऑफिस को देखने के लिए निकल पड़े। बेटा अपने ऑफिस की शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था जब पिता वहां पहुंचते हैं। पिता को देख बेटा खुश हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पिता ने बेटे को कुर्सी पर बैठाया और बेटे के पीछे खड़े हो गए और उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का एहसास किसे होता होगा। पिता आगे कुछ बोल पाते तभी बेटे ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी मैं हूं वो सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ने सोचा था कि बेटा उन्हीं को सबसे शक्तिशाली इंसान कहेगा, लेकिन बेटे के इस जवाब से उन्हें बहुत निराशा हुई। पिता ने कहा, ठीक कहा बेटा। इतना कहते ही पिता बेटे के ऑफिस से जाने लगे। मन किया एक बार और पीछे मुड़कर वही सवाल बेटे से दोबारा पूछूं। पिता ने ऐसा ही किया और पूछे, बेटा तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी,

नहीं लग रहा। बेटे ने फिर कहा, नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली इंसान है तो वो आप हैं।

पिता की आंख में आंसू आ गए और पिता ने अपने बेटे से पूछा, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। पिता ने यह बात अपने बेटे से पूछी। बेटे ने जवाब दिया, हां वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के हाथ मेरे कंधे पर थे, इसलिए उस वक्त मैं खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस कर रहा था। बेटे के इस जवाब को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कहानी का सार ये कि माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं। यदि उनका आशीर्वाद है तो हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं, इसलिए हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनके दिए सुझाव को गंभीरता से लें। किस्मत वाले हैं ना वो जिनके पिता उनके साथ हैं। मेरे पिता इस समय मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर आपके पिता आपके साथ हैं तो ये सोच लीजिए कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आपके साथ हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आप उन्हें उनकी पूजा करें। फर्क यही है। सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और आज की सुबह आपको मुबारक हो।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और यहाँ पर हम आधुनिक काल के गुरु के साथ हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी शिष्य स्मृति उनके पास आती है मुस्कुराते हुए, और एक शिकायत लेकर भी कि उनके पिता उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उस पर उन्होंने कहानी सुनाई जो अभी आपने सुनी। आधुनिक काल के गुरु अब स्मृति से पूछते हैं, कुछ पता लगा कि अगर तुम्हारे घर में इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है जो तुम्हारे पिता हैं, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट तभी कर सकते हैं अगर तुम उनसे शक्तिशाली बन जाओ। स्मृति की आंखें झुक गईं, लेकिन आधुनिक काल के गुरु ने अपनी कहानी को एक और मोड़ दे दिया। स्मृति की झुकी हुई आंखें देखकर आधुनिक काल के गुरु ने मुस्कुराते हुए ये भी सोचा कि शायद मैंने स्मृति का कहीं मन तो नहीं दुखा दिया, इसलिए अब वो स्मृति से कहते हैं, स्मृति एक और कहानी सुनाऊं? स्मृति मुस्कुराते हुए सिर्फ कहती है। आधुनिक काल के गुरु फिर बताते हैं स्मृति को कि सुनो, एक गांव में एक पिता थे जो शायद एक वस्त्र पहनकर ही अपना गुजारा करते थे। पिता किसान भी थे, खेतों में जाते थे और अनाज उगाते थे, इस भाव के साथ कि वो अनाज अगर उगे तो उनके साथ साथ उनके आस पड़ोस में लोगों को भी वो अनाज उपलब्ध हो। साथ ही साथ अपनी बेटी को पढ़ाने का दायित्व पिता ने उठाया।

किसान बाप ने कहा कि अगर मेरी बेटी पढ़कर बड़ी होती है तो इस गांव में बाकी सारे बच्चे भी पढ़ने की तरफ ध्यान देंगे। इस प्रयास को देखकर बाकी बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू किया। गांव में स्कूल के जो अध्यापक थे उन पर दायित्व बढ़ता गया और उस दायित्व को वो भली भांति निभाते रहे, मुस्कुराते हुए कि बच्चों का भविष्य बनाना है। उस किसान पिता की बेटी पढ़ाई कर रही थी और पिता ने अपनी बेटी से कहा, सुन बिटिया, अगर तूने 10वीं का इम्तिहान परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर ली तो हम तुम्हें उपहार के रूप में एक बहुत अच्छे होटल में शहर में ले जाएंगे और तुम जो खाना चाहो वो खा सकती हो। ये हमारी तरफ से एक न्योता है। बिटिया ने आंखों में देखा अपने पिता की और बोली, पिताजी, मैं अच्छे नंबरों से पास ही नहीं, मैं तो फर्स्ट आऊंगी। पिता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारा भी वचन है, जिस दिन परीक्षा के रिजल्ट आएंगे तुम्हें शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हम लेकर जाएंगे। एक दिन वो आया जब 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट आए, लेकिन उस बेटी ने फर्स्ट आने के साथ साथ पूरे शहर में टॉप किया और अब बारी थी पिता के वादा को पूरा करने की। पिता बिटिया को शहर ले जाते हैं और वहां के सबसे अच्छे होटल में जब घुसने ही लगते हैं तो वहां पर दरबान उन्हें रोक देते हैं। पिता उन्हें कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची से वादा किया था कि हम शहर के सबसे अच्छे होटल में उन्हें खाना खिलाने ले जाएंगे जब वो 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट आएगी। दरबान उनसे उनकी हालत देखकर अंदर जाने के लिए मना करता है। तभी जाते हुए एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी गाड़ी आके रुकती है, वो उस किसान पिता को देखते हैं ऊपर से नीचे और मुस्कुराते हैं और उस दरबान के कान में कुछ कहकर अंदर चले जाते हैं। किसान पिता को लगा शायद ये बोल के गए हैं कि इस आदमी को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर में होटल के अंदर के रेस्टोरेंट के मैनेजर बाहर आते हैं और आकर किसान पिता और उनकी बेटी को अंदर ले जाते हैं। उस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी टेबल पे बिठाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान उनकी टेबल पर आते हैं। खाना खाकर किसान पिता अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर टेबल पे रख देते हैं, लेकिन बिटिया को पता होता है कि ये खाना 100 रुपए से कहीं ज्यादा था। रेस्टोरेंट का स्टाफ हाथ जोड़कर उस पिता के सामने खड़े हो जाता है और कहता है, आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो, हमारे शहर में हमारी शहर की टॉपर आज हमारे रेस्टोरेंट में आई, हमारे तो भाग ही खुल गए। रेस्टोरेंट मैनेजर की ये बात सुनकर पिता को बहुत नाज होता है। तो उस इरादे पर जो उन्होंने बरसों पहले किया था अपनी बेटी को स्कूल भेजकर, वो दिन याद करके जहां कड़ी धूप मेहनत मशक्कत के साथ हर दिन खेत पर जाते थे, ये ख्वाब साथ लेकर कि उनकी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर बहुत कामयाब बनेगी, पिता हाथ जोड़कर धन्यवाद कहकर उस होटल से बाहर निकलते हैं। लेकिन बेटी मुड़कर एक बार उस होटल को जरूर देखती है।

पढ़ाई जारी रखते हुए वो बेटी आईएएस ऑफिसर बनती है। और फिर एक दिन उसी होटल के उसी रेस्टोरेंट में जाकर अपने पिता को ले जाती हैं और वैसे ही पकवान ऑर्डर करती हैं। और जब वक्त आता है बिल देने का, तो वही बेटी रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहती हैं कि जितने भी लोग आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं और इसके बाद जो आएंगे, उन सब का खाने का बिल मैं पे करूंगी। बड़ा बनने का वो सिलसिला चलता रहा। होड़ लगी थी, प्रतियोगिता थी एक तरह की, कि उस कामयाब सफल पिता की बेटी से बड़ा कोई बने ना बने हुए वो बेटी अपने पिता के सामने बड़ी बन के दिखाएगी। ये बातें कहते हुए आधुनिक काल के गुरु मुस्कुराते हुए अपनी शिष्या स्मृति से कहते हैं, अब पता लगा कि पिता का महत्व क्या होता है। एक पिता ही है जो दौड़े दौड़े अपने बच्चों की सहायता करने, उनको वो सहायता देने पहुंचते हैं जिसकी उन बच्चों को बहुत जरूरत है। पिता भैरव के समान है जो आवाज लगाने पर अपने भक्तों के लिए दौड़े हुए आते हैं। पिता शिव के समान है जो अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं।

Shabon, Tandar, and the Tambor.

आधुनिक काल के गुरु की मुस्कुराहट और उनकी कहानियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो उनकी उनकी शिष्या स्मृति को सुनाई जा रही है, जिन्होंने आते ही अपने गुरु से कहा कि मेरे पिताजी से आज अनबन हो गई और मेरे पिता मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, समझते नहीं है। मॉडर्न टाइम्स के उसको कहते हैं मॉडर्न टाइम्स। टाइम मॉडर्न नहीं होता, समय समय होता है, समय आईना होता है। आज दिखे कल नहीं दिखे साफ साफ। किसी ने तो यह भी कहा है कि आईना हमेशा साफ होना चाहिए, उसी में चेहरा देखना चाहिए। गंदे आईने में चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। मॉडर्न टाइम्स, टाइम मॉडर्न नहीं होते, टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती है। उपलब्ध होने वाली चीजें, वो गैजेट्स, वो मॉडर्न होते हैं। समय, पहले भी दो हाथ थे, दो आंखें थीं, दो कान थे,

स्मृति की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे, लेकिन सर झुका के नमन करके अपने गुरु से कहा, जी गुरुजी। मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, मुस्कुराओगी क्या थोड़ा सा? स्मृति मुस्कुराती है और गुरु कहते हैं, तो सुनो, एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक बच्चा अपने पापा की दुकान पर चले जाता है। वहां जाकर भागे भागे जब वो पहुंचता है, अपने पिता से मिलकर पिता को काम करते हुए देखता है। पिता काम कर रहे होते हैं, एक कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास दबा कर रख देते हैं, फिर सुई से उसी कपड़े को सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। जब बच्चा इस प्रक्रिया को देखता है तो रहा नहीं जाता, उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूं कि आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबा लेते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं, ऐसा क्यों? पिता ने जो उत्तर दिया, मानो जिंदगी का सार समझ आ गया हो। पिता ने कहा, बेटा, जैसे कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है, तो काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है, परंतु जो जोड़ते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, उनकी जगह हमेशा ऊपर होती है। यही तो कारण है कि मैं सुई को टोपी पर लगा लेता हूं और कैंची को पैर के नीचे रख लेता हूं। जिंदगी के बहुत बड़े सबक एक पिता सिखाते हैं, मां बाप सिखाते हैं। अब तक स्मृति की समझ में सब कुछ आ जाता है, इसलिए माता पिता का सम्मान किसी भी टाइम कीजिए।

तो आशा करता हूं आज का सुप्रभात आपको पसंद आया हो। वही कहता हूं जो कहकर प्रोग्राम की आज शुरुआत की थी कि आज की सुबह आपको मुबारक हो और आपका दिन बहुत मंगलमय हो। आज सुबह की शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। आकाशवाणी रेनबो है हम।

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनः परीक्षण की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन नंबर से लॉग इन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में नक्सलवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर से शुरू करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में एजबेस्टेन मैदान पर खेला जाएगा। तो ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अभी तक के मुख्य

बिल्कुल, कितनी अच्छी पॉजिटिव बात कही है ना, कि पूरी तरह से जीना चाहिए आपको अपने प्रेजेंट को, क्योंकि ये जो निशानियां वो हमेशा रह जाती है। और हम कभी कभी क्या होता है, अतीत की चिंता करते हुए भविष्य की हद से ज़्यादा फिक्र करते हुए अपने प्रेजेंट को जीना, अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। तो ज़रूर अपने वर्तमान को जिए। और वर्तमान की बात करें तो दिल्ली NCR में बारिश जो कल देर रात हुई और आज सुबह से हो रही है, उससे ये जो ट्यूज़डे मॉर्निंग है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है। बहुत एक अलग तरह की इसमें हल्की सी ठंडक शामिल हो गई है। और जब आप घने सुबह कहते हैं ना कि नीम अंधेरे घर से निकलते हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं, तो ठंडक आपको थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है अगर बारिश हो रही हो तो। और मौसम बहुत सुहावना हो गया है, भीषण गर्मी और जो उमस थी कल सारा दिन भर, उससे थोड़ी राहत मिली है दिल्ली NCR वालों को। और इसके चलते तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। आसपास हल्की बारिश हुई है और 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR में हल्की बारिश और बादल लगे रहने का जो आसार है वो जताए भी जा रहे हैं। और तेज़ हवाएँ जो हैं वो चलेंगी, उससे भी मौसम खुशनुमा बना रहेगा और लोगों को उमस से राहत मिलेगी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। फिलहाल जो करंट टेम्परेचर है वो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जाएगा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि जब हम देखें 48 डिग्री से तो बहुत कम है। और एक अच्छा कुल मिलाकर दिन आपको मिलेगा और रेनबो पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते चले जाएंगे। ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट। दिल्ली NCR में आप हमें सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। आप करते हैं DTH का इस्तेमाल तो भी हम आप तक पहुँच पा रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से और साथ ही साथ वेव्स OTT के जरिए भी। दिल से दिल तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह से गुनगुनाते रहिए रेनबो म्यूजिक।

वेल, इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी आप तक पहुंचा देती हूं कि अगर AQI लेवल की बात करें तो बारिश होने की वजह से थोड़ी सी इसमें सुधार आया है, थोड़ा इसमें सुधार आने की वजह से ये पहुंच गया है 88 पर, जो कि मॉडरेट सिचुएशन है फिलहाल के लाइव AQI मैं आपको बता रही हूं। और दिन भर में हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि अगर मौसम इसी तरह से बना रहा और बारिश होती रही तो AQI लेवल में सुधार आएगा, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होगा। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के बाद जुबिन की आवाज़ में अभी आपने सुना, हम ले चलते हैं आपको इतिहास के पन्नों में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आने वाले समय को प्रभावित करती है, अपना प्रभाव छोड़ती हैं। 14 जुलाई का जो दिन है वो भी विश्व और भारत दोनों की ही इतिहास में बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा है जो आप तक पहुँचनी हमें लगता है बेहद ज़रूरी है। 1789 की बात करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति के दौरान बैस्टिल की ऐतिहासिक जेल पर जनता ने अधिकार कर लिया और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की विधिवत शुरुआत मानी जाती है, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म दिया। 14 जुलाई 1914 की बात करें, जब अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट एच गोडार्ड ने

तरल ईंधन से चलने वाले दुनिया के पहले रॉकेट डिजाइन का जो था पेटेंट वो हासिल किया था। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट्री की जब हम बात करते हैं उसकी नींव बनी थी। ये पेटेंट जो था वो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद जो हम ये वैज्ञानिक थे गोडार्ड, इन्होंने 1926 में तरल ईंधन का प्रयोग करके दुनिया के पहले सफल रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। जब हम स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो वहाँ इनका योगदान बहुत हद तक सामने उभर कर आता है। बात 2015 की करेंगे, जब प्लूटो की पहली क्लोजअप तस्वीरें पहुँची सभी तक। 14 जुलाई 2015 को नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने इतिहास रचा। ऐसा करके ये अंतरिक्ष यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा और इस दौरान इस यान ने प्लूटो और उसके शारॉन की पहली बेहद स्पष्ट और क्लोजअप तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। और इस दौरान उसने उस ग्रह की बर्फीली पहाड़ियों, उसके दिल के आकार की स्थिति जिसे टॉम्बो रोजो कहा जाता है, उसकी तस्वीरें, उसके वातावरण की परतों की शानदार तस्वीरें ली। और इस मिशन ने सौर मंडल के बाहरी हिस्सों को समझने की दिशा में एक नया दरवाज़ा खोल दिया और वैज्ञानिकों को कई नई जानकारियां इसके माध्यम से उपलब्ध हुई। इतिहास में और भी कुछ बाकी है इस गाने के बाद आप तक पहुँचेगा।

इस ब्यूटीफुल गाने के बाद मैं बताने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही काम की बात, वो ये जो कि जुड़ी है हमारे इतिहास से। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाने पर जाने से पहले कि इतिहास से जुड़ी कुछ खास बात अभी और रह गई है। कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं इतिहास में जो दर्ज होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, आज जब हम देखते हैं कि हिस्सा बन चुके होते हैं। 14 जुलाई की बात करें तो इस दिन मशीन से बर्फ जमाने का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। 1850 की बात है, डॉक्टर जॉन गोरी ने दुनिया के सामने मशीन से बर्फ बनाने का, कृत्रिम बर्फ बनाने का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। फ्लोरिडा में आयोजित इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी थी। इसके पीछे, इस आविष्कार के पीछे जो उनकी मंशा थी वो ये थी, क्योंकि वो अमेरिकी चिकित्सक थे, मूल रूप से इस मशीन का आविष्कार उन्होंने किया था जो येलो फीवर आता है तो उस दौरान जो कि उष्णकटिबंधीय बीमारियां होती हैं या दूसरी बीमारियां होती हैं जिनमें जो शरीर है वो गर्म हो जाता है, उससे पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए उनके कमरों का तापमान जो है वो ठंडा रखने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इस आविष्कार को किया था। और इस ऐतिहासिक घटना के बाद से ही आधुनिक रेफ्रिजरेटर, जिनको हम देखते हैं एयर कंडीशनर्स, और कोल्ड स्टोरेज की तकनीक का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था। देखिए, उन्होंने सोचा किसी की भलाई के लिए और आगे चल के ये चीज़ जो है वो ऐसे काम आई कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हो चुकी है कि हम अपने घरेलू जीवन में भी इसको देखते हैं और हॉस्पिटल्स में, बाहर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह ऑफिसेज में इस तरह की जो एयर कंडीशन और फ्रिज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सब देखने को मिलती है हर जगह, बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो ये आविष्कार इनके नाम है, उपलब्धि इनके नाम है। तो ये खबर, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इतिहास से जुड़ी बातें हैं मैंने आप तक पहुँचाई ताकि आपकी और मेरी जो जानकारी है वो लगातार इसी तरह से बढ़ती रहे आसपास की चीज़ों के बारे में, घटनाओं के विषय में। और अभी क्योंकि बारिश का जो मौसम है, कल देर रात भी बारिश हुई, आज सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई है दिल्ली NCR में, तो यहाँ आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हम तक ट्रैफिक की अपडेट पहुँचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या ज़रूर हो जाती है, कहीं वाटर लॉगिंग हो जाती है, कहीं पर जाम की स्थिति हो जाती है। हालांकि अभी बहुत सुबह है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह की कोई परेशानी दिल्ली NCR वालों के सामने आ रही है तो ज़रूर बताइए 9868107070 पर, जहाँ पर सड़कें बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताइए। देखिए, अच्छी खबरों का भी जाना उतना ही जरूरी होता है जितना परेशानियों का साझा होना, है ना। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो। बताइएगा 9868107070 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, जहां जहां आप जाएंगे हमें ही पाएंगे। हम पहुंच रहे हैं दिल से दिल तक, आपके आप तक, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर पूरे भारत वर्ष में और दिल्ली एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर के जरिए और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है हमारा वीव्स के नाम से, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं और डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंच रहे हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं आज के दिन से जुड़े हुए एक खास नाम की, एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम बात करें गोपाल गणेश आगरकर जी की, जिनका 14 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के तेमू नामक जगह पर जन्म हुआ। उन्हें पुणे के दक्कन कॉलेज में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और उसके बाद अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने देश और समाज की सेवा का जो व्रत था, प्रण था, वो ले लिया था। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भारत के प्रसिद्ध समाज सेवकों में से एक रहे, जिन्हें एक पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्धि मिली। गोपाल गणेश आगरकर की बात करें तो 1892 में, इनके 1892 में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए और जीवन पर्यंत ये इसी पद पर रहे। बहुत ही उदार विचारों के व्यक्ति रहे और उन्होंने छुआछूत का और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। विधवा विवाह की बात की जाती थी उस समय, उसके ये पक्षपाती रहे, उसका पक्ष लेते रहे और उनका कहना था कि लड़के और लड़कियों की विवाह की उचित और जो उम्र है वो सुनिश्चित होनी चाहिए और उसी के अंतर्गत ये कार्य किया जाना चाहिए। 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए और सह शिक्षा, जिसे हम कोएड एजुकेशन कहते हैं, इसका भी समर्थन उन्होंने किया। सांप्रदायिक एकता के समर्थक रहे और ये मानते थे कि अगर आर्थिक उन्नति चाहिए देश को तो देश का औद्योगिकीकरण बेहद ज़रूरी है। इनका निधन हुआ 17 जून 1895 में और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इस दुनिया से विदा ली। हम इन्हें याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसी तरह के लोग अपने जीवन को मिसाल बना जाते हैं और हमारे सामने रखते हैं उसे एक प्रेरणा की तरह। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जीवन विचारों को अपने जीवन में ढालना चाहिए।

बिल्कुल जी, खुद ही तो है हम किनारे, हमें अपने किनारे खुद ही ढूंढने होंगे, हमें अपना इतिहास खुद ही रचना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट कम्बक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को 270 रनों से करारी शिकस्त देते हुए पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की और लॉर्ड्स में तिरंगा लहराया। भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से ही शानदार खेल दिखाते हुए मेजबान इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और रनों के लिहाज से भी देखें तो भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक टेस्ट जीतों में से एक है ये और सभी तरफ से, चारों तरफ से उन्हें बधाइयां पहुंच रही हैं। हर कोई अपने लेवल पर, अपने स्तर पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया जब आप देखते हैं वो भरे हुए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन से। बहुत अच्छा खेल, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा कहते हैं दृढ़ निश्चयता का परिचय इन्होंने दिया और ये जो जीत है अपने नाम की, हमारी तरफ से भी, रेनबो की पूरी टीम की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के लिए।

0: और बिल्कुल, अब अगली जो बात है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सभी जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। 4 दिवसीय है, 14 से 17 जुलाई तक ये चलेगी। अभी इसका उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देख पाएंगे, जान पाएंगे। और भारत टेक्स 2026 के नाम से है ये आयोजन। देश के वस्त्र उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बनने जा रहा है, जहां खेत से मिलने वाले प्राकृतिक रेशों से लेके तैयार परिधान और विदेशी बाजारों तक की पूरी यात्रा एक ही छत के नीचे सिमटी नजर आने वाली है। 5F विजन के तहत इसमें काम किया जाएगा, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। और इसी से प्रेरित है हमारा ये भारत टेक्स 2026 जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो प्रदर्शक हैं, प्रदर्शन किया जाएगा चीज़ों का और बहुत से दर्शकों के आने की उम्मीद है, खरीदारों के आने की उम्मीद है। बहुत सारे उत्पाद जो हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा और इसका जो मेन मोटिव है वो यही है, एक वैश्विक मंच पर हमारे जो टेक्सटाइल है उसको प्रमोट करना, उसको पहचान देना, उसकी एक जो झलक है वो दिखाना। क्योंकि भारत की वस्त्र परंपरा की बात करें तो सिर्फ कर्गो और कपड़ों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक, नवाचार और वैश्विक कारोबार में भी अब एक नई पहचान बना चुकी है। और यही सब एक बड़े वैश्विक पटल पर दिखाना इस मेले का, जो कि पूरे 4 दिन चलने वाला है, उसका उद्देश्य भी है। तो मौका मिलेगा तो ज़रूर आप इसमें जाइए, अपने समय को यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।

वेल तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम का सदुपयोग कीजिए. और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं हमें बल्लभगढ़ सोना रेलवे रोड पर, रेल जो पुल है उस पर थोड़ा ट्रैफिक है, बताने वाले हैं फरीदाबाद से दीपक खत्री साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई है. और अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ और गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे हिस्से के साथ मुनीश आ गए हैं स्टूडियो में, तो आप उनके साथ बने रहिए. देश दुनिया की खबरों को जानने के बाद कार्यक्रम का सिलसिला वो आगे बढ़ाएंगे और आपकी मेरी मुझे मुलाकात है वो होगी अब 9 से 10 के बीच में, दिल की तरानी गाने नए पुराने में. तब तक इंजॉय करते रहिए आप रेनबो म्यूजिक, दिल से दिल तक. One more time.

8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुरमूज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। अमेरिकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा है। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये दूसरा अंश आप सभी के लिए यहाँ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूँ आपका दोस्त मुनीश जॉली।

गुड मॉर्निंग, जल्दी NCR सुन रहा है। मेरा नाम है मुनीश जौली और जानते हैं दोस्तों कि वॉकिंग स्टिक और बैटन सिर्फ काम की चीज़ें नहीं हैं। वॉकिंग स्टिक और बैटन की मैं बात कर रहा हूँ और ये कारीगरी, मजबूती और कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। इस अनोखी विरासत को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज नई दिल्ली में वॉकिंग विद लेगेसी, फ्रॉम नेसेसिटी टू आइडेंटिटी, विरासत के साथ चलना, जरूरत से पहचान तक, इस नाम से एक खास प्रदर्शनी आयोजित करेगा। और ये प्रदर्शनी PMML तोशाखाने की चीजों का एक खास संग्रह है जिसमें पहचान और शासन के प्रतीक के तौर पर वॉकिंग स्टिक और बैटन दिखाए जाएंगे। इनके इस्तेमाल के आधार पर वॉकिंग स्टिक और बैटन सादे या बहुत सजे धजे हो सकते हैं। इनके हैंडल और डंडे को हाथी धात, हड्डी, पीतल, चांदी, तांबा, सोना, रत्न और इनामल जैसे चीज़ों से सजाया जाता है। तैयार होने के बाद इन चीज़ों को जोड़ा जाता है और सुरक्षा व मजबूती के लिए मोम, तेल, लाख या वार्निश की परत चढ़ाई जाती है। अब इस प्रदर्शनी में सजावटी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी जैसे प्रकृति से प्रेरित डिज़ाइन, फूलों और ज्यामितीय पैटर्न, पारिवारिक निशान, प्रतीक और सांकेतिक डिज़ाइन, खुदे हुए लेख और प्राकृतिक लकड़ी की फिनिश के साथ लाख का काम। ये सब देखने वालों को एक शानदार प्रदर्शन देगा, शानदार चीज़ों के पीछे की कारीगरी की झलक दिखाएंगे। और अगर यहाँ पर आप जाना चाहें तो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जाना बिल्कुल ना भूलें। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीष जौली। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक होते ही बहुत सारी चीज़ों से लोग परिचित हो जाते हैं, है ना। गर्मी इतनी थी उससे शिकायत, बारिश आ रही है तो उससे शिकायत ना करें तो ये अच्छा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कई जगह हमने देखा कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहाँ बिल्डर्स आते हैं और अपना फ़ायदा देखने के लिए, कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनका नक्शा पास किए ही उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पर इस तरह के असामान्य कंस्ट्रक्शंस जो हैं, वहाँ पे दिल्ली सरकार ने अब एक मुहिम चलाई है जहाँ पे एमसीडी के लोग जाकर कहाँ कहाँ अवैध निर्माण है उसकी एक पर्ची बचा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं, और जाके जो भ्रष्टाचार और बिल्डरों के लालच और सुरक्षा मानकों को घोर अनदेखी का जो नतीजा भुगतना पड़ता है लोगों को, उस पर एक मुहिम चलाई गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, और शहरी मामलों के जानकार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नक्शा पास करने की प्रक्रिया है, बहुत जगह वहाँ पर उस चीज़ को नकारा गया है। और उन्होंने अपील की है कि आपके आसपास भी अगर आपको लगता है कि कोई भी अवैध निर्माण हो रहा है तो उसकी जानकारी देने से बिल्कुल हिचके ना, और वो सरकार तक लाएं, बेहद ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप, आपका दिन सुहाना हो यही आशा करके ये प्यार से गीत भी ला रहे हैं।

गुड मॉर्निंग जल्दी एनसीआर आप सुन रहे हैं। आप मेरा नाम है मुनीश जॉली और जानते हैं कि भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये भारत के हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी, जो एक तरफ से करीब 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह हर रोज 2 राउंड ट्रिप करेगी, यानी कुल 356 किलोमीटर का सफर रोज करेगी। इस ट्रेन में कुल 682 सीटें हैं, लेकिन खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों को मिलाकर करीब 2600 यात्री एक साथ सफर कर पाएंगे। अगर आप दिल्ली की सड़कों में, तो सफर गुस्से के साथ नहीं, मुस्कुराहट के साथ कीजिए। मुस्कुरा के गाड़ी चलाना डिफिकल्ट नहीं है, आफ्टरऑल गाड़ी ली है खुशी की बात है ना। लेकिन गुस्से होके दिल्ली में लोग गाड़ी क्यों चलाते हैं? ढूंढता रहता हूं मैं भी खिड़की से मुस्कुराते हुए चेहरे।

ये खबर सुनी आपने कि ब्रैंडन मैकलम ने इंडियन टेस्ट, इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है उसका कोच का जो पद था वहां से इस्तीफा दे दिया है। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड टेस्ट कोच को ढूंढ रही है, वो कोच जो उनकी टेस्ट टीम को चलाए, और उन्हीं नामों में से एक चर्चा में है, राहुल द्रविड़।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

गुड मॉर्निंग, जल्दी इंतजार सुन रहे हैं आप। राजधानी दिल्ली की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने अपनी बहुचर्चित महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना, सरकार की ओर से इस नए नाम को मंजूरी दे दी गई है। सबसे खास बात यह है कि इस नई योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपये

और दिल्ली की जान है मानसून। बहुत गर्मी थी सर, बारिश आ गई, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये बारिश लगभग एक हफ्ता रहेगी, तो इसको भी इंजॉय कीजिए, कोई गिले शिकवे मत कीजिए। अच्छी थॉट के साथ आज सुबह घर से निकलिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल इंस्टा पे और बाकी सोशल मीडिया में रील्स बहुत चल रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि ब्लड शुगर लेवल लो करने के लिए आप ये करिए, त्वचा निखारने के लिए आप ये करिए। तो डॉक्टर्स ने अपील की है कि जो काम उनका है उन्हीं को करने दीजिए, आप भी थोड़ा सावधान रहिएगा।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: क्या गुजरेगी।
3: तो आज गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही।
2: साथ किसी
3: हिंदी समाचार के साथ और उसके बाद दिल के तराने गाने नए पुराने ये प्रोग्राम लेकर आएंगी सोनू भट्ट। आप रखिए अपना ख्याल, मॉनसून आ गए हैं। Something that we were waiting for. Let's enjoy our days ahead. Khush rahiye and have a great day.

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनः परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन नंबर से लॉग इन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात UAE के 2 टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज बिहार और ओडिशा में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। अमरीका ने लगातार 3री रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा है। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दिल के दराने गाने नए पुराने में। मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट और यही वो प्रोग्राम जिसमें हम नए जमाने के गीतों के साथ ही साथ पहुंचाते हैं आपको सुनहरे दौर में हमारे सिनेमा जगत के हर 15 मिनट के अंतराल पर, इनकी 9:15, 9:30 और 9:45 पर कुछ खास हस्तियों से जुड़े होने वाले हैं आज के इस सुनहरे दौर के गाने। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए और पहुँचाते रहिए ट्रैफिक की अपडेट 9868107070 पर दिल्ली NCR की।

0: करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हर 15 मिनट पर एक सुनहरे दौर से जुड़ा हुआ गाना आप तक पहुंचेगा, तो बिल्कुल वो गीत आप तक पहुंचने वाला है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई एक खास हस्ती के बारे में भी आप तक बातें पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कंगन की हीरोइन रही लीला चिटनिस की, जिनको पहली बार जो फिल्म में आई तो एक तरह से नारीवाद की पहली अलमरदार माना जाता है, इनकी पहली नायिका माना जाता है। के बारे में मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने यह भी कहा था कि बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से ही बात समझा देने का जो हुनर था ना, वो उन्होंने लीला चिटनिस से ही सीखा था, उनमें बखूबी वो हुनर था। वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1941 में एक मशहूर सोप ब्रांड के लिए एक विज्ञापन फिल्म में भी काम किया था, और उन्होंने उस दौर में फिल्मों में काम करने का फैसला लिया था जब ये इस काम में महिलाएं नहीं शामिल हुआ करती थी। आज जो हम उनको याद कर रहे हैं वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनका एक लंबा जो फिल्मी करियर रहा उसकी भेंट, अपनी लेगेसी को वो हम तक पहुंचाकर आज ही के दिन यानी कि 14 जुलाई 2003 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। उनकी पुण्यतिथि है आज और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लगभग 52 वर्ष का उनका अभिनय का ये जो सफ़र रहा, शुरुआत में वो अशोक कुमार की नायिका रही और बाद में उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के साथ भी काम किया। और जब आप फिल्म देखते हैं गाइड, उसमें देवानंद के जो माँ का किरदार था वो भी उन्होंने निभाया, और इसी तरह तमाम फिल्मों में उन्होंने पहले नायिका फिर सह नायिकाओं के साथ ही साथ फिर माँ का किरदार भी निभाया और अपने हर किरदार को उन्होंने अमर कर दिया, अपनी एक्टिंग से उसमें जान फूंक दी। उनको याद करते हुए हम सुनते हैं गाइड फिल्म से ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप, और इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हम गोल्डन एरा की तरफ जाएंगे और बात करेंगे

मदन मोहली मोहन कोहली साहब की। तो मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हुए हमारे हिंदी सिनेमा में, और बचपन से ही इनका जो झुकाव था वो संगीत की ओर रहा, और शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा भी इन्होंने ली, और अपनी मेहनत और अनुभव से इन्होंने खुद को एक बेहतरीन संगीतकार के रूप में स्थापित किया हमारी इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। शुरुआत में इन्होंने सेना की भी नौकरी की थी, लेकिन उसके बाद संगीत में इनका ज़्यादा रुझान था, तो फिर ये उस नौकरी को छोड़ आ गए। ऑल इंडिया रेडियो इन्होंने ज्वाइन किया, लखनऊ और दिल्ली में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पे काम किया, और वहाँ इनकी मुलाकात काफ़ी दिग्गज कलाकारों से हुई उस समय के, और इन्हें काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। उसके बाद इनके फिल्म करियर की जो शुरुआत हुई वो एक सहायक संगीतकार के तौर पर हुई, जो कि 1950 में आई फिल्म आँखें थी। और उसके बाद शुरुआत होने के बाद 1950 में जब फिल्म आँखें आई, तो वहाँ से इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में एक पहचान मिल गई। और उसके बाद तो एक से एक बहुत सी फिल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया, सभी बड़े जितने भी उस समय के गायक गायिकाएं थे उन सभी के साथ इन्होंने काम किया। 14 जुलाई 1975 को महज 51 साल की उम्र में इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली। उनका सफ़र बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी बनाए गीत, उनकी धुनें आज भी भारतीय संगीत की सबसे अनमोल विरासत में से एक मानी जाती हैं। उन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया चिराग फिल्म से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं। और 9:45 का जो गाना रहेगा हमारा तीसरा गाना रेट्रो फ्लेवर लिए हुए, वो भी उन्हीं का कंपोज किया होगा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो तीसरा और आखिर गाना होगा रेट्रो एरा का, वो भी होगा मदन मोहन कोहली द्वारा बनाया हुआ, उन्हीं के कंपोजिशन में आप तक पहुंचाऊंगी। तो फिल्म है वो कौन थी, 1964 में आई ये फिल्म। साधना और मनोज कुमार इसमें नजर आए। एक सस्पेंस थ्रिलर थी ये फिल्म और इसे बनाया था राज खोसला साहब ने, और इसमें म्यूज़िक मदन मोहन साहब का था। और बहुत ही ब्यूटीफुल गाना जो कि आज भी उतनी शिद्दत से सुना जाता है, पसंद किया जाता है, ये गाना उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया जो सबकी ज़बान पर है।

तो इतना ही ब्यूटीफुल ट्रैक, और उसके बाद मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त यहाँ से जाने की, फिर किसी खूबसूरत मोड़ पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। हिमानी आ गई हैं आपके लिए लेकर मैचलेस म्यूजिक का, देश विदेश की खबरों को जानने के बाद आप इस प्रोग्राम को उनके साथ इंजॉय करेंगे, तो उनके साथ बने रहिए, अपने फीडबैक्स हम तक पहुँचाते रहिए, बारिश का मौसम का इस बदलते मौसम का मज़ा लेते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: Gary Lewis with The Rhythm of the Rain, and we will surely be talking more about the rain a little later on the show. But for now, please stay tuned in and stay with me as I go in for an itsy bitsy little break. And of course, needless to say, I will see you on the other side.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक, यू विद अस ऑन आकाशवाणी रेनबो एंड All of us have a certain kind of life and we have created a routine of our own kind around it. However, despite all the sincere efforts to stick to that routine, boredom does set in occasionally and we look for an escape for something. Moreover, all that discipline and trying to stay organized can actually be very exhausting at times. And gradually, the exhaustion begins to take a toll on our well-being. So once in a while, break away from all of it. And once in a while, let chaos rule for some time. And then we can get back in form again. Don't think twice. It's absolutely all right.

0: From the 1954 classic film Boot Polish, this was the invincible Manade. I hope you enjoyed that classical touch of music which I tried to bring for you. And of course, the lyrics by Hasra Jaipuri and music was given by Shankar Jaikishan. The song conveys longing, survival and hope against the bleakness of a situation that one is in. It also acts as an impassioned prayer for rain to fall and rescue the parched earth. And of course, in the context of the film, this desire for rain symbolizes a desperate craving for a better life and an end to the ongoing suffering of the people. And of course, this one to be watched on video was another visual treat altogether. And yes, moving ahead, I guess it's time for another break. And I will see you on the other side. Please stay with me.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-2029 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीडबोट हादसे के बाद में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। इनमें से 3 शव आंध्र प्रदेश पहुंचाए गए हैं। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य के से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात UAE के 2 टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौसम विभाग ने आज बिहार और ओडिशा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने लगातार 3री रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा है। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। फीफा विश्व कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर ये शो है रेनबो। आकाशवाणी रेनबो पर शो है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ आज है बबीता त्रिपाठी और बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें भी और ढेर सारे गाने भी यानी बहुत सारे मनोरंजन के साथ एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए शुरू हो चुका है शो बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। ढेर सारी न्यूज अपडेट्स, आपके लिए सवाल और भी बहुत कुछ। तैयार रहिएगा इस घंटे धमाल कमाल और बवाल मचाने के लिए।

बाजी वाशो शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स। तो एकदम बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर दिल से दिल तक। फिलहाल आपको बता दूं कि आपके लिए क्या क्या कुछ इस शो में शामिल होने वाला है। शो में बहुत सारी आपके लिए ताज़ा ताज़ा और एकदम मज़ेदार आपकी पसंद की खबरें होंगी, वो भी बॉलीवुड से रिलेटेड। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, साथ में जुड़िएगा एक सवाल के लिए भी लगभग 11:30 बजे। वो सवाल आपसे पूछा जाएगा और उसका जवाब अगर आपने सही दिया तो क्या पता आज बॉलीवुड सरताज आप ही बने। बॉलीवुड सरताज हमसे बात करते हैं और अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाते हैं। तो क्या है आप तैयार बॉलीवुड सरताज बनने के लिए? नहीं भी बनेंगे तो आपका नाम तो शामिल जरूरी होगा, तो इतना भी बुरा सौदा नहीं है। आप सब ध्यान से सुनिएगा क्या सवाल पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे। और एक क्लू और दे दूं कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी उन्हीं में से एक सवाल होगा और वो सवाल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही आपको देना है, यानी जवाब भी देना बिल्कुल फ्री है। तो आप कहीं मत जाइए, बस ऐसे जुड़े रहिए, इंजॉय करते रहिए धमाकेदार शो बीटी विद बीटी वे में।

तो बॉक्स ऑफिस का थोड़ा सा हाल जान लेते हैं। बहुत सारी मूवीज हैं जो चल रही हैं, लेकिन कौन सी ऊपर कौन सी नीचे थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। आप क्या पता अपनी मूवी अभी देखने के लिए डिसाइड ही ना कर पाए हो, तो कौन बताएगा, मैं ही तो बताऊंगी ना। बॉलीवुड ट्रेल्स सुन रहे हैं आप, मैं आपके साथ हूँ बबीता त्रिपाठी। बॉलीवुड ट्रेल्स में अगर बबीता त्रिपाठी आती हैं तो मिल जाता है बीटी विद बीटी बनकर, और जब बीटी विद बीटी बनता है तो धमाल कमाल होता है और ढेर सारी बातें होती हैं। अभी फिलहाल किस बारे में बात हो रही है, बॉक्स ऑफिस की बात हो रही है। वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और क्या कमाल दिखा रही है, अगर जानना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पता नहीं करना है, बस ये पता करना है कि आखिर इसका कलेक्शन में गिरावट आ रही है या उछाल आ रहा है। तो भाई गिरावट ऑब्वियस सी बात है आ रही है। वेलकम टू द जंगल में भी 18 दिन रिलीज को हो गए हैं, लगभग सिर्फ 30 लाख रुपए का कलेक्शन ये मूवी कर पाई मंडे को, और छुट्टियों में थोड़ा सा ज़्यादा 1.90 करोड़, और कुल अब तक की कमाई देखा जाए, ये संडे की बात थी, और कुल अब तक की 129.85 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा लिए हैं। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी बातें, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी। रही बात अल्फा की, तो अल्फा ने भी 11वें दिन, यानी इस मूवी को बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, 11 दिन हो गए हैं, तो 41 लाख रुपए मंडे की कमाई, और रविवार की कमाई 2.25 करोड़, और इस तरह से 51.1 करोड़ ही ये मूवी अब तक कमा पाई है। और अब सब की निगाहें टिकी हुई हैं उस मूवी पर जिसकी वजह से इन मूवीज़ की कमाई में गिरावट आई है, और वो मूवी कौन सी है? यस, धमाल 4। धमाल 4 की बात करें तो इस मूवी ने बहुत धमाल तो नहीं मचाया, लेकिन हाँ, इस मूवी ने बाकी मूवीज़ की कमाई पर असर ज़रूर डाल दिया है। तो धमाल 4 अभी बहुत अच्छी कमाई नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक कमाई शुरुआत अच्छी करी इसने। चौथे दिन का जो कलेक्शन है काफ़ी घट गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि मूवी क्या पता आगे चलकर चले बहुत ज़्यादा या नहीं भी चल सकती है। टोटल कमाई 70.23 करोड़। फिलहाल अभी 4 ही दिन हुए, तो हो सकता है अभी आगे प्रदर्शन अच्छा हो, क्योंकि मंडे में जिस तरह से गिरावट आई है, 5.23 करोड़ ही कमा पाई है, उसे ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत अच्छा कलेक्शन शायद नहीं कर पाएगी। बाकी वीकेंड बताएगा। और

और अब एक और कहर कुड़ी की बात कर लेते हैं, वो है आलिया भट्ट। अल्फा में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन हाँ अगली उनकी आने वाली मूवी पर सबकी निगाहें टिक चुकी हैं और वो है एक हॉरर थ्रिलर मूवी। और वो मूवी कौन सी है? वो है तुम्बाड 2। यस, तुम्बाड 2 2024 में सोहम शाह स्टारर ये मूवी रिलीज की गई थी। उसके बाद अब तुम्बाड 2 आ रही है और इसमें जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। और इस मूवी की अब अपडेट आई है कि आलिया भट्ट इस मूवी में है और उसके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात भी चली थी कि वो इस फिल्म से जुड़ रहे हैं, तो भी चर्चा गर्म हो गई है। और अब एक नई अपडेट ये आई है कि रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। तुम्बाड पार्ट 2 की रिलीज डेट कौन सी है? ये है 3 दिसंबर। यस, इसी साल 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को ये मूवी थिएटर्स में आ जाएगी। तो अगर आपको देखना है या नहीं देखना है वो बाद में डिसाइड करना है, लेकिन जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुंचती जाएंगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आलिया की अगली मूवी होगी तुम्बाड 2।

हाँ, तो मैं कह रही थी कि अब जब इस गाने से सलमान खान की याद आ ही गई है, तो मुझे लग रहा है कि सलमान खान की आने वाली मूवी कौन सी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आने वाली मूवी उनकी मातृभूमि चर्चा गरम है इस मूवी की, और हम सब तो इंतज़ार कर रहे थे कि 2026 में ये मूवी आ जाती तो हम सब देख लेते आखिर क्या है इस मूवी में खास। और काफ़ी बातें इस पर ऑलरेडी हम करते रहते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि मातृभूमि की जो रिलीज़ डेट है ना, वो कन्फर्म ही नहीं हो पा रही है। अब सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ की जो रिलीज़ डेट है वो तय हो गई हैं। ऐसे में अब इस मूवी की टीम को लग रहा है कि जब ये मूवी आए तो एकदम अलग आए, ऐसे टाइम पर आए जब यही हो और अच्छी कमाई कर जाए, सभी की यही तमन्ना होती है। तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मूवी की रिलीज डेट 2026 नहीं होगी, मूवी की रिलीज डेट टाल दी गई है। तो ऐसे में हम दबंग खान की मूवी का थोड़ा सा इंतजार लंबा कर सकते हैं। वैसे हम तो उनकी मूवी का इंतज़ार करते रहते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दुख है, लेकिन ये खुशी है कि मूवी तो आएगी और कुछ ना कुछ डिफरेंट लाएगी इस बार, ऐसी उम्मीद है ना।

अब दबंग के बाद धुरंधर की बात कर लेते हैं। धुरंधर क्या कर रहे हैं आजकल और कौन सी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं ये भी तो जान लेते हैं। एक्चुअली रणवीर सिंह अभी डॉन 3 से तो किनारा कर चुके हैं, आप सब जानते हैं कितनी चर्चा हुई इस बारे में, लेकिन अब रणवीर सिंह किस मूवी को लेकर आ रहे हैं ये भी बता चुकी हूँ, अगर याद ना हो तो बता दूं, प्रलय लेकर आ रहे हैं। प्रलय, अब मूवी आने के बाद क्या प्रलय आएगी ये देखने वाली बात होगी। बॉक्स ऑफिस की बात कर रही हूँ, वैसी वाली प्रलय नहीं, लेकिन हाँ रणवीर सिंह ने जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं या उनकी टीम ने जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, लग रहा है कि इस मूवी में बहुत कुछ है खास, क्योंकि ये मूवी दो बार में शूट, दो टुकड़ों में शूट की जाएगी कह सकते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह की अपनी पर्सनल प्लानिंग्स भी हैं। और वो क्या है, वो छुट्टी पर जाने वाले हैं, वो भी सुना है पैटर्निटी लीव पर जाने वाले हैं। यस, दो महीने की शूटिंग करेंगे, उसके बाद 2027 में आराम से इसकी शूटिंग करेंगे। तो बात तो तय है कि मूवी इस साल तो रिलीज होने वाली नहीं है, नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी और शूट भी होगी आधी। क्यों? क्योंकि पैटर्निटी लीव पर चले जाएंगे रणवीर सिंह। तो फिलहाल जय मेहता के निर्देशन में बनने वाली उनकी मूवी प्रलय की शूटिंग अगस्त यानी नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी, दो महीने की शूटिंग, उसके बाद ब्रेक, और बाकी की अपडेट जब आएगी आपको पता चल ही जाएगी, क्योंकि आप सुनते रहते हैं बॉलीवुड रील्स किसी के भी साथ। फिलहाल तो हूँ आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी, बीटी विद बीटी चल रहा है ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और हाँ, शो में ये समय होने वाला है थोड़ी ही देर में आपके लिए क्विज लाने का, तो तैयार है ना?

तो जी अब धड़क धड़क धड़क धड़क बजता रहेगा और इसी तरह से बजता रहेगा, लेकिन आपके लिए जो सवाल है उसका समय ना निकल जाए इस बात के को मेक श्योर करने के लिए मैं एकदम आ गई हूँ कि भाई टाइम पर हर काम अच्छा लगता है। तो फिलहाल आपका टाइम हो गया है शुरू कि हम आपसे एक सवाल पूछ लें जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। तो अगर आज बॉलीवुड सरताज आप बन गए तो आपसे बात करेंगे हम डायरेक्टली, आपको कॉल मिलाकर आपकी आवाज़ सुनेगी आकाशवाणी रेनबो की पूरी टीम और साथ में आकाशवाणी रेनबो के लिसनर्स भी। तो कहाँ हैं आप? आप अपना मोबाइल उठाइए, फटाफट व्हाट्सएप मैसेज कर डालिए और सवाल जो है उसको सुनने के बगैर आप मैसेज नहीं करेंगे, आंसर लिखना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका नाम शामिल हो, तो आप क्या करेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जवाब लिखेंगे और फिर जो नंबर मैं आपको भेज बताऊँगी उससे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भेज देंगे। इतनी सी बात है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आने वाली जो मूवी है तुम्बाड 2 उसकी लीड एक्ट्रेस कौन है। इनको इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं और अब आपकी बारी, अपकमिंग तुम्बाड 2 की लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है, यह है आज का सवाल। और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर क्या है, 9868107070 9868107070। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना आंसर भेजना है और सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखना है। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

ये आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और अभी 1947 बंटवारा को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, ये मूवी आने वाली है। वैसे तो मूवी का पूरा नाम इस तरह से है, बंटवारा 1947, लेकिन इस मूवी की नई नई जो अपडेट्स आ रही हैं उससे लोगों का क्रेज़ बढ़ रहा है। और यही है ये नई नई अपडेट्स आने का एम भी। धर्म कर्म का पाठ पढ़ाने वाली है सनी देओल की बंटवारा 1947। रिलीज से पहले ही मेकर्स ने सरप्राइज दे दिया है एक पोस्टर रिलीज करके। वैसे तो टीजर भी रिलीज हुआ तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और पसंद किया गया, लेकिन अब इसका जो पोस्टर आया है वो एक सरप्राइज के रूप में है और उससे लोग कुछ कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुछ धर्म कर्म की बातें भी इसमें होंगी। जिसमें इस पोस्टर में क्या है, भगवान श्री कृष्ण की झलक मिल रही है और कैप्शन में मेकर्स ने लिखा है, जब दुनिया ने अपने अपने पक्ष चुन लिए तब उसने धर्म का रास्ता चुना। बंटवारा 1947 के ये जो लेटेस्ट अब पोस्टर है इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कुछ धर्म कर्म का सिद्धांत भी निभाने वाली है, बताने वाली है। इस मूवी के जरिए हमें जानने समझने को मिलेगा। फिलहाल साफ किया गया था और है भी इस मूवी के नाम से कि 1940 के दशक की जो उथल पुथल थी उस पर आधारित है ये मूवी। बाकी देखने के बाद पता चलेगा क्या है। कब देखेंगे वैसे इस मूवी को, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार, और थोड़ा सा इंतज़ार एक बार फिर से आपके सवाल को दोहराने के लिए।

नाचते रहिए, झूमते रहिए, लेकिन सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। छोटा सा सवाल आज के बॉलीवुड सरताज के लिए कि अपकमिंग मूवी तुम्बा 2 में हीरोइन का नाम क्या है, लीड एक्ट्रेस कौन है? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, और अगर आप रेगुलर लिसनर हैं तो आपको तो वैसे भी पता होगा। तो अभी तक अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो व्हाट्सएप मैसेज करिए और फटाफट जवाब दे दीजिए। क्या पता आप बॉलीवुड सरताज ना बने तो आपका नाम शामिल हो ही जाए। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, अपना नाम, शहर का नाम सबसे पहले, और भेज देना है एकदम फ्री व्हाट्सएप मैसेज करके 9868107070 पर, 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपना जवाब फटाफट भेज देना है, क्योंकि अब नेक्स्ट मैं आप सबके नाम शामिल करने वाली हूं जिन्होंने जवाब दिए हैं, सही या गलत डजंट मैटर, लेकिन हाँ बॉलीवुड सरताज वही बनेगा जिसने सही जवाब दिया होगा, उनमें से कोई एक।

तो चलिए आप सब की बारी आ गई है जिन्होंने जवाब दिया है और इस क्विज का जवाब देकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। फिलहाल सलीम मलिक का मैसेज दिख रहा है मुझे मेरठ से और सही जवाब के साथ दिख रहा है। तरुण कोहली सूरज कुंड मेरठ से और इनका जवाब सही है, गलत बाद में देखूंगी। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं। कंचन सोनी विहार दिल्ली से लिख रही है। मुबारक खान कहाँ से लिख रहे हैं? राजस्थान से। विनीत कुमार बताएं उत्तर प्रदेश से। और सबने ही सही जवाब दिया है। ये बात मैं बता दूं कि मुझे अभी तक जितने भी जवाब दिखे हैं वो सही जवाब के साथ ही दिखे हैं। और न्यू दिल्ली से जवाब दिख रहा है कोमल का। और बसंत तोमर मेरठ से लिख रहे हैं। अरुण सेन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। ईशा धर्मशाला से। विनोद कुमार गाजियाबाद से। सुखलाला बाला बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। और दानिश खतौली से। और नेक्स्ट मैसेज अनूप साहू का है, कहाँ से लिख रहे हैं ये दिख नहीं रहा है। तनुज महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। तनुजा शाह महाराष्ट्र से। और सलीम उत्तराखंड से। और कपिल मोदीनगर से। दिनेश नहर सिंह ये कहीं लंबी दूरी पर है मुझे लगता है, नहीं दूरी पर इन्होंने आंसर जगह का नाम लिखा है और वो है दिल्ली और बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ये है गोकलपुरी दिल्ली से। और मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है? शंकर गोवा से। श्वेता नोएडा से। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। दीप्ति गुजरात से। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से। और भानु मैसेज कर रहे हैं आज दिल्ली से। कहाँ से? मोहम्मद फुरकान। रणवीर सिंह कहाँ से कर रहे हैं? ये नेताराम ग्राम तारोंडी ब्लॉक समथिंग आगे मुझे कंप्यूटर अपना नहीं दिखा रहा है और छोटा सा अगर नाम लिखेंगे जगह का, पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे तो चलेगा और दौड़ेगा, आपका नाम भी पूरा शामिल होगा और जगह का नाम भी। रणवीर सिंह का मैसेज फिर से कहीं से दिख रहा है। युवराज का मैसेज दिख रहा है पंचकुला से। हरीश गौर मेरठ से लिख रहे हैं। कियारा अडवाणी ये अच्छा गलत जवाब के साथ मैसेज आया है। जीत का हिमाचल प्रदेश। राजकुमार महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी भी दिल्ली से लिख रही हैं। सोनीपत से ये मैसेज आया है। सचिन का मैसेज रोहतक से दिख रहा है। उसके बाद किसका मैसेज दिख रहा है? किसी का मैसेज नहीं दिख रहा है। और जिन्होंने अपना नाम सबसे पहले लिखा है, अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखा है, उनका नाम और शहर का नाम दोनों शामिल हो चुका है। आई एम डन। नेक्स्ट आप लेकर आने वाली हूँ बॉलीवुड से ताज। अगर आपने टाइमली फोन उठा लिया, नेटवर्क में रहे, हमसे बात करने के लिए तैयार, तो क्या पता आपकी बेल बजे, सब कुछ अगर सही चला तो बॉलीवुड से ताज होंगे ऑन एयर बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। बीटी विद बीटी चल रहा है, बॉलीवुड शेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानी रेनबो और रेनबो पर फिलहाल अब क्या होने वाला है आपके लिए बॉलीवुड सरताज की को लेकर आने वाले थे और लेकर आए हैं अभी कौन है बॉलीवुड सरताज और क्या कहने वाले हैं उनसे ही सुनते हैं। हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं आप, कैसे हैं आप?
1: मोहम्मद फरदान सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: कहाँ से
1: जी मैम?
0: मोहम्मद फरकान, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम।
0: आपकी आवाज नहीं आ रही है।
1: जी मैम। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे तेज।
0: मेरी आवाज नहीं आ रही आपको?
1: अब आई आवाज, अब आई।
0: चलिए ठीक है, तो सीधे जवाब पर आ जाते हैं। मैंने सवाल किया था कि आने वाली मूवी तुम्बा 2 में हीरोइन कौन है, लीड एक्ट्रेस के तौर पर कौन है?
1: जी आलिया भट्ट है।
0: आलिया भट्ट, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। तो मोहम्मद फरकान,
1: इससे पहले श्रद्धा कपूर की जो है कास्ट किया गया था इसमें, मगर अच्छा। उनको हटा के फिर आलिया भट्ट को लिया है।
0: क्या बात है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको?
1: जी मैं जो है आपका बॉलीवुड ट्रेल रोज सुनता हूँ, वैसे भी मतलब जो है मैं न्यूज देखते रहता हूँ और टीवी पर भी देखता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आकाशवाणी रेनबो कितना सुनते हैं आप?
1: डेली
0: डेली सुनते हैं।
1: खाना छोड़ सकता हूँ, एफएम रेनबो नहीं छोड़ सकता।
0: सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा जानकर। और इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। वैसे आपके बारे में, आपका नाम तो सभी लोग सुनते रहते हैं।
1: मैं काफी पुराना लिसनर हूँ आपका।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और लगभग सभी लिसनर मुझे जानते हैं।
0: ग्रेट,
1: चेहरे से नहीं तो नाम से तो जानते हैं।
0: नाम से तो जानते ही हैं और लगभग हर शो में आपका जो नाम है वो आता है जहाँ पर क्वेश्चन या

0: कुछ भी पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच इतने प्रेम से आकाशवाणी रेनबो सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: और सबसे बेस्ट मुझे आपका अंदाज लगता है, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई लिसनर बॉलीवुड सरताज बने ना बने मगर आप नाम जरूर बोलती हैं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू मोहम्मद फरकान, ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए। ओके
1: जी मैम, शुक्रिया मैम,
0: ओके एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू, बाय,
1: शुक्रिया आपका।
0: तो ये थे मोहम्मद फरकान आज के बॉलीवुड सरताज, और फिलहाल प्ले इट कूल लेकर अब भी एक बार फिर से हिमानी आ चुकी है आप से मिलने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक में। तो मुझे जाना होगा, लेकिन हाँ, एक बजे लेकर आऊँगी आपके लिए रेनबो हेल्पलाइन, और आज टॉपिक होगा मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इस टॉपिक पर बात होने वाली है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव से, जो कि है डायरेक्टर प्रोफेसर NHOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। तो इनसे ज़रूर मिलिएगा और ढेर सारे सवालों के साथ मिलिएगा, ताकि आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें और जानकारियाँ भी ढेर सारी मिल सकें। अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो रेनबो हेल्पलाइन सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। फिलहाल बबिता त्रिपाठी कहती है टाटा बाय, टेक केयर।

0: Yeah.
1: Yes, boys, move it all around and move it strong. May the best team win. And moving ahead, before actually I move ahead, how about taking a teeny weeny little break? I'll see you on the other side. Please stay with me.
2: Mangal Bhavan, Mangal Hari.
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

0: Shakira there with Dreams for Plans, and let me come back with more on Shakira, but only after I take this break. And I'm sure you're gonna be there with me and see me on the other side of this break.
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कतर के पिता कहे जाने वाले अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज दिव्य कला मेला शुरू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहेंगे।

होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दो टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। भारत ने कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फलस्तीनी डोनर ग्रुप पीडीजी की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय में वाणिज्य दूतावास की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा कि भारत लंबे समय से फलस्तीनी लोगों का भरोसेमंद साझेदार रहा है। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। फीफा विश्व कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर समय है रेनबो हेल्पलाइन का। एक बार फिर से आपके साथ मैं बबिता त्रिपाठी, और आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही खास, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबके लिए ज़रूरी है। और जब इतने सारे प्रलोभन हमारे आसपास मौजूद हों, इतनी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की हमारे साथ मौजूद हैं, और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिए भी जब डिजिटल सहारा ही लिया जा रहा है, और हर काम के लिए ये डिजिटली हम एक्टिव रहते हैं, तो भाई ऐसे में मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जा पा रहा है। और कई बार कहें तो मजबूरी हो जाती है कि हम डिजिटली इन्वॉल्व रहते हैं, और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है इस पर भी ध्यान देने का वक्त नहीं है। तो इस पर बात करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए एक्सपर्ट ज़रूरी हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं, डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, जो कि हैं डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। तो उनसे आज हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ आखिर कितनी ज़रूरी है, आखिर डिजिटल एज में मेंटल हेल्थ को किस तरह से और बढ़िया रखें, हेल्दी रखें, और किस तरह से इसका असर पड़ रहा है। और आपकी पर्सनल भी तो क्वेरी हो सकती है बहुत सारी, जो आपको लगता है कि आपके साथ घट रही है, या आपके आसपास अपने परिवार के लोगों के पास डिजिटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है, फिजिकल असर हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी टिप्स जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस नंबर डायल करना है। नंबर क्या है बात करने के लिए, हमसे डायरेक्टली, हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो नंबर घुमाइए और फोन लगाइए। क्या नंबर्स हैं? 2342-1080 या 2342-1084। एक बार

0: फिर से 2342108080 या 2342108484 आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए, आसानी से इस घंटे आपका सवाल शामिल हो जाएगा कभी भी अगर फोन नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, अपना सवाल लिखेंगे, उससे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। और भेजना किस नंबर पर है, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपके लिए नंबर है 9868107070 9868107070। तो आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल, सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद।
0: तो बहुत सारे सवालों के साथ हम तो रेडी हैं, आप तो मुझे लग रहा है कि सुपर रेडी होंगी क्योंकि बहुत सारे चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जिससे आपको ऑलरेडी बहुत चीज़ें आपको लग रहा है कि हैम्पर हो रही हैं, मेंटली किस तरह से लोगों पर असर पड़ रहा है इस डिजिटल एज में। तो आप तैयार हैं एकदम?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो चलिए आप सब भी अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं और आप सबके सवालों को शामिल करते हैं, अपने सवालों को शामिल करते हैं और जानते हैं कि आज डिजिटल एज जब ऐसे में जब इतना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए और हर तरह से हर तरफ हम डिजिटली कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़े ही रह रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ की ओर भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए बस अपने सवालों के साथ जुड़ जाइए फटाफट आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर।

0: तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। मेंटल हेल्थ और डिजिटल एज दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और ऐसे में डिजिटल एज में मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम डिजिटल जो मीडियम्स हैं यानी जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है वो हम जानते हुए भी कई बार अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम ना चाहते हुए भी डिजिटली बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और अवेयर होते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि हम मजबूर हैं। ऐसे टाइम में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनसे राय लेने में बुराई नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए इस शो को आप सुनते रहिए और आपको टिप्स मिलती रहेंगी। डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। उनसे हम ढेर सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं। आप भी अपने सवालों के साथ फटाफट जुड़ जाइए। नंबर है 2342108 एंड 2342108 84, जिस पर आपको कॉल करना है। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपको 9868107070 ये नंबर इस्तेमाल करना है। अपना सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। और अब मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। तो डॉक्टर श्रुति बताइए प्लीज़।
1: मानसिक स्वास्थ्य एक शारीरिक स्वास्थ्य को के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ज़्यादातर जैसे हमारा कोई भी बुखार आया या जो भी खांसी हुई, तो ये सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं, और हम तुरंत ही सलाह लेते हैं और डॉक्टरी सलाह तुरंत ही उसके लिए करते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य जिसको माना जाता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट इनेबल्स पीपल टू कोप विद स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, रियलाइज देयर एबिलिटीज, लर्न एंड वर्क वेल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। ये हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा है। इसका मुख्य तौर पर ये मानना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य को क्या कहा जाए, जो हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगियों के जो तनाव हैं उनको झेल पाते हैं, हमारे में अपनी क्या काबिलियत है उसके वो हम पहचानते हैं, और हम रोज़मर्रा की चीज़ें सीखते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं और एक समाज को कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। तो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे

0: हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जुड़े जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जूझते जा रहे हैं और इंटरनेट की तरफ जूझते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वर्क रिलेटेड कार्य के अलावा कितने घंटे उस प्रक्रिया में जो हमारे काम से संबंधित नहीं है बट इंटरनेट और उससे रिलेटेड चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में हम व्यर्थ लगाते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसका बैलेंस बनाना है और कुछ ना कुछ उसके हमें घंटे का मापतौल रखना है
1: तो
0: उस।
1: डिजिटल एज में मैम किस तरह से मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है?
0: हाँ
1: आपने बताया मेंटल हेल्थ क्या है,
0: हाँ
1: लेकिन ये आज जो हम बात कर रहे हैं कुछ कहीं ना कहीं ये डिजिटल एज है जिससे बहुत असर पड़ रहा है उस पर, तो कितना असर हो रहा है और किस तरह से असर हो रहा है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
0: विश्व में सभी साइकेट्री मनोरोग के उसमें बहुत सारे योगदान और बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, और उन सब रिसर्च के द्वारा, और हम लोग भी योगदान में शामिल रहे हैं, तो योगदान के द्वारा जो निष्कर्ष निकलते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि हम कोई भी चीज़ हम करते हैं एक शौकिया तौर पर, तो उसकी अवधि थोड़ी सी बना के रखें, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर वही अवधि हमारे रोजमर्रा के कार्य में बाधा डालने लगती है तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कठिनाई उत्पन्न होने
1: क्या क्या
0: लगती है।
1: प्रॉब्लम होती है?
0: प्रॉब्लम जैसे कि हमारे रोजमर्रा के काम में अगर हम इन डिवाइसेस पे हुक्ड हैं और हम इन डिवाइसेस की कारण अपने किसी गेमिंग साइट पे हैं, या कोई भी हमने साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, गेमिंग साइट्स हैं, या कोई भी इस टाइप की साइट्स हैं जिन पे हम अपना टाइम, अपने कार्य का टाइम, अपने खाने पीने का टाइम, अपने अपने जीवन शैली के मुख्य कार्यों को छोड़कर, किसी के घर में कोई बीमार है, हमें किसी को लेके जाना है हॉस्पिटल, या हमें कोई ग्रॉसरी से कुछ, शॉप से कुछ लाना है, या हमारी कोई रिपेयर वर्क है, हम सब चीज़ों को इग्नोर करके, उनको एक तरह से नज़रअंदाज करके अपनी डिवाइसेस में हुक्ड रहें और इसी में समय ज़्यादा लगाने लगें, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी या जिंदगी की जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिंदगी की गुणवत्ता है, उसको घटाता है, और हमारे मन में धीरे धीरे हम समाज से और रियल वर्ल्ड से थोड़े थोड़े हम अलग थलग होने लगते हैं। तो वो चीज़ें हमें बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है जो हमारी यंग जनरेशन है उसके साथ हो रही है, और उसकी तरफ हमारा एक नज़रिया थोड़ा सा बदलना है और उसमें हमें उन्हें रियल वर्ल्ड में लाना है, रोजमर्रा की जीवन शैली में ढालना है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, खेलना कूदना और सभी तरीके से समाज में जुड़ना, मतलब लोगों लोगों से इंटरेक्ट करना। तो ये चीज़ें और हमारे रोजमर्रा के कार्य में अगर फर्क करेंगी तो हमारी दिक्कत, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है।
1: तो फिजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते होंगे।
0: फिजिकल हेल्थ में भी असर करता है, आईज में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, आई साइट वीक होने लगती है, रिफ्रैक्टरी एरर्स डेवलप होने लगते हैं, स्क्रीन टाइम यूज करने के लिए बहुत उस पर असर पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ही कम एज में अब हमारी कंट्री में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, ओवरवेट की प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरीके की फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, कान में भी ईयर की प्रॉब्लम्स सब चालू हो रही हैं। तो ये सब तो शारीरिक हो गई, इसके अलावा मानसिक तौर पे डिप्रेशन है जिसे अवसाद कहते हैं, लोगों के साथ अगर हमारा बातचीत करने का ही समय खत्म होता जाता है, तो जब हम उनसे रोजमर्रा की सिचुएशंस में वही जो लोग हैं वो अगर वर्क प्लेस पे काम करते हैं या कार्यशीलता पे, तो उनका आपस में समाज में क्योंकि उठना बैठना कम रहा है, तो वो उसमें भी माहौल में भी काम करने में उतने सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ पाए जाते
1: मैम
0: हैं।
1: समाज में तो अभी मुझे लगता है हम थोड़ा आगे चले गए, फैमिली के लोगों के
0: हाँ,
1: लिए ही टाइम नहीं
0: फैमिली
1: है।
0: फैमिली के लोगों के लिए टाइम नहीं है, तो फैमिली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैमिली टाइम आप एक बनाएं, और डिजिटल वर्ल्ड को एक, मेरे एक मुख्य राय जो है वो ये है कि आप कम से कम खाना खाने का या डिनर टाइम जैसे है उसमें सब लोग अपना अपना फोन और अपने अपने डिवाइसेस बंद करके उसको अपने आप हंसना बोलना बातचीत करना और उसको डिनर को इंजॉय करना स्टार्ट करें।
1: तो चलिए, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, आपको कहाँ लगता है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो टीवी मोबाइल या फिर आप खुद ही ऐसे हो सकते हैं कि टीवी मोबाइल या कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ चाहिए जिससे आप लगातार जुड़े रहते हैं, कहीं खाली टाइम शायद अपने लिए निकाल ही नहीं पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप खाली अपने साथ कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है या आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आपको 24 घंटे लैपटॉप के सामने फ़ोन पर बैठना पड़ता है, बट ऐसे में भी आप अपना टाइम निकाल कर कुछ अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, तो किस तरह से टाइम निकालें और किस तरह से मोटिवेट करें अपने आप को, ये जानने के लिए आपको फ़ोन घुमाना है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करनी होगी। और फ़ोन घुमाने के लिए आपको क्या करना है, 2342108 डायल करना है और 2342108 ये दो नंबर हैं जिनको आप डायल कर सकते हैं, या आप सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या आपको कि मेंटल हेल्थ पर भी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी कुछ असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन या बहुत ज़्यादा टेलीविज़न या बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर बैठने से, काम करने से, या कई बार ऐसे ही रील्स देखने से। तो नंबर अगर नहीं डायल करना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल लिख भेजिए। और तब तक एक म्यूज़िकल ब्रेक और लौट कर आते हैं फटाफट आपके सवालों के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ बबीता त्रिपाठी। मेरे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। फिलहाल मेंटल हेल्थ डिजिटल एज में कैसे मेंटेन करें, सोशल मीडिया का जमाना है, अब साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असर पड़ना जायज़ है, और ऐसे में वर्क बैलेंस करना, वर्क लाइफ बैलेंस करना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो दिनचर्या में है शामिल हैं और उनको हम अवॉइड करते जा रहे हैं, जो ज़रूरी है अवॉइड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे रील्स में खोए हुए हैं, 24 घंटे मोबाइल पर बात कर रहे हैं, 24 घंटे या हो सकता है कई बार मजबूरी में आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी ऐसा हो जाता है, तो बैलेंस करना तो ज़रूरी है ना। निधि की भी प्रॉब्लम यही है, प्रयागराज से हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें और योग या प्राणायाम के लिए कैसे समय निकालें, क्योंकि सभी काम के लिए तो समय निकल जाता है लेकिन खुद को फिट कर रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकल पाता है। तो ये तो हमारी एक्सपर्ट ही बताएंगी, सबकी प्रॉब्लम यही है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है निधि जी आपने। इसके लिए यही है, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक अहम बात यह कि जैसे आप अपने काम में सुचारू रूप से और पूरी तरह से ध्यान लगा के करते हैं, वैसे ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप वो कार्य उस तक डिलीवरी नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो कोई ना कोई बीमारियां आपको घेर लेंगी, चाहे वो शारीरिक हैं चाहे वो मानसिक हैं। और इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जो प्रायोरिटी सेटिंग है, प्रायोरिटी सेटिंग मतलब कि हम एक अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने को उस लक्ष्य से हटाएं ना। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, अपना लक्ष्य बनाएं, और जब हम अपनी दिनचर्या बनाएं तो हम अपनी दिनचर्या में कुछ समय अपने लिए रखें जो सिर्फ हमारा निजी स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए हो। और उसके लिए अगर हम आधा घंटा या एक घंटा शाम का या रात का या जब के अभी या सुबह का, जो भी आपको टाइम सूट करता है, इवन लंच ब्रेक का टाइम वो भी आपको सूट करता है, तो आप चाहें उस एक घंटे को रख लें, पर आप उस एक घंटे के टाइम को प्रायोरिटी पे रखें और उसको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। तो ये मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन है, और बाकी आप रिमाइंडर कॉल्स, अलार्म कॉल्स अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं या आप अपनी डिवाइस पे सेट कर सकते हैं, वो आपको संकेत देंगे, या ये इस कार्य के लिए आप अपने घर परिवार को की मदद भी ले सकते हैं जो कि आपको इनकरेज करे और प्रोत्साहित करे, और आप सब लोग एक फैमिली टाइम की तरह योगा के मैट्स लगा के घर पर भी कर सकते हैं, रोजाना
0: कर सकते हैं
1: डिनर के पहले।
0: बट वही होता क्यों नहीं है?
1: हाँ, वो होता वो नहीं है क्योंकि हम एक उसको एक, अभी जैसे इंटरनेशनल योगा डे था तो हमारे देश में क्या विश्व में सभी जगह पर सभी लोगों ने योगा किया और वो योगा मैट सभी सबके पास है ही, तो आजकल

0: तो स्कूल कॉलेजेस और वर्कप्लेस में भी सभी जगह पे ये प्रावधान बनाए जा रहे हैं, तो हम वो प्रावधान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल करें
1: और अपने बुजुर्गों को भी
0: और अपने
1: इंस्पायर कर
0: बुजुर्गों
1: सकते
0: को,
1: हैं मेरे
0: अपने
1: ख्याल
0: घर
1: से
0: परिवार
1: ज्यादा।
0: को, सबको ले के करें। आजकल बहुत ही तरीके तरीके के आ गए हैं जो कि रुचिदायक होते हैं, म्यूजिक लगा के भी करते हैं।
1: बिल्कुल। तो चलिए, अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से लेकर खान पान और बिजली के बिल भरने तक, जब हम इस यंत्र के इतने अधीन हो चुके हैं, तो दूरी बनाना आसान कैसे हो सकता है? पैंथर तोमर कह रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, उनके सवाल का जवाब दीजिए प्लीज।
0: जैसे ये डिवाइसेस का जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो है, पर आप ये देखिए कि आपको डिजिटल डिटॉक्स, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स, करना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक डिजिटल हेल्थ लिटरेसी है, जिसे डिजिटल लिटरेसी मतलब हमें इन इन उपचारणों की जरूरत है। हमें इन इनके बिना हमारा रोजमर्रा की जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल है। बट ये नहीं है कि अगर हम 1 घंटे तक या 2 घंटे तक अगर हम अपने को इस चीज से फ्री रखेंगे, या सोने के पहले खासकर हम 2 घंटे इस डिवाइस को तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई इंपॉर्टेंट कॉल आए या कोई चीज आए, तब हम उस तरीके से अपना बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। तो हमें डिवाइस से अपने को हुक्ड नहीं रखना है। डिवाइस को आप कुछ देर के लिए एक अलग कमरे में रख सकते हैं, या कुछ देर के लिए अपने ड्रॉर में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, जिससे आप जब कार्य करें या जो कोई और चीज करें, तब आप उसको पीरियोडिक बेसिस पर उसको एक्सेस करें। तो वो लिमिट सेटिंग है, जो लिमिट सेटिंग की बात मैं कर रही हूं, उसमें आपको खुद अपना अपना अपने को उस डिवाइस से दूर रखने की आदत करनी है। और यही अगर एक गंभीर किस्म में जाता है, तो ये कंपल्सिव इंपल्सिव स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं, कि हमारी इतनी तीव्रता इन चीज को यूज करने की इतनी आदत बन जाती है कि हम उससे अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ नहीं पाते। मतलब इस तरीके की हालत कि हम सेल फोन से ही बिल्कुल अडिक्ट हो गए, या हम ये सोशल नेटवर्किंग साइट से हो गई, बच्चे उन्हीं से अडिक्ट हो गए, या हम गेमिंग कर रहे हैं तो उसी पे इंटरनेट पे ही खेलते चले जा रहे हैं, इंटरनेट गेमिंग हो गई चाहे सोशल नेटवर्किंग, तो ये सारे हमारे एक तरीके के बिहेवियर एडिक्शंस, एक नई एंटिटी है जिसमें कि ये सारी एंटिटीज डिस्क्राइब्ड हैं और मानी जाती हैं। जैसे कि हमें नशे की लत लगती है, उसी प्रकार से हमें इन चीजों की भी लत लगनी चालू हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में ये सब चीजें हमारे जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन के अंदर, उनको जो है, जैसे कि हम जो डोपामीन और सेरोटोनिन नाम के पदार्थ हैं, उनके उनके ब्रेन में सर्किट्स हैं, तो वो शुरू शुरू में हमें उससे प्लेजर मिलता है, खुशी महसूस होती है जब हम इनको शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम पाते हैं कि हम उस पर बिल्कुल निर्भर हो गए हैं। हम उसके बिना बिल्कुल, शाम का हमें खाली समय है लेकिन हम खाली समय में उसी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वही चीज हमारे मूड को सही रखना शुरू कर देती है। हम लोगों से अलग थलग होने लगते हैं, हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, हम रोजमर्रा की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम समाज से अलग हटते चलते हैं। हम घर में बैठे हैं लेकिन घर में चार लोग चारों डिवाइस पे हुक्ड हैं, तो वो आपस में बातचीत ही नहीं कर पा रहे, उनके आदान प्रदान ही नहीं हो पा रहा, वो कोई राय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे
1: जी।
0: तो ये सब हमें इस चीज से दूर रखना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम डिवाइस को रखने का अपना संतुलन बनाएंगे और अपना एक डिसिप्लिन बनाएंगे।
1: डिसिप्लिन ही बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है।
0: हाँ।
1: और ऐसे में कॉन्शियसली आप क्या क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं?
0: हाँ,
1: तो वो जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने, पैंथर तोमर ने आगे भी लिखा है कि सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर लाइक देखने की होड़ लग जाती है, कम लाइक मिलने पर उदासी छा जाती है, क्या हम मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं? छुटकारा कैसे पाया जाए?
0: छुटकारा ऐसे पाया जाए कि ये चीज़ें जो लाइक्स हैं और ये डिसलाइक्स हैं, ये मॉर्निंग में खोल रहे हैं तो ये आप ही तो खोल रहे हैं। आपको अपना सेल्फ रेगुलेशन बनाना है कि ये मैं जब फ्री होंगे तब खोलेंगे, है ना, या आपने संडे के टाइम में दिन में रखा या छुट्टी वाले दिन रखा,
1: कोई
0: कि मैं
1: फिक्स
0: एक फिक्स टाइम, एक आप बनाएं, फिक्स टाइम बनाएं और उसी टाइम पे खोलें। तो ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज से अलग रहेंगे, और आप सुबह के टाइम में आप अपनी कोई भी आउटडोर आपकी कोई भी एनर्जेटिक एक्टिविटी है, चाहे आपकी वॉकिंग हो गई, चाहे आपकी योगा हो गई, चाहे कोई आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, चाहे एक सिंपल सा काम जैसे कि दूध लाना,

0: मदर डेयरी तक जाकर दूध लेकर आना, एक सिंपल सा काम, या ग्रोसरी शॉपिंग का कोई भी उस तरीके का कोई रूटीन डेवलप करें इसके अलावा।
1: क्या प्रॉब्लम ये भी है कि हम सारी चीज़ें घर पे ही मंगा ले रहे हैं, दूध वाला घर पे दूध दे जा रहा है, और कोई शॉपिंग करनी है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं घर बैठे बैठे, तो वो इसकी वजह से भी हम कई बार मोबाइल पे लगे रहते हैं। कुछ कपड़ा खरीदना है, सामान कुछ खरीदना है, हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं, उसके लिए घंटों हम ढूंढते हैं चीज़ें ढूंढते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। तो इसके लिए भी हम मेरे ख्याल से ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, फिजिकली भी
0: फिजिकली करेंगे, एनर्जेटिक रहते हैं। जब हम एक घर से बाहर निकलते हैं, कहीं कुछ लेने जाते हैं या छोटा मोटा सामान लाते हैं, तो हम चार लोगों से बातचीत करते हैं, चार चीजों से मोल भाव करते हैं, चार लोगों से हमारा संपर्क बनता है।
1: हाँ।
0: चाहे वो एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मदर डेयरी की दुकान ही क्यों ना हो, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जरूरी है कि वो संपर्क समाज से जुड़े।
1: और बच्चों में ये भावना तभी ला सकते हैं जब हम खुद इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे होते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं,
0: और बच्चों के साथ में ही जाएं,
1: बच्चों को साथ में लेकर जाएं। और क्या क्या पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चों को डिजिटल मीडिया से पास में होते हुए भी दूर रखने के लिए, क्योंकि जरूरी तो है ही, जैसे बताया कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो अब बच्चे को आप नहीं हटा सकते, तो ऐसे में ये सारी चीजें जब उनको डिजिटल वर्ल्ड से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ पर असर ना पड़े, वो एडिक्ट ना हो, इसके लिए पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बस आपकी पसंद का एक और गाना है जो बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, तो उसको चला देते हैं, उसको सुन लेते हैं और लौट कर आते हैं इस टॉपिक पर, फिर से बात करते हैं मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव हमारी गेस्ट आज हमारे साथ हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। फिलहाल आप सबके फ़ोन का भी इंतजार हो रहा है, 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: सोशल मीडिया ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, और डिजिटल एज में हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे मेंटल हेल्थ को भी बरकरार रख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा बच कर चलें, थोड़ा सा बैलेंस बना कर चलें। यही कह रही हैं डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव। और आप अपनी तरफ से, आपको क्या फील होता है कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, क्या कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये डिजिटल एज में मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने में, आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और उसके लिए मैंने बताया 2342-1080 पर कॉल कर सकते हैं, या 2342-1084 पर कॉल कर सकते हैं, या सिंपली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जैसा सूर्या ने किया है बाड़मेर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जाने अनजाने में एक कंपैरिजन लूप बन जाता है, इस वजह से युवाओं में तनाव और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। और इनका सवाल है कि सोशल मीडिया के जाल और कंपैरिजन लूप से खुद को कैसे बचाएं, मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। और यही बात कह रहे हैं पैंथर तोमर भी कि दूसरों की रील्स और पोस्ट में दिख रही परफेक्ट लाइफ से अपनी असल जिंदगी की तुलना करना क्या युवाओं में डिप्रेशन और हीन भावना की सबसे बड़ी वजह नहीं बनता जा रहा।
1: हाँ, ये अनुसंधान में भी पाया जा रहा है कि जो इन डिवाइसेस पर, जो इंटरनेट एडिक्शन की जो एंटिटी जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था, या बिहेवियर एडिक्शंस, तो जो बिहेवियर एडिक्शंस के जो हम बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स हैं जो कि उपलब्ध हैं, प्रश्नावली हैं जो आप ओपन तरीके से भी अवेलेबल होती हैं, तो उसमें कई इसी से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। तो जो लोग इसमें ज़्यादा इंडल्ज करते हैं या इनमें ज़्यादा समय लगाते हैं, वो उसमें अवसाद, एंजाइटी, मानसिक तनाव बढ़ने के और ये सब लक्षण जो हैं सब ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे कई सारे अनुसंधान हैं जो कि पब्लिश भी हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स पर, तो उनमें हमने ये पाया है कि ये मेंटल हेल्थ में इंटरनेट एडिक्शन के साथ, बिहेवियर एडिक्शंस के साथ डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का जो संख्याएं हैं वो 25% तक एज आई एज 25% स्केल्स में पाई गई हैं। और उसमें हम जब फर्दर उसको बच्चों को इवेलुएट करते हैं, तो उसमें हम फर्दर जब उनको बच्चों को इवेलुएट करते हैं, तब हम और सवालों के जरिए और मानसिक स्वास्थ्य के सवाल प्रश्न पूछ के डिटेल में जब हम इवेलुएट करते हैं, तो कुछ परसेंट में ये हम इस एंटिटी के काफ़ी क्लोज आते हैं, और कुछ परसेंटेज में हमें दवाई या रेगुलर काउंसलिंग या थेरेपीज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज करनी पड़ती हैं।
0: ओके, तो हमें दूसरों की रील्स और पोस्ट देखकर ज़्यादा
1: प्रभाव नहीं, यही एक है चीज़ कि आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, आपको अपने को दूसरे की चीज़ से प्रभावित नहीं होना है। ये एक जानकारी है जो आपको मिल रही है कि उन्होंने ये कार्य किया या उन्होंने ऐसे घूमने गए या उन्होंने ये पहना, लेकिन इससे आपको प्रवाहित अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होना है। जैसे आपने कोई नाटक देखा या आपने कोई मूवी देखी, तो उससे भी आपको प्रभावित उस तरीके से नहीं होना है। तो यही एक है कि टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी का

0: दुरुपयोग आप नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए।
1: ओके, तो यही तो हमें जानना है कि किस तरह से हम सदुपयोग करें, क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लगातार इन सब चीजों के जाल में ना फंसे।
0: अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना परिवार के साथ, समाज के साथ मिलना जुलना और बातचीत करना, खेलना कूदना, जैसे हम एक बच्चे को, क्यों ना हम बच्चे हुए, छोटी उम्र के बच्चे हुए, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे हुए, 6 साल से कम के या 6 से 12 साल के, तो उन्हें हमें रोजमर्रा के खेल कूद में बाहर फील्ड्स में लेके जाना, पार्क में लेके जाना बहुत ही अनिवार्य है। उससे बच्चे खुद हारना जीतना, कैसे आपस में बातचीत करनी है, ये सब चीज़ें सुचारू रूप से सीखते हैं, और वो एक आपस में मिलते जुलते, हंसते बोलते बातचीत करते हैं, जिससे उनका आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो आगे वही बच्चे जब बड़े होके कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वही उनका सपोर्ट ग्रुप बनता है, हंसना बोलना, बातचीत करना, और यही यादें सबके साथ जुड़ी हुई हैं।
1: यानी आप डिप्रेशन में ना आए या आप हीन भावना से ग्रस्त ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लोगों से मिलना है, ज्यादातर ऐसी एक्टिविटीज करनी है,
0: एक्टिविटीज करें
1: जिससे आप ज्यादातर लोगों में रहें।
0: हाँ,
1: तो उससे क्या होगा कि आप लोगों से भी मिलेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और मेंटली भी आप खुश रहेंगे। तो प्रभावित होना है, बट थोड़ी देर के लिए नहीं, प्रभावित होना भी जरूरी होता है। क्यों, आपको क्या लगता है कि अगर हम प्रभावित नहीं होंगे तो हम नई चीजें कैसे सीखेंगे?
0: नहीं, अगर प्रोत्साहन की बात मानी जाए तो जैसे कि आपने देखा कि भाई फला ने ये ऐप डेवलप करी, फला देश ने ये ऐप डेवलप करी, फला देश के बच्चों ने ये ऐप डेवलप करी, तो वो ऐप डेवलप बच्चे अगर हमारे देश के करेंगे या टेक्नोलॉजी से करेंगे तो वो एक वर्क रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, उसे हम इसमें नहीं जोड़ते हैं।
1: तो अच्छी चीजों का मोटिवेशन ले सकते हैं और जो चीजें आपके लिए,
0: ये नॉन वर्क रिलेटेड यूसेज की बात कर रही हूं मैं, जो कि ये एंटिटी जो है खासकर नॉन वर्क रिलेटेड यूसेज है, जो वर्क रिलेटेड या जो एकेडमिक या प्रोफेशनल वर्क से या रोजमर्रा के काम से संबंधित है वो सब वर्क रिलेटेड यूसेज है, उसका वर्क रिलेटेड यूसेज का इस में नहीं जोड़ा जाता है।
1: ओके, एक फोन आ रहा है, लेते हैं। हेलो, हेलो, मुझे लगता है इन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी है, लेकिन इनका सवाल भी कुछ इसी तरह से था कि क्या ऐसा करें जिससे वो मोबाइल की एडिक्शन से बाहर निकल सकें, क्योंकि उनको भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है। और एक सवाल और आ रहा है कि मेरा एक दोस्त है, वो मोबाइल पर घंटों गेम खेलता है, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सामने कोई होता है तो भी बड़बड़ाने लगता है, क्या वो मानसिक बीमारी का शिकार हो चुका है?
0: हाँ, मैं यही कहूँगी कि मैं एक टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर भी है जो हमारे स्वास्थ्य की तरफ से भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जो कि उस पे आप कॉल करके साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में कॉलर्स अवेलेबल हैं, 1-800-891-4416। तो ये एक टेलीमानस की हेल्पलाइन है जो केंद्र सरकार की तरफ से है, और ये फ्री है, ये मुफ्त है, आप टोल फ्री नंबर डायल करके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सलाह ले सकते हैं। और ये जो आपने लक्षण बताए, ये डेफिनेटली आप किसी भी सरकारी अस्पताल में, जैसे हमारा गुरु तेग बहादुर अस्पताल फ्री सुविधाएं देता है, प्रदान करता है, तो ये जरूरी है कि इसको संपर्क कराएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इन डिवाइसेस का अगर हमें नियंत्रण खो रहे हैं, कंट्रोल खो रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन हमारा जा रहा है, तो हमें कंसल्ट करना जरूरी है।
1: मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप से लिख रहे हैं, कीर्तिनगर में, और इन्होंने लिखा है कि कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो इन्होंने धन्यवाद दिया है, उसके बाद जो सवाल है वो लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन पर वैसे तो मेरा ध्यान नहीं रहता है कि किसने लाइक किया या नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल है कि जैसे मैं 7-8 घंटे रेडियो सुनता हूँ और ईयरबड्स लगाता हूँ, तो मेरे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा?
0: रेडियो लगाने पर मेंटल हेल्थ में अगर
1: पॉजिटिव
0: असर तो रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि कानों के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए ये चीज़ ज़रूरी अच्छी नहीं है कि आप 7 से 8 घंटे का आप उसको यूसेज को आप कर्टेल करें, सबसे बेहतर चीज़ ये है, और उस यूसेज

0: ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ ये मैं भी कहना चाह रही थी कि उसको ऑफ किया जा सकता है, हमें पता ही नहीं चले, जब हम चाहें तब पता चले, है ना।
1: तो ये जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स हैं या जितने भी ये हैं, सब में आजकल ऐसे चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि आपको लीगल सारी एडवाइजरीज देती हैं और जो आपको नोटिफिकेशंस बंद करना और ये सब, तो ये सब डिवाइसेस में इनबिल्ट हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और नॉर्म्स। तो वो जरूरी है कि सभी लोग उसको पढ़ें और देश के और विदेश के कानूनों को समझें, क्योंकि ये आपको एकदम से एक ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाता है। तो आप कोई भी चीज ऐसी ना करें जो कि किसी कानून का उल्लंघन करता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कानून का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही ये आपको सबको सतर्क रहना जरूरी है।
0: ओके, सौरभ गुप्ता लिख रहे हैं फरीदाबाद से, इन्होंने कहा कि बहुत सारा टाइम ये पहले बिताते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, अब इन्होंने कहा कि रियलाइज किया इन्होंने कि उनका जो वर्क है वो इस पर सफर कर रहा है, तो उन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया ये सब। लेकिन अब ये एक चीज नहीं कर पा रहे हैं कि ईमेल और व्हाट्सएप से एक तरह से इनको एडिक्शन हुआ पड़ा है। लंबा मैसेज है तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ उसको। इन्होंने लिखा कि यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स आते हैं उस पर वो काफ़ी ध्यान देते हैं, एडिक्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जॉगिंग के लिए भी जाता हूँ मॉर्निंग में, बट एंड अप होता है स्किपिंग एवरी डे एज आई एंड वेस्टिंग टाइम ओवर यूट्यूब एवरी मॉर्निंग।
1: तो वो सिंपल सी बात है कि आप डिवाइस को वर्क रिलेटेड पर्पज़ के लिए ऑन करें, और जब आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो डिवाइस को बंद करके टेबल पर रखें, टेबल के ड्रॉअर में डाल दें, दूसरे रूम में रख दें। और अगर आप ये करने में फिर भी असमर्थ हैं तो आप अलार्म सेट कर सकते हैं या डिवाइस को ऑटोमेटिकली शट डाउन करने के इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, साइलेंट मोड पे जा सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं।
0: तो थोड़ी सी टिप्स और दे दीजिए, क्योंकि चलने का समय आ गया है तो टाइम इतना नहीं बचा है। काफ़ी कुछ, वैसे बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते हैं वो आप बताइए।
1: ऐसा क्या है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य के ऊपर, कि हम कहीं ना कहीं एक रेखा तो नहीं पाल कर रहे। एक लाइन बनाइए कि हमें इतनी देर करना है, इस पर्पस से करना है, और इसका क्या उपयोग है और इसका क्या दुरुपयोग है। तो चाहे आप एक कॉपी में ही लिखें, चाहे आप एक पेन पे लिखें, चाहे आप फोन की नोटबुक का पैड यूज करें, चाहे बच्चे आईपैड यूज करें, और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड करें, अपनी जीवन चर्या बनाएं, और डिसिप्लिन में आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और समाज से जुड़ने वाली जो भी आपकी हॉबीज हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें और इनकल्केट करें, और अपने कार्य और अपने सोशल ऑब्लिगेशंस और अपने वर्क रिलेटेड सभी चीज की तरफ से आप सुचारू रूप से वो हों, और इसको एक रिलैक्सेशन का, खाली इसी को एक रिलैक्सेशन का जरिया ना बनाएं।
0: तो ये रिलैक्सेशन का जो जरिया है बनता जा रहा है हम सबका, तो हम क्यों ना अपने फ्रेंड्स को एक बार कॉल लगाएं और बोलें कि चलिए कभी कभार या हफ्ते में दो बार ही सही कोई मीटअप करते हैं और एक घंटा बिताते हैं, और उससे हम बहुत सारे मसाले तैयार करते हैं जो हमारी जिंदगी में वैसे ही एंटरटेनमेंट लेकर आए। क्योंकि हो सकता है आपका एक बढ़िया सा ग्रुप बन जाए जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए आप अक्सर जाया करें और सोशल मीडिया से काफी दूर हो सके, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो सके इससे। क्योंकि अगर आप लगातार सोशल मीडिया से पर जुड़े रहेंगे या वहीं से एंटरटेन होते रहेंगे तो आप अकेले भी होते जा रहे हैं, तो यही समस्या आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है। और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन समय अभी अलाउ नहीं कर रहा है। और जो जो छोटी छोटी टिप्स हैं मैम ने दिए हैं उन सबको आप अगर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए काफी होगा। इस शो में हमने बहुत काम की बात की है, आज हमने बात की मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो फिलहाल थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, जो कि आप आई और इतना कीमती समय निकाला, बहुत सारी आपने जानकारियां हमें दी, और उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो ये थी डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। आप सब अपना ध्यान रखिए, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, और हाँ ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है इस सोशल मीडिया के दौर में। टेक केयर, बाय बाय।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कतर के पिता कहे जाने वाले अमीर शेख हमद बिन खालिद अल थानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। जम्मू नगर निगम ने शहरी वन विभाग के सहयोग से हरित जम्मू स्वच्छ जम्मू पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सुनजवान चौड़ी सड़क के किनारे 2000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में आज वार्षिक अनिवारा स्थानम उत्सव की तैयारियों के तहत पारंपरिक कोइल अलवर तिरुमंजम का अनुष्ठान संपन्न किया गया। ये अनुष्ठान वर्ष में चार बार आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज दिव्य कला मेला शुरू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका

लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा होगी। भारत ने कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फिलीपींस डोनर ग्रुप PDG की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय में वाणिज्य दूतावास के सचिव श्री पिया रंगराजन ने कहा कि भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों को भरोसेमंद साझेदारी में रहा है। इंग्लैंड के शेशेल्स नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। फीफा विश्व कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 शुरू होगा। और अंत में मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूरा अनुमान लगाया है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्य बारिश का अनुमान है। तो ये थे FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। वक्त की बात की जाए तो वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि वक्त हुआ है 2:05 और पूरे 45 सेकंड। ये वक्त है आशियाना प्रोग्राम का और आज रहता है वुमेन स्पेशल डे। बातें होंगी उन महिलाओं की जिन्होंने लीक से हटकर बहुत कुछ करने की कोशिश की, सफल रही, उनके प्रयास सफल रहे, लेकिन किस तरह वो आगे बढ़ी ये जानेंगे आज आशियाना प्रोग्राम में।

आशियाना प्रोग्राम वुमेन स्पेशल सेगमेंट और आज हम बात करते हैं महिलाओं की, उनके जज्बों की, उनके हौसलों की, उनके प्रयासों की। और आज हम बात करेंगे पटना के दानापुर के डिब्रा गांव की उन महिलाओं की जिन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की, प्रयास किए। जी हाँ, और इस प्रयास और कोशिश में उन्होंने एक महिला बैंड की स्थापना की, सरगम महिला बैंड। जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की बात करते हैं, तो एक्सपर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो वो इसे एक थेरेपी के तौर पर देखते हैं। वहीं कई लोग शौक के तौर पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को देखा जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वाद्य यंत्रों का अपना विशेष स्थान रहा है। शादी ब्याह में, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में, जी हाँ, म्यूज़िकल बैंड एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में हम बैंड वादक के तौर पर पुरुषों को ही देखते हैं। जी हाँ, हमें कहीं भी महिलाएं नज़र नहीं आती हैं कि वो किसी बैंड का संचालन कर रही हों या वाद्य यंत्रों को बजाते हुए एक बैंड का निर्माण कर

करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन डिबरा गांव की महिलाओं ने बैंड वादक के तौर पर अपने आप को स्थापित किया, प्रसिद्धि ख्याति अर्जित की। डिबरा गांव की महिलाओं के लिए अगर म्यूजिकल बैंड ग्रुप की स्थापना को देखा जाए तो ये आसान नहीं था और ये उनका शौक नहीं था, बल्कि ये एक मजबूरी थी। ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, जीवन यापन के लिए खेत में काम करती थी या फिर मजदूरी करती थी। आमदनी बहुत कम थी और परिवार को चलाना, परिवार को पालना बहुत मुश्किल। और पैसे कमाने के लिए, जी हाँ, इन महिलाओं ने सरगम महिला बैंड की स्थापना की और फिर एक बार जब चलना शुरू किया इस फील्ड में तो वो आगे बढ़ती ही चली गई। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं होता है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, लगन होती है, हौसला होता है और ज़रूरत होती है जुनून की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: आशियाना प्रोग्राम वुमेन स्पेशल, और आज हमारे साथ है कहानी पटना के दानापुर के डिबरा गांव की उन महिलाओं की जिन्होंने सरगम महिला बैंड की स्थापना की। जी हाँ, साल 2012 की बात की जाए तो डिबरा गांव की 16 महिलाओं ने एक NGO कार्यकर्ता सुधा दीदी की मदद से सरगम महिला बैंड की स्थापना की और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा। ये यात्रा आसान नहीं थी, लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने दिए और इन महिलाओं के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। इसका असर ये रहा कि 16 महिलाओं में से 6 महिलाओं ने सरगम महिला बैंड को छोड़ दिया, लेकिन बैंड की 10 महिलाएं डटी रही और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। पहले पहल इन महिलाओं को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों को पकड़ना भी नहीं आता था, बजाना तो बहुत दूर की बात थी। इन महिलाओं ने 1.5 साल तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा। ये महिलाएं घर पर पूरा काम करती थी, फिर खेत पर काम करने जाती थी और फिर सभी महिलाएं हर दिन 2 से 2.5 घंटे, जी हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें बजाने की

पटना के दानापुर के डिब्रा गांव की महिलाएं जिन्होंने खुद से निकलकर जीने की ठान ली। जी हां, बिहार का पहला महिला बैंड सरगम महिला बैंड। जब इन महिलाओं ने पहली बार एक शादी में बैंड बजाया तो ये कांप रही थी और उन्होंने बताया कि बच्चे उन पर हंस रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे, पुरुष और महिलाएं उन पर हंस रही थी, उन्हें ताने दे रही थी, लेकिन सरगम महिला बैंड की महिलाओं ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसे देने की कोशिश की और वो कहती हैं कि यहीं से उन्हें हिम्मत आए कि वो आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिहार का पहला महिला बैंड सरगम महिला बैंड सफलता के आयाम गढ़ रहा है। आज शादी ब्याह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा गवर्नमेंट के सरकारी अलग अलग कार्यक्रमों में भी ये बैंड शिरकत करता है। साथ ही साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर्स के कई सारे कार्यक्रमों में इस महिला बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया दिल्ली में और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन के बहुत ही फेमस शो KBC में भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। वो कहती हैं कि उन्होंने पटना तक नहीं देखा था लेकिन इस बैंड की बदौलत, इस बैंड को आगे बढ़ाते हुए वो हवाई जहाज तक की यात्रा की। वो मुंबई दिल्ली हवाई जहाज में गई और वो कहती हैं कि वो लोग जो पहले उन्हें चिढ़ाते थे, उनको ताने देते थे, ताने मारते थे, उन्होंने यही हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप सभी ने जो हवाई जहाज है उसकी यात्रा कर ली, हमने तो सिर्फ उसे आसमान में उड़ते हुए देखा है। जी हाँ, सरगम महिला बैंड की महिलाओं ने वो कर दिखाया जो सोच के परे था। आकाशवाणी परिवार सरगम महिला बैंड की महिलाओं को नमन करता है। बुल बुल।

0: भाले तेरे बच्चे तेरे भाले तेरे गुस्से तेरे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई

0: संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी।
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम। यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियाव।

0: और लोमड़ी, नील गाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू।

जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम। मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन क्या इन बदलावों के साथ जिंदगी की रफ्तार भी बदल जानी चाहिए? नमस्कार, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेज़बान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब यही बदलाव हमारे शरीर और मन में एक साथ होने लगें तो कई सवाल भी साथ लेकर आते हैं। महिलाओं के जीवन में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, मीनोपॉज यानी मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना, अचानक गर्मी लगना, नींद ना आना, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या फिर हड्डियों से जुड़ी परेशानियाँ, ये संकेत हो सकते हैं मीनोपॉज के। तो इन बदलावों को परेशानी नहीं, समझदारी से संभालने का समय है। यही विषय है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो महिला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रोफेसर रेणुका मलिक जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: शुक्रिया शिल्पा।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा प्रकाश जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनोकोलॉजिस्ट GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच शिल्पा।
1: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अक्सर महिलाएं कहती हैं हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये मीनोपॉज है क्या और क्यों होता है ये और किस एज में होता है?
2: शिल्पा, बहुत बढ़िया शुरुआत का क्वेश्चन है आपका। मीनोपॉज, जिसको हिंदी में रजोनवृत्ति कहते हैं, एक वुमेन की लाइफ में, औरत की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। ये अराउंड 46 और 47 ईयर्स के बीच में इंडिया में औरतों को होता है। महीने का माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना एक साल के लिए को रजोनवृत्ति कहा जाता है। और एक औरत का बेसिकली सारे शरीर पे एक ओवरीज जो होती हैं काम करना वो बंद कर देती हैं। ओवरीज वो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और बॉडी में इन डिफिशेंसी की वजह से काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो एक औरत को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इस पड़ाव के लिए और उसमें कुछ अपनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि ये पार्ट स्मूथली चलता रहे।
1: तो डॉक्टर सीमा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिसे हमें पता नहीं लगता लेकिन बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं।
3: हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है कि ये जो है एक ट्रांजिशन फेज तरह से होता है, जैसे कि सडनली नहीं होगा, आपको धीरे धीरे चेंजेस महसूस होने शुरू होंगे। खास करके जो मीनोपॉज का जो टाइम है, जिसे हम पेरीमीनोपॉज कहते हैं या प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स जिन्हें कहते हैं, उसमें धीरे धीरे महिलाएँ महसूस करना शुरू करती हैं, जैसे कि जिनको हम कहते हैं कि वेजोमोटर सिम्टम्स, एकदम से सडनली गर्मी लगना, हॉट फ्लैशेस जिसे कहते हैं, या चिड़चिड़ाहट हो जाना, मूड चेंजेस हो जाना, स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है। इसके अलावा जो है बोन्स की कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, हल्की पड़ने लग जाती हैं बोन्स, जिसे कि हम ऑस्टियोपीनिया से शुरू होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हैं जिन्हें कि हम जेनिटो यूरिनरी या जनांग से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें ड्राइनेस हो सकती है महिला को, हस्बैंड से संबंध बनाते समय पेन हो सकता है, और इचिंग हो सकती है, यूरिन करते समय पेन हो सकता है, या कई बार मल्टीपल टाइम्स उनको ये ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो, जबकि एक्चुअली ये रिलेटेड टू मीनोपॉज होती हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को एक बार अपनी जो 45 से 55 साल के बीच की जो उम्र है, जिसमें कि उनको मीनोपॉज किसी भी एज पर हो सकता है, तो उस समय पर उन्हें ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन इस बारे में सोचें और अपने डॉक्टर से सलाह लें।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज समस्याएं और समाधान पर। इस पे बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे। तो डॉक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किस एज में स्टार्ट हो जाती हैं।
1: ये जो मीनोपॉज से पहले एक फेज़ आता है जिसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, ये 40 साल की उम्र में आता है। मीनोपॉज से तकरीबन बिटवीन 5 to 10 ईयर्स पहले आता है। तो इसमें कैसे पता चलता है? आपकी जो माहवारी जो रेगुलर आ रही होती है, अब तक इरेगुलर होनी शुरू हो जाती है, 7 दिन पहले आ जाएगी या लेट आएगी, और आखिर में जब पीरियड बंद होने का टाइम और पास में आएगा तो महीना रुकना शुरू हो जाता है। 2 महीने माहवारी नहीं आई, और फिर आई तो कभी कभी ज़्यादा भी आ सकती है। ऐसे ऐसे करके एक फेज़ आता है कि महीना माहवारी आई, उस फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको कहते हैं, उसके बाद पीरियड आया ही नहीं, फिर 1 साल तक रुकने को, उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, रजोवृत्ति या मीनोपॉज बोलते हैं।
0: तो मीनोपॉज से पहले का दौर यानी पेरी मीनोपॉज की दस्तक को एक महिला कैसे पहचाने? शरीर में सबसे पहले कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे या शरीर कौन कौन से संकेत देता है?
2: देखिए, उसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या फिर उनको जो माइल्ड सिम्टम्स हैं कि कहीं जोड़ों में दर्द या गर्मी लगना, अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए बहुत तेज़ गर्मी लग सकती है, या उनके अंदर कुछ मूड चेंजेस आ सकते हैं जैसे कि चिड़चिड़ाहट हो सकती है, या मतलब उन्हें मन नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए, या घर में भी जैसे एंग्जाइटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। इस तरीके के माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं उनको एक पहचान की तरह से उन्हें दिखाई देना शुरू होते हैं। एग्जैक्ट जो मतलब सीवियर सिम्टम्स जो हैं वो मीनोपॉज के बाद ही ज़्यादा दिखाई देते हैं।
0: तो ये जो आपने कही कि जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये जो मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो इनको सबको कैसे मैनेज करें?
1: देखो, इसमें ये होता है कि हर किसी को परेशान नहीं करते, और 100% सबको नहीं हो रहे होते, तकरीबन 10 to 20% को होते हैं। उनमें से अराउंड 5% को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लग रहा है आपको इतने ज़्यादा हॉट फ्लशेज आ रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप रात को सो नहीं पा रहे, कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, तो उन कंडीशंस में हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, लिखती हैं, नमस्कार मैम, मैं दिल्ली नरेला से बात कर रही हूँ। मेरा यूट्रियस 2016 में और राइट ओवरी 2014 में निकाल दी गई थी। मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी। अब मेरी आयु 46 वर्ष है। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, थकान और हाथ पैरों में दर्द भी महसूस होता है। यदि मेरा यूट्रस निकाल दिया गया था तो फिर मेरी तो मीनोपॉज की कोई कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। मैं थायराइड की टैबलेट भी लेती हूँ 50 mg में। नाखून में भी लाइन लाइन सी नज़र आती है और आगे से फट जाती हैं। क्या ये भी उसी का कोई लक्षण हो सकता है? हाथों पर बहुत ज़्यादा तिल भी हो गए हैं आगे के हिस्से पर, कोहनी से पहले, और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। सुझाव दें, धन्यवाद।
2: एक्चुअली इन्होंने जो बताया, इनकी उम्र 46 साल है, पर इनका जो यूट्रस का जो सर्जरी हुई है, जो यूट्रस निकाला गया, वो आज से 10 साल पहले, मतलब कि 36 साल की उम्र पे निकाला गया। उसके 2 साल बाद शायद इनकी ओवरीज जो थी
0: जी,
2: वो उससे पहले निकाली गई है ना, एक ओवरी निकाली गई। तो बेसिकली ये समझने की बात है कि जो मेन फंक्शन था ओवरी का, वो एक ओवरी से काम चल रहा था। और जहाँ तक इनका ये क्वेश्चन है कि यूट्रस निकाल दिया तो ये मीनोपॉज के सिम्टम नहीं होने चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि अगर यूट्रस एंड ओवरीज निकल गई हैं तो डेफिनेटली ये सर्जिकल मीनोपॉज कहलाता है, खास करके जब ओवरी अपना काम करना बंद करती हैं, जो हमने बात की, जो मैडम ने अभी डॉक्टर रेणुका ने बताया।
1: इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जब सर्जरी एंडोमेट्रोसिस की करते हैं तो दोनों ओवरीज निकालते हैं, आपकी एक ओवरी या वो निकाल नहीं पाए होंगे, नहीं तो एक सर्जरी एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी में ओवरीज निकालनी चाहिए। ओवरीज के बहुत फायदे हैं, लेकिन एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें ओवरी निकालनी पड़ती है।
2: हाँ, तो उसमें जैसे मैडम ने शुरू में ही बताया था कि जो ओवरी के जो फंक्शन है, जो हार्मोन्स बनाती हैं, वो इनकी, सपोज़ इन्होंने एक ओवरी इनकी बच भी गई थी तो थोड़ा बहुत फंक्शन बचा होगा, पर उसके बाद जो इनके मीनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हुए होंगे। तो उस वजह से जो अभी ये जो बता रही हैं कि इनको इस तरीके की जो परेशानियां होनी शुरू हो रही हैं, जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं होना चाहिए था। इन्हें डेफिनेटली, जब एक तो इनका

0: भी वो आ गया, और दूसरा इनके केस में तो सर्जिकल मीनोपॉज हुआ है, मतलब कि सर्जरी के थ्रू वो निकाली गई हैं, तो उसमें डेफिनेटली मीनोपॉज तो अटेन कर ही लिया इन्होंने।
1: ऐसे केस में हम कैसे पता लगाते हैं कि अगर आपकी एक ओवरी छोड़ी गई है, जो आप इतनी हिस्ट्री दे रहे हो कि हिस्ट्री छोड़ वो काम कर रही है, यानी एक किस्म का टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है कि वो जो छोड़ी गई ओवरी है वो अब काम कर रही है या नहीं। वो भी काम नहीं कर रही तो फिर आपके सिम्टम्स मेनोपॉज से एट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकी चीज़ें रूल आउट करने के लिए। आपका थायराइड, अब आपने बताया आप दवाई खाते हो, बट क्या उसे अब TSH आपका नॉर्मल लेवल में है या नहीं, और जो आप हाथों पे नाखूनों में उंगली बता रहे हो, आपको एनीमिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी, और जो भी आपके डॉक्टर हैं वहाँ जाके एक बार आप दिखा के अपनी पूरी एक टेस्ट करवाएं कि पता रहे कि आपका कौन सा सिम्टम किस वजह से हो रहा है, और अगर आप बहुत सारी परेशानियाँ हैं तो उसमें देर इज एन ऑल्टरनेटिव, आपको ट्रीटमेंट दे के आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर कर सकते हैं।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: नमस्कारम।
0: नमस्कारम जी, आपका नाम, आप
2: कहाँ से? गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: हाँ, हमारी महिलाओं को एक बीमारी होती है ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज। तो मेरा पूछना है कि ल्यूकोरिया क्या है, और मेनोपॉज स्टेज के बाद भी ये होता है, और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है, और क्या ट्रीटमेंट है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: ल्यूकोरिया बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, हर एक डिस्चार्ज एबनॉर्मल या इन्फेक्शन वाला नहीं है। हाँ, कैंसर में भी डिस्चार्ज हो सकता है, बदबू वाला पानी आना कैंसर की निशानी भी है। मीनोपॉज में अलग किस्म का डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन और सूखापन होने की वजह से होता है, वो अलग चीज़ है। ल्यूकोरिया तो एक सिम्टम है कि आप आमतौर पर क्यों बोला जाता है ल्यूकोरिया है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो किस वजह से है, हेल्दी डिस्चार्ज भी होता है और इन्फेक्शन वाला भी होता है, इरिटेशन की वजह से भी होता है, एलर्जिक भी होता है, तो उसका जो वजह है उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। हर डिस्चार्ज गंदा नहीं होता, हर एक डिस्चार्ज इन्फेक्शन का नहीं होता।
0: और वो साथ में पूछे थे कि या इसके मीनोपॉज के बाद भी होता है,
1: मीनोपॉज के बाद मैंने ये बताया जिसको GSM बोलते हैं, वो सूखने नीचे वजाइना, सूखने की वजह से, इरिटेशन की वजह से,
0: जो हम बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज
1: होता है। बाय एंड लार्ज इन्फेक्शन और सब कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है आफ्टर मीनोपॉज, बट नीचे का सूखापन होना बढ़ जाता है।
0: डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
3: हाँ, बेसिकली जो हम बात कर रहे थे जेनिटो यूरिनरी जो सिंड्रोम होता है मीनोपॉज का, उसमें यही होता है कि जैसे ड्राइनेस हो गई, नीचे जो लाइनिंग है वजाइना की वो पतली हो जाती है, उसमें जिस तरह का डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया की बात जो हो रही है, ल्यूकोरिया आम भाषा में जो है महिलाएं ये सोचती हैं कि जो गंदा पानी आने की जो बीमारी है उसको ल्यूकोरिया कहते हैं, पर हम जब एग्जामिन करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि वो एक फिजियोलॉजिकल, मतलब कि नॉर्मल डिस्चार्ज है, या पैथोलॉजिकल है, बीमारी की वजह से है। जैसा कि मैडम डॉक्टर इनको ने बोला कि किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है, इवन कैंसर में जैसे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, गंदा बदबूदार पानी, खून में मिला हुआ पानी जो आता है, उसको भी हमें देखना होता है कि वो भी रिलेटेड टू ल्यूकोरिया ही है।
1: मीनोपॉज में अगर बदबूदार पानी जा रहा है तो ये कैंसर का साइन होता है, और जरूर जाके डॉक्टर को दिखाना है, ये चीज़ नॉर्मल ना माने, एंटीबायोटिक्स नीचे लगाने से ये ठीक नहीं होता, डॉक्टर को दिखा के आपको टेस्ट करवाना चाहिए।
0: डॉक्टर, जैसे कि पहले आपने बात करी थी हॉट फ्लैशेस की, तो ये हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
3: ये हॉट फ्लैशेस जो मैं बता रही थी कि बेसिकली कुछ सेकंड्स के लिए होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं और आपको सडनली एकदम ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर से गर्मी का महसूस होना, और बहुत तेज़ आपके जैसे चेहरे पे लाल हो जाता है, एकदम से आपको ऐसा फील होगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उसको जो ठीक करने का जो है, एक तो नेचुरल तरीके हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि आप थोड़ी ठंडी जगह पे रहिए, गर्म एटमॉस्फेयर को अवॉइड करना है आपको उस पर्टिकुलर एज में। दूसरा जो पेय पदार्थ जैसे हैं कि आप ठंडे पेय पदार्थ लें, आपके अंदर अगर जैसे कुछ और उससे रिलेटेड, जैसे कि थायराइड, अभी बात की थी कि थायराइड है, अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म है तो भी आपको गर्मी लग सकती है, तो उसका इलाज कराएं। अगर आपको अनीमिया है या कुछ भी रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनका साथ के साथ इलाज कराएं, डाइट अच्छी लें, मल्टी विटामिंस लें और न्यूट्रिशनल डाइट लें, मतलब कि बैलेंस डाइट खाएं, और पानी खूब पिएं, मतलब दिन में कम से कम 8 गिलास के करीब पानी उन्हें पीना चाहिए।
0: तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं या चेंजेस हम फील करते हैं, तो क्या ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या वजह है इसकी?
1: खाइए हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में धीरे धीरे कम होकर फिर बंद हो जाते हैं।

0: वजह से ये बॉडी में ये चेंजेस आते हैं।
1: और अक्सर देखा जाता है कि नींद की प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, कि महिलाएं कहती हैं मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या किया जाए?
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट जब 40 साल की उम्र में देखा गया कि आपकी स्लीप डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा सिम्टम्स अगर ट्रांजिशन फेज में देखा जाए तो ये स्लीप डिस्टरबेंस का है। तो इसको टैकल करने के लिए स्लीप हाइजीन होता है कि आप सोने से पहले चाय कॉफ़ी ये सब ना पिए, ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, टीवी ज़्यादा नहीं यूज़ करें, और अपना जो बेडरूम है, जो बेड है, सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल की जाए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे सब काम कर रहे हैं दिन में बैठे, तो जो बेड का यूज़ है वो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा है, यू शुड हैव अ मतलब बेडशीट चेंज करें, डार्क रूम हो, एग्रीवेटिंग चीज़ें अवॉइड करें, झगड़ा, एक्सरसाइज उस टाइम पर ना करें, तो उस तरह आपको अच्छे से नींद आएगी। और अगर ये चीज़ें ना वर्क करें तो फिर ऑब्वियसली मेडिसिन हैं उसको नींद देने की, दवाइयाँ हैं।
1: और स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो वो भी आपको छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होना
0: जो
1: चाहिए।
0: स्लीप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको रिजुविनेट करती है। जो आप दिन भर काम करते हो, आप रात को सोते हो तो आप रिफ्रेश होते हो, तो अगले दिन आप जब सो के उठ रहे हो तो आपको रिफ्रेश होना चाहिए एक नए दिन के लिए। अगर अच्छी नींद नहीं आई अगले दिन आप फिर थके हुए हो रहे हो, तो क्रॉनिक फिटीग बन जाता है, जिससे आपकी इरिटेशन, आपकी वर्क परफॉर्मेंस सब कुछ डिटेरियट होती है। अच्छी तरह सोना, जो एवरेज अराउंड 8 आवर्स, वेरी करता है फ्रॉम 6 to 9 आवर्स, बट अच्छे से नींद आनी चाहिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफ्रेश होने के लिए।
1: और अक्सर कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद वेट गेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसके लिए कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करें?
0: बिल्कुल सही, वेट गेन बहुत सीरियस इशू है, स्पेशली हमारी कंट्री में, जिसको वैसे भी दिल्ली को ओबीस कैपिटल माना जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मीनोपॉज हो जाए, नॉर्मली 40 साल के बाद बॉडी का कोई अंग नहीं बढ़ता। अगर आप उतना ही खाते रहोगे तो कहाँ वेट बढ़ेगा, आपका मिड सेगमेंट ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगी। वो सबसे ख़राब साइन है फॉर फ्यूचर कार्डियक प्रॉब्लम्स, फॉर योर नी प्रॉब्लम्स। हर एक जितना 1 किलो वेट आपके नी पे, बहुत 4 या 5 गुना वेट डालता है, नी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो वेट आपको बढ़ाना नहीं है, और अगर आपको डाइट अपनी खानी है तो कार्ब्स कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, प्रोटीन्स बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी को ट्रिम एंड फिट रखिए, ताकि जो भगवान ने एक्स्ट्रा लॉन्गविटी बढ़ाई है आपकी, 20 साल एक्स्ट्रा हम सब जी रहे हैं, तकरीबन 90-100 एक्सपेक्टेड है अर्बन एरियाज में लाइफ, तो वो आखिरी टाइम आपका फिट और हैप्पी निकले, ना कि किसी पर डिपेंडेंट या बेड रिडन।
1: जी, साथ में जैसे कि अभी आपने कहा कि जोड़ों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, तो बोन्स भी वीक हो जाती हैं, तो डॉक्टर हाँ सीमा आप क्या कहेंगी इस पर?
2: बोन्स वीक होने का, जैसा कि अभी डॉक्टर रेणुका बात कर रही
1: जी
2: थी कि वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन अपने एक पर्टिकुलर एज के बाद, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली स्लो डाउन होता है, आप एज के साथ थोड़े स्लो होते ही हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि
1: जी
2: यंग एज में जो आपके अंदर फुर्ती और जो आपकी तेज़ी होती है वो डेफिनेटली एज के साथ थोड़ी कम होनी शुरू होती है। तो आपको वीक में 5 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। 5 घंटे से मेरा मतलब है कि आप पर डे या तो हाफ एन आवर कर लें या 45 मिनट्स कर लें, वीक में 5 दिन कर लें। तो उससे और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है मीनोपॉज में, कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वेट बियरिंग का ध्यान रखें, कि जो एक्सरसाइज है वो वेट बियरिंग हो, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होती है और आपका मसल मास भी अच्छा रखती है वो। तीसरी चीज़ जो बोली गई कि वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट सरकमफ्रेंस का बहुत बड़ा रिलेशन पाया गया है हार्ट डिजीज से रिलेटेड एंड ओवरऑल हेल्थ से, मतलब लिपिड प्रोफाइल एंड वो सब भी उससे रिलेटेड होता है। लड़कियों में जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसमें भी हम बोलते हैं कि वेस्ट सरकमफ्रेंस ठीक करें। तो वेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो हमने बात की कि न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होनी चाहिए। न्यूट्रिशन में मेन आपको फोकस रखना है कि आप प्रोटीन्स ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आलू है और चावल है, चीनी है, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस करें अपनी डाइट में। और अगर आप एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनका इंटेक थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, और सोयाबीन्स हैं, इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्ड करेगी। एंड जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोली कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एंड तीसरी चीज़ जो कि कहा कि अगर आपको इनसे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो थोड़े से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोन हेल्थ के लिए। दूसरा मल्टीविटामिन्स दे दिए जाते हैं और एक विटामिन डी। जो हाँ, वॉक की जो बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि आप सुबह और शाम में किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं। तेज सन की रेज जो है बॉडी पे ना डालें, क्योंकि यूवी इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी पे। तो आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करें, हाफ एन आवर टू वन आवर वॉक कर सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू।
0: इस पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, वॉकिंग को एक्सरसाइज ना समझें, सबसे लोएस्ट लेवल की एक्सरसाइज वॉकिंग है, आप उसके ऊपर आप बैलेंस एक्सरसाइजेस कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज करो, क्योंकि ओल्ड एज में देखा गया हम बैलेंस करना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है, लोग स्लिप कर जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। तो नहाना की भी प्रक्रिया है कि जब आप कपड़े बदलते हैं तो बाथरूम में ना करें, बाहर आके अपने रूम में आके बैठ के चेंज करें, तो बाथरूम स्लिप करने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे रेलिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव रेलिंग। ये ओल्ड एज पे फ्रैक्चर अवॉइड करने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान बचा सकती है लिटरली।
1: एक मैसेज हमारे पास ये है टीना फ्रॉम भोपाल, ये लिखते हैं डॉक्टर, इफ द लेडी हैड अ हाइस्टेरेक्टमी एट द एज ऑफ 44-46 विल शी हैज अ मेनोपॉज सिम्टम्स, इफ यस हाउ डिफरेंट वुड दे बी, इफ नो हाउ डिफरेंट वुड दे बी।
0: नो, द क्वेश्चन इज हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मीन्स देखो यूट्रस निकालना और मीनोपॉज में फ़र्क है। मीनोपॉज कहते हैं ओवरीज नहीं काम कर रही हैं, यूट्रस अगर आप निकाल दो कि पीरियड तो बंद हो जाएंगे, लेकिन ओवरीज अगर काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट मीनोपॉज, इट्स नॉट सर्जिकल मीनोपॉज। ओवरीज निकाल दो उसको सर्जिकल मीनोपॉज कहते हैं। तो आपकी यूट्रस निकल गया, पीरियड बंद हो गया, ओवरीज फिर भी काम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
2: एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि जो मीनोपॉज है, सभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि महीना बंद हो गया तो मीनोपॉज हो गया, खास करके जैसे यूट्रस निकला तो आपको माहवारी बंद हो जाएगी, पर अगर आपकी ओवरीज इंटैक्ट है अंदर तो ओवरी काम कर रही है, ओवरी आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी को दे रही है, तो वो मीनोपॉज नहीं माना जाएगा। उसको हम कहेंगे कि आपका यूट्रस निकल गया, आपका पीरियड स्टॉप हो गए, बट इट इज़ नॉट मीनोपॉज, ये आपका सिर्फ सर्जरी हुई है हिस्टरेक्टमी। अगर आपकी ओवरीज भी दोनों निकाल दी जाती है देन वी कॉल इट सर्जिकल मीनोपॉज।
1: डॉक्टर सी रेनू को आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
0: मैं ये बोलूँ कि मीनोपॉज जो होता है ना कई तरीके के होते हैं, जैसे एक सर्जिकल हो गया, एक आपका नेचुरल मीनोपॉज हो गया, कभी कभी कैंसर की दवाइयाँ देते हैं तो भी मीनोपॉज हो जाता है, कीमोथेरेपी मेडिएटेड मीनोपॉज, कभी कभी प्री वक्त से पहले मीनोपॉज भी हो सकता है, जिनको 40 साल से पहले हो गया उनको खास तौर पे दवाई की ज़रूरत है कि वो जल्दी बूढ़ा ना हो, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मसल वीकनेस के, फ्रैक्चर होने के।
1: इस पर बातें हम और भी करेंगे कि जैसे आपने कहा जिनको जल्दी हो जाता है तो वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज समस्याएं और समाधान पर। तो डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीओआई का नाम आजकल काफी सुना है, तो ये है क्या?
2: हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है शिल्पा। एक्चुअली POI आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। POI इज़ बेसिकली फुल फॉर्म में अगर बोलें तो प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी, मतलब कि ओवरी ने प्री मैच्योरली काम करना बंद कर दिया। अब वो प्री मैच्योर किसको कहते हैं? वो हम यूजुअली जो हमारा बाय डेफिनेशन है वो हम कहते हैं कि अगर 40 साल से पहले महिला को महीना आना बंद हो जाए, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज, जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे ही मेनार्की शुरू होती है, मतलब कि पीरियड आना शुरू होते हैं, उसके बाद अगर महिलाओं को किसी भी पर्टिकुलर एज में महीना आना बंद हो जाता है 6 महीने से ज़्यादा, तो उसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी के क्राइटेरिया में रख सकते हैं। पर उसका जो हम फाइनल जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हार्मोन का टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो एक्चुअल प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी है या नहीं है। आजकल काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं POI के, और इसका जो इम्पैक्ट है उसके कई सारे इम्पैक्ट हैं, जो कि अभी हमने बात की कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं महिलाओं के, उसी तरह के उनमें भी होते हैं और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो सकते हैं, अर्ली एज पे होते हैं। दूसरा इससे रिलेटेड जो, क्योंकि यंग एज में हो रहा है तो इनफर्टिलिटी से भी ये इसका काफ़ी अच्छा जो कोरिलेशन देखा गया वो देखा गया है, क्योंकि मैं आजकल एक तो लेट मैरिज और दूसरा डिलेड चाइल्ड बियरिंग की वजह से कई बार महिलाएँ ऐसे उस पर आ जाती हैं कि उनको पीरियड ही आना बंद हो गया और जो कि उनके पास अभी प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है। तो उस चीज़ को हम इस तरीके से टैकल करते हैं कि पहली चीज़ तो हम उनको ये देखते हैं कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो किस पॉइंट के लिए हमारे पास आई हैं। बेसिकली या तो उनको सिम्टम्स हो रहे हैं मेनोपॉज से रिलेटेड, पीरियड बंद हुआ है, तो डेफिनेटली कोई भी महिला अगर उसको 40 साल से पहले पीरियड बंद हो जाता है तो एक एंग्जाइटी होती है कि ये क्यों हो गया। ये तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि वो परेशान होंगी कि हमें पीरियड इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया, और ख़ास करके उन महिलाओं को जिनके कि अभी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है और उनको पीरियड बंद हो गया तो और ज़्यादा एंग्जाइटी का इशू बन जाता है वो। तो उसमें बेसिकली जो है हम दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हमें ये देखना है कि उसका कारण क्या है प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का, कि वो जेनेटिक भी होता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपके परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री से मेरा मतलब जो खून का पहला रिश्ता, मतलब कि माएँ और बहनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, अगर आपके बहन या माँ में जल्दी उम्र में हुआ है तो आप में भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है जल्दी मेनोपॉज होने का। दूसरा, इसके कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनको कि हम जेनेटिक सिंड्रोम्स कहते हैं, उनमें भी ये हो सकता है। तीसरा, कुछ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। चौथा, सर्जिकल, जो कि हमने बात की कि सर्जरी हो गई उसकी वजह से हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, कारण हमें ढूंढना होता है। एंड उससे रिलेटेड जो भी अभी मैंने बात की कि किस वजह से वो हमारे पास आई हैं, उससे रिलेटेड ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली उसी तरीके का है जैसा कि मेनोपॉज में होता है, एक्सेप्ट फॉर उन लोगों में चेंज आता है जिनको कि फर्टिलिटी का भी इशू है।
1: तो डॉक्टर सीमा, आपने हमें बताया कि प्री मेनोपॉज ट्रीटमेंट और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर रेणुका आप हमें बताइए क्या उसका इम्पैक्ट रहता है।
3: हाँ शिल्पा, ये

0: बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मेनोपॉज होने के बाद कोई भी ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, ठीक है. अगर एक साल हो गया आपका पीरियड बंद हुए, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, और जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर चेक कराएं. नॉर्मली अराउंड 10% में कैंसर निकल सकता है या कैंसर की शुरुआत हो सकती है. जैसे आप सबको पता है कैंसर शुरुआत में अर्ली स्टेजेस में तो बहुत अच्छा उसका इलाज है, लेकिन अगर इसको निग्लेक्ट कर दो आप तो धीरे धीरे कैंसर फैल जाता है, फिर आगे का प्रोग्नोसिस उतना ही खराब हो जाएगा. तो अगर किसी औरत को पीरियड बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, चाहे स्पॉटिंग ही क्यों ना हो, तो उसी टाइम जाके डॉक्टर की राय जरूर लें.
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखती हैं, हाय मैम, देहरादून से. मेनोपॉज के बाद मुझे अल्सर की बीमारी हो गई है, तो बोन्स हेल्दी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या खाएं?
2: अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रही हैं ये?
1: वो तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने
2: क्या गैस्ट्रिक अल्सर, तभी शायद इन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही होगी
1: जी.
2: तो बेसिकली तो गैस्ट्रिक अल्सर का तो इन्हें इलाज कराना होगा. डायग्नोसिस कैसे बनाए, शायद एंडोस्कोपी हुई होगी, उसी से हुआ होगा. तो पहले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज कराएंगे. उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो तो हमारा सेम रहता है, एक्सेप्ट फॉर के हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, जो मेनोपॉजल थेरेपी है जिसके कि हम बात कर रहे थे कि हार्मोन थेरेपी जो दी जाती है, जिनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हम ओरल ड्रग्स मतलब मुंह से देने वाली दवाइयां ना देके जेल भी लगा सकते हैं, क्रीम्स लगा सकते हैं, कुछ स्प्रे आते हैं वो दे सकते हैं, तो ताकि उनके स्टमक पे वो इफ़ेक्ट ना आए. तो अगर इनको उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि ये इस्तेमाल कर सकती हैं हार्मोन थेरेपी के लिए.
1: और साथ में वो ये भी पूछ रही हैं कि बोन्स हेल्दी रहे और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या खाएं?
0: उसके लिए आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए विटामिन्स लें, एक्सरसाइज करें, और हड्डियां स्ट्रांग करने के लिए आप अपना अगर एज कितनी बताई इन्होंने आपने?
1: इन्होंने एज मेंशन नहीं की.
0: तो अगर एज अगर आपकी ज़्यादा है तो एक टेक्सा स्कैन होता है जिससे बता सकते हैं कि आपका हड्डियाँ कितनी स्ट्रांग है, और बेटर है कि प्रिवेंशन में जाएँ. अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक से अच्छा से कैल्शियम खाएंगे, विटामिन डी लेते रहेंगे, तो आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगे. एक नियम होता है, इस्तेमाल करते रहो चीज़ की, अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो वीकन होगी. जिस तरह हेड दिमाग अपना यूज़ करते रहो तो दिमाग चलता रहेगा, शरीर टांगे आप चलाते रहें तो स्ट्रांग रहेंगी. ये अगर आप सीढ़ियाँ लिफ्ट मत इस्तेमाल कीजिए, अगर सीढ़ियाँ चल सकते हैं तो सीढ़ियाँ चलें, अनलेस कि आपकी डॉक्टर नी की प्रॉब्लम की वजह से मना करे. सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. अगर लिफ्ट है तो और सीढ़ियाँ हैं तो प्रेफर सीढ़ियाँ, दैट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज.
1: डॉक्टर, आपने अभी दिमाग की बात करी, तो इस एज में अक्सर मेनोपॉज के बाद मेमोरी लॉस का इशू बहुत मेजर होता है, काफ़ी लोग कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उसकी वजह क्या है?
0: मेनोपॉज में नॉर्मली MCI जिसको बोलते हैं, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन कभी कभी ये अल्जाइमर्स की शुरुआत भी होती है. अल्जाइमर्स इज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो ये आपको डॉक्टर को दिखा के एक बार चेक कराना है कि कुछ चीज़ें तो नॉर्मल है, कुछ चीज़ों को भूलना वो तो एज के साथ साथ होता है, उसको भी रेक्टिफाई करने के तरीके, आप कोई नई चीज़ें सीखिए, गाना सीखिए, म्यूज़िक ले, इन चीज़ों से दिमाग की कनेक्शंस बने रहते हैं और स्लो डिक्लाइन होता है. और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से भी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, अगर रात को आप ढंग से सोए नहीं उससे भी आपका मेमोरी लॉस ज़्यादा होगा. तो आपको दिखाना है कि क्या चीज़ कितना आपका क्रॉनिक डिक्लाइन है, और ये नॉर्मल में है, नॉर्मल में आ रहा है, और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए.
1: अक्सर होता है कि महिलाएं सामान रख दिया, भूल गई.
2: बेसिकली वही है कि आप जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड रखेंगे, ब्रेन के साथ भी यही है, इट इज़ जस्ट लाइक ए गेम. आप जितना ज़्यादा ब्रेन को एक्टिवेट रखेंगे, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, नए नए सम्स कीजिए या मैथ्स कीजिए या कोई भी पजल्स आती हैं वो कीजिए. मेमोरी गेम्स भी होते हैं जो कि आप कंटिन्यूसली रख सकते हैं अपने आप को कंटिन्यूटी में. जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा आपका ब्रेन, उतना ही कम चांसेस होते हैं उसमें मेमोरी लॉस होने के. और इसमें मेनोपॉज में एक खास चीज़ होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जैसे आपने बोला कि रखती चीज़ और भूल गए, लॉन्ग टर्म याद रहती हैं चीज़ें, पुरानी बातें सब याद रहेंगी, पर जो अभी अभी हुआ है वो भूलती हैं. तो ये बड़ी खासियत है मेनोपॉज में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस काफ़ी कॉमन होता है. तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो कैल्शियम की जो हम बात करते हैं, मैं वहाँ एक पॉइंट ज्वाइन करना चाह रही थी कि डाइट जो रिच इन कैल्शियम होती है उसमें जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा लें, सोयाबीन लें, और जैसे ये जो आते हैं जिनको मखाने कहते हैं, मखानों में फॉक्स सीड्स, और जो आजकल बहुत सारे सीड्स आ रहे हैं उनको आप तरीके तरीके से खा सकते हो.

0: चीज़ में डाल के, तो वो बहुत अच्छे हैं मीनोपॉज एज में। एंड एक और चीज़ जो कि हमने खुद स्टडी की थी हमारे हार्मोन क्लिनिक में, कि हमने उन्हें 6 कलर्स ऑफ डाइट दिए थे इन लंच एंड डिनर, एंड इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देयर जनरल वेलबींग। जैसे कि हमने बोला कि आपकी डाइट में 6 कलर का
1: जो कलर्स टू देयर लाइफ,
0: हाँ, एंड इट रियली हेल्प देम। आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड, बट रियली इट हेल्प्ड।
2: इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, एक स्पेशल विटामिन है जिसको बोलते हैं सोशल विटामिन। जितना आप सोशली एक्टिव रहोगे, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, उतना आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होगा। ये देखा गया है कि जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं उनकी कॉग्निशन, उनकी स्लीप, उनका हर किस्म का डिक्लाइन स्लोअर होता है। तो दिस इज स्पेशल विटामिन टू बी सोशली एक्टिव।
1: यानी इस एज में आके हम कई बार सोचते हैं कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, अब हम रिलैक्स करेंगे, तो रिलैक्स होते हैं तो बॉडी भी और ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है।
2: बिल्कुल, यूज इट और लूज इट, जो भी चीज़ है उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो धीरे धीरे जाएगी।
1: लेकिन ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइंस हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें अब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: जैसे बताया, एक बदबूदार पानी का जाना, ब्लीडिंग होना, या आपकी इतनी ज़्यादा हड्डियों में कमजोरी होना और वक्त से फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होना, जरा सी बात, जरा सा चोट लगी आपकी और आपकी हड्डी टूट जाए, ये सब एबनॉर्मल चीज़ें हैं। एकदम अचानक वेट लॉस होना, बिल्कुल ही ना सो पाना, टोटली भूल जाना कि रिश्तेदारी क्या है, मतलब बेटे का नहीं पता, ये अल्जाइमर्स की साइंस हैं। इन चीज़ें ये रेड फ्लैग्स हैं जब जाके बिल्कुल आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आगे भी जाने ना तू, मूड चाहे जैसा भी हो, गाने सुन के मूड हमेशा रिफ्रेश हो जाता है। तो डॉक्टर रेणुका, आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसी थेरेपी या इलाज है जिससे ये प्रॉब्लम्स ना हो।
1: देखो, एजिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। देर इज़ नथिंग लाइक फेमिनिन फॉर एवर। कुछ लास्ट सीजन्स है, ये भी एक सीज़न है जिसको एक्सेप्ट करो। हम कब ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट हम तब देते हैं कि अगर कोई सिम्टम इतना ज़्यादा सिवियर हो रहा है कि पेशेंट की लाइफ ख़राब हो रही है, तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देते हैं। पूरे लाइफ ये नहीं कि खाते रह रहे हारमोन्स। तो वी जो MST, जिसको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी होती है, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिवियर हॉट फ्लैशेज हो रहे हैं या नीचे की खारिश और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही है, तो उनको हम हार्मोन्स देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कभी कभी हमें प्रोलॉग भी करना होता है। इसके साथ साथ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। जिनके हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिनको रिस्क है फ्रैक्चर होने का, तो उनकी हड्डी मजबूत करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मसल्स इनकी वीक है, उनको एक्सरसाइज बताई जाती है, और स्लीप और कॉग्निशन उनके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए स्पेशल मीनोपॉजल क्लिनिक्स रन होती हैं इंडिया में। जो इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी है वो इसको काफ़ी सारी जगह पे इन्होंने मीनोपॉज क्लिनिक्स बना रखी हैं। दिल्ली में भी ईच गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नाउ इधर स्टार्टेड और दे आर स्टार्टिंग मीनोपॉजल क्लिनिक्स, जहाँ पे मीनोपॉज के लिए जो खास डाइट का ध्यान, कैंसर स्क्रीनिंग और रिस्क असेसमेंट वो सब किया जाता है। और हर पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि किन इनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको हार्मोन्स देने पड़ते हैं, कुछ नॉन हार्मोनल्स के लिए होते हैं, और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए। लाइफ स्टाइल चेंजेस तो हर किसी को बेसिकली सिखाए जाते हैं कि क्या क्या करें ताकि बीमारी ना हो, और अगर है तो वक्त से पहले उसका पता रहे।
0: डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहेंगी इसमें?
2: हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जो मीनोपॉज हार्मोन थेरेपी के क्लिनिक्स जो बने हुए हैं, उसमें जो महिलाएं हैं जिन्हें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं मीनोपॉज के, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि हम अप टू 10 ईयर्स ऑफ मीनोपॉज जो होता है तब तक ही हार्मोन थेरेपी का ट्रीटमेंट उनको देते हैं। उसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है 3 to 5 ईयर्स के लिए यूजुअली हम चलाते हैं। पर इसमें जो एक खास चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कैंसर ब्रेस्ट एंड कैंसर एंडोमीट्रियम, इन केसेस को हमें खास ध्यान रख के हार्मोन थेरेपी देनी होती है, क्योंकि जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो भी उसी के ऑलमोस्ट नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं। तो उनसे रिलेटेड जिस तरह के भी कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। तो कोई भी महिला अगर हार्मोन्स ले रही है और वो ये सोचती है कि बहुत अच्छा उसको इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो अपने आप से उसको कंटिन्यू ना करती रहें, उनको रेगुलरली फॉलोअप में रहना होता है। इसी की वजह से ये हार्मोन थेरेपी जो क्लिनिक्स हैं ये चलाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा एज होने की वजह से वो भीड़ भाड़ वाली OPD नहीं अटेंड कर पाती हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्लिनिक्स हैं जिनमें 25, 30, 40 पेशेंट्स होते हैं और उनको बहुत आराम से तसल्ली बख्श तरीके से देखा।

0: जा सकता है।
1: तो ये जो आपने HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया है, तो इसकी भी कोई स्पेसिफिक एज होती है?
0: हाँ, जो मैंने बताया कि आपको जब भी मीनोपॉज हुआ है, जैसे कि अभी मैडम ने बात की कि सर्जिकल मीनोपॉज हो सकता है या नेचुरल मीनोपॉज हो सकता है। नेचुरल मीनोपॉज की हमने बात की थी कि वो 45 से 55 के बीच कभी भी हो सकता है। सर्जिकल मीनोपॉज तो जब आपकी ओवरीज निकाल दी तो सर्जिकल मीनोपॉज हो जाएगा। तो उसके बाद में एट एनी टाइम मरीज जो होते हैं उनको सिम्टम्स आ सकते हैं और उनको ज़रूरत पड़ सकती है हार्मोन थेरेपी की। कई लोगों में नहीं भी ज़रूरत पड़ती, कई लोग नेचुरली इन चीज़ों को, जैसे कि उनकी हमेशा से डाइट बहुत अच्छी रही हो, कैल्शियम रिच डाइट लेते हों, हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हों, इस तरीके की जिनका लाइफ स्टाइल होता है, कई बार उनमें ये सिम्टम्स बहुत मिनिमल भी होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो उनको कई बार हॉर्मोन्स की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, सिर्फ उनका जो है हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि उनमें जो मीनोपॉज से रिलेटेड या अनरिलेटेड एज रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है।
1: कई बार होता है फीमेल्स में देखा जाता है, जो उनकी मंथली साइकिल होती है, तो जैसे 20-21 डेज में आती है, कई बार किसी मंथ 15 डेज में आ गई, कई बार 10 डेज में भी आ जाती है, कई बार लेट भी हो जाती है, तो कई बार वो उस पर सोचने लगती हैं, तो उनको उस पर क्या करना चाहिए? डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए या खुद कुछ करना चाहिए?
0: हाँ, इसमें एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, 8 साइकिल्स पर ईयर। आप एक तो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बना के रखिए, आपके पास डायरी हो, दीवार पे लाइन लगा सकते हो, या फ़ोन में ऐप आती है जिसमें कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का कैलेंडर बना के रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 साइकिल्स अगर आपको साल में आ रही हैं, मतलब 8 बार अगर आप ब्लीड कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। पर उसका जो इंटरवल है उसे हम ऐसे देखते हैं, 21 से 35 दिन। मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आया और आपको दूसरा पीरियड फिर 21 तारीख को शुरू हुआ, तो हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बॉदर करते। या 35 दिन बाद आया, मतलब 5 तारीख के बाद आया, तो हम कुछ नहीं करेंगे। पर अगर उसके भी बाद आया, बार बार ऐसा हो रहा है, या उससे भी पहले आया, इक्कीस
1: जैसे
0: दिन से पहले,
1: अगर जैसे एक को किसी का आया तो उसके बाद 10 को आ गया, तो
0: हाँ डेफिनेटली
1: वो
0: फिर तो
1: सही है गलत है?
0: वही गलत है, वही मैं बता रही हूँ। अगर 21 दिन से पहले आ रहा है और बार बार आपके साथ ये रिपीट हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से कि आपका जो ब्लीडिंग है वो बार बार हो रही है, तो उसका तो चेकअप होना बनता ही है। तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखती हैं, हाय अनीता, आई एम 46, हेल्दी, अनमैरिड एंड अ वर्जिन। ट्वाइस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अबाउट अ मंथ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस विच स्टॉप्ड आफ्टर 21 डे हार्मोनल कोर्स। आई हैड अ टोटल थायराइड डेक्टमी एट 24। आई हैव नो हॉट फ्लैशेस और स्लीप इशूज़। आई कंज्यूम अबाउट 1 लीटर ऑफ मिल्क कर डेली, इज इट एनफ?
2: हाँ जी अनीता, अभी तो आप बहुत यंग हो, 46 के हो, और अभी तो मीनोपॉज हुआ नहीं है, अभी तो आप ट्रांजिशन फेज में हो, यानी आपको पीरियड की खराबी हो रही है, तो अभी तो लॉन्ग लाइफ है, यू शुड रिमेन हेल्दी। तो अब बस ये टाइम आपसे अब से ध्यान रखना है। अब आप देखो आपको मीनोपॉज कब होता है, इसका नेक्स्ट पीरियड आपका कैसे आ रहा है, उसके बाद जैसे ही आपको सिम्टम्स आने लगे, पीरियड या ज़्यादा आता है या पीरियड नहीं भी आता, तब आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें, तब एक्सरसाइज करें। अब यहाँ से आप अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए।
1: मीनोपॉज के बाद अक्सर एक हमारा मेंटली हम सोचते हैं कि हम ओल्ड हो गए या हमारी एज फैक्टर हो गया, तो लेकिन ऐसे में सभी महिलाओं के लिए मैं जानना आपसे जानना चाहूँगी, आप कहें बताएं कि वो अपने आप को एक्टिव, हेल्दी और एनर्जेटिक कैसे रखें, कैसा लाइफस्टाइल वो फॉलो करें।
0: वो आपने खुद ही बता दिया, आपने एक सेंटेंस में खुद ही बता दिया, एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक। एक्टिव रहें, हेल्दी डाइट खाएं, और एनर्जेटिक मतलब कि हर जगह आपको सोशली भी एक्टिव रहना है, और अपनी लाइफ में आपको मतलब सबके साथ इंटरेक्ट करके चलना है, सो दैट आपका ब्रेन भी उतना ही फंक्शन करे। एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मीनोपॉज में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रेस्ट की हेल्थ, तो ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी कॉमन है इंडिया में, तो उसकी स्क्रीनिंग भी ज़रूर करा लें सभी महिलाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो ना उनको सिम्टम भी हो तब भी वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग ज़रूर करा लें।
1: और कुछ ऐसी डाइट जो उनको डेली में खानी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ जो उनको अवॉइड करनी चाहिए?
2: देखिए ऐसा होता है, जब मीनोपॉज होता है ना, बॉडी में चेंजेस आते हैं। जो एक वुमेन है वो अपनी ब्यूटी को, बालों को, स्किन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो जिनको लगता है धीरे धीरे हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन में वो टेक्स्चर, वो ग्लो नहीं रहा, तो कुछ कुछ तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल का झड़ना, चल नहीं पाना, वो सब एबनॉर्मल है। कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन एजिंग तो होगी, एक थोड़ा सा डिक्लाइन बॉडी में एनर्जी

0: है, होता है, वो नॉर्मल चीज़ है।
1: और कई बार होता है महिला होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को घर पे शेयर करने में हेजिटेट करती हैं, या डॉक्टर के पास जाने में भी हेजिटेट करती हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देंगे?
0: देखिए मेनोपॉज ये टाइम है जिसमें अब आपको अब अपना ध्यान रखना है, सब कुछ आपको नहीं मालूम होता, तो इसमें ज़रा सी अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है तो आप जाके डॉक्टरी सलाह लीजिए, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो उनकी कंसल्टेशन लिए।

0: कराएं, पर एटलीस्ट दिल्ली वाली महिलाओं के लिए तो ये फायदा है कि यहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट मेनली जो है फीमेल्स हैं।
1: तो आप हमारी सभी श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: ये मैसेज देना चाहेंगे कि जिंदगी का हर हर सीजन एंजॉय कीजिए, ये मेनोपॉज भी जिंदगी का एक सीजन है, उसको भी एंजॉय कीजिए, और ये बेस्ट पार्ट होना चाहिए, ये एक शाम की तरह है, जिंदगी की शाम है जो सबसे सुंदर होनी चाहिए, सेहतमंद और सुंदर।
1: और डॉक्टर सीमा, आप?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें और हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं। कलरफुल से मेरा मतलब है कि हर तरीके से कलरफुल, अपना जो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, क्योंकि अब आपकी एज ऐसी हो गई है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर से ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती हैं। अब आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी सेहत पे ध्यान दें, और ये देखें कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो जैसे ही आपको लगता है कि कोई भी चीज़ की आपको जानकारी मिल रही है, उससे जितना आप फ़ायदा उठा के अपने हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, आप उतना मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें।
1: तो श्रोताओं, मेनोपॉज जिंदगी का अंत नहीं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। ज़रूरत है अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझने की, अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की और सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेने की। तो अपनी सेहत की आवाज़ सुनिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहीं दो महिला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रेणुका मलिक, प्रिंसिपल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर सीमा प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट जीडीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पूछे और ऑलमोस्ट पूरा मेनोपॉज हमने कवर कर लिया आज।
2: शिल्पा शुक्रिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा, लगता है हमारे श्रोताओं को भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें पसंद आया।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप भी हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आई डी है healthair@gmail.com। जाते जाते सभी महिलाओं के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सबका ख्याल रखा है आपने, अब थोड़ा ख्याल अपना भी रखिए, क्योंकि आप भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो पर ये वक्त है मुख्य समाचारों का। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीददार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। चैंपियनशिप इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। फीफा विश्व कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। और अंत में मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की बारिश का अनुमान है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

इश्क मोहब्बत प्यार आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर और साथ ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट यानी कि इंफोटेनमेंट का फुल ब्लेंड आकाशवाणी रेनबो की इन्हीं मैजिकल फ्रीक्वेंसीज पर। वक्त की बात की जाए तो 4:08 और पूरे 10 सेकंड हुए हैं। अल्फा जेन प्रोग्राम आपके साथ है, साथ में हूँ मैं प्रियंका मामगेन। और आज अल्फा जेन प्रोग्राम के सेगमेंट करियर पाथवेज में हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की, जिनके बारे में जानकर समझकर आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और आज करियर पाथवेज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करियर इन फैशन डिजाइनिंग।

हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, और अपने आप को खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम सभी कई सारे आयामों पर काम करते हैं। वहीं हमें खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने में हमारे कपड़े, हमारी ड्रेसेस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हर साल अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं कपड़ों पर, ड्रेसेस पर, फैशन पर। और आज करियर पाथवेज में हम बात कर रहे हैं करियर इन फैशन डिजाइनिंग की। तो कैसे पता चले कि फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री एक सही कदम है, एक सही जगह है जहां आप अपना करियर बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं? तो इसके लिए कुछ थोड़े से आयाम होते हैं जो अपने आप पर्सनालिटी में, आपकी पर्सनालिटी में झलक रहे होते हैं। आप क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, आपकी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, आपको कलर्स, पैटर्न्स, डिज़ाइंस अट्रैक्ट करते हैं, और आप अपनी क्रिएटिविटी से एक सादे से कपड़े को भी एक खूबसूरत ड्रेस में तब्दील करने का मादा रखते हैं। तो फैशन इंडस्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है, और आपको करियर बनाने के लिए कहीं और किसी और फील्ड के बारे में सोचने की ज़रूरत

नहीं है, बल्कि आप अपना करियर फैशन डिजाइनिंग करते हुए आगे लेकर जा सकते हैं। और आज करियर पाथवेज में हम इसी फैशन इंडस्ट्री की, फैशन डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी, आपके साथ मैं प्रियंका मामगन। हमारे साथ प्रोग्राम अल्फा जेन और आज का सेगमेंट करियर पाथवेज, और आज हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की, करियर इन फैशन डिजाइनिंग। इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इसी के साथ साथ आपको अगर फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना है और आगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं, तो आपको ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद काउंसलिंग होगी, इंटरव्यू होगा, और फिर आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस फील्ड में जाने का ये रहता है कि आप जहां अपना करियर बनाते हैं इस फील्ड में, साथ ही साथ खूबसूरत, अट्रैक्टिव और फैशनेबल भी आप होते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो डबल फायदा है इस फील्ड में अपना करियर बनाने से, जी हाँ। और इसी के साथ अगर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन है, वो आप दे सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम है, इसको आप दे सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो जैसे ही आपने मन बना लिया है कि आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो बस आप कब वो जो डेट है निकल रही है इन एंट्रेंस एग्जाम्स की, इसको आप अपने जहन में रखिए और फिर तैयारी कीजिए इस क्षेत्र में उतरने की।

रंग नहीं जनाब, कई सारे रंग, कई सारे डिज़ाइन, कई सारे पैटर्न्स, आपकी इनोवेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फैशन सेंस। जी हाँ, आपको

बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, 12वीं में भी अगर आपके पास आर्ट है, कॉमर्स है या फिर साइंस है, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम देकर आप इस फील्ड से जुड़ सकते हैं और कई सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्री कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, यहाँ तक कि आप इस क्षेत्र में PhD भी कर सकते हैं। अगर कोर्सेज की बात की जाए तो कई सारे कोर्सेज हैं जो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से आप चुन सकते हैं। BA इन डिज़ाइन इन फैशन, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, BSc इन फैशन डिज़ाइन, BA इन फैशन डिज़ाइन, BSc इन फैशन एंड अपरेल डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, जी हाँ, कई सारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अगर हम बैचलर कोर्सेज की बात करें तो वो होते हैं हमारे 4 साल के, और इसी के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो वो 1 साल से लेकर 2 साल, 2.5 साल तक के रहते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, और इसी के साथ एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो ये 2 साल का कोर्स रहता है। इसी के साथ अगर कंप्यूटर एडेड डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग की बात की जाए तो ये कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स रहता है। ये 4 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है, या कुछ इंस्टीट्यूट इसे 1.5 साल में भी कंप्लीट करवाते हैं। डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस किस तरीके का सिलेबस वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ आप MSc इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, MA इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट 2 साल का कोर्स रहेगा। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम PG डिप्लोमास की बात की जाए तो आप PG डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, और ये रहेगा आपका 1 साल से लेकर 18 महीने तक का। इसी के साथ आप डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड मर्केंडाइजिंग कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर एडवांस सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कर सकते हैं। अथाह संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। डिपेंड करता है आप कितनी क्वालिफिकेशन अपने साथ ऐड करना चाहते हैं और किस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है।

0: और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

पाथवेज फैशन डिज़ाइनिंग पर बात कर रहे हैं हम आज। और फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको हर वक्त आगे बढ़ने का जुनून देता है। कई सारे हमने कोर्सेज की बात की, तो जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो 3 से 4 साल के रहते हैं, जो मास्टर कोर्सेज हैं वो 2 साल के रहते हैं। आप इस क्षेत्र में PhD भी कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में शोध भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर ये सोचा जाए कि इन कोर्सेज को करने के बाद, यानी फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए योग्यता हासिल करने के बाद हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए हैं। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, जी हाँ जनाब, उसी के साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड खोल सकते हैं, आप विदेशी कंपनियों में जाकर वहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप मर्केंटाइजर भी बन सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, आपका जो फेवर है, जो आपका जो क्लेवर है और जो आपकी क्रिएटिविटी है, इनोवेटिवनेस है आपके अंदर, वो आपको किस और अट्रैक्ट कर रही है, ये आप पे डिपेंड करता है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, जानेंगे वापस आने के बाद।

जी हाँ जनाब, आप भी बावले हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि भारत में कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कई सारे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, जिन्हें कर आप फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट न्यू दिल्ली में है। इसकी लगभग 19 ब्रांचेस हैं जो अलग अलग भारत के शहरों में हैं, जहाँ पर आप फैशन डिजाइनिंग के कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली तो हमने बात की ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोलकाता, इसी के साथ मुंबई में, बेंगलुरु में, रायबरेली, भोपाल, कन्नूर, शिलांग, पटना, कांगड़ा, भुवनेश्वरा, जोधपुर, श्रीनगर, पंचकुला और दमन में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के जी हाँ ब्रांचेस हैं। इसी के साथ आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन में भी अपने कोर्सेज कर सकते हैं कई सारे। और एक और इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ से भी आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। ITI से भी आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करते हैं तो आप को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ 10th होती है। और इसी के साथ इग्नू भी कई सारे फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज शुरू कर चुका है, तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर भी जी हाँ कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र से रिलेटेड। इसी के साथ आज का अल्फाजन प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है, समाप्त होता है। अगला प्रोग्राम रहेगा सिटी लाइट्स, जिसमें आपके साथ रहेंगी गीतांजलि सोनी। मैं आपसे लेती हूँ विदा, बाय, टेक केयर।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों के लिए ले जा रहे 2002 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के

दावे का समर्थन किया। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। कार्यक्रम के 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी आग भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का मुकाबला जारी। फीफा विश्व कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की बारिश का अनुमान है। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: जी नमस्कार, गीतांजलि सोनी हाजिर है आप सबके सामने बहुत सारी बातें करने के लिए। कार्यक्रम वही है आपका अपना सिटी लाइट्स। जी बिल्कुल, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ, और जैसा आप सबको पसंद है, और मैं चाहती हूँ सब आ जाएं, सबको कह दिया जाए नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल है हम सबके, यही तो जानने के लिए मिलते हैं ना। और ख़ासकर जब सिटी लाइट्स में मिलते हैं ना, तो बस मज़ा चार गुना हो जाता है। क्या सिटी में चल रहा है, क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, क्या हम चाहते हैं हो, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, मौसम का हाल सबसे पहले बताना है, लेकिन आप सबका इकट्ठे शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस जिस को आप बोलना चाहते हैं कि कनेक्ट कर लीजिए, आप जुड़ चुके हैं बुला लीजिए, फिर हम आपस में मिलकर बहुत बहुत सारी बातें करने वाली हैं। सुनते रहिए सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ।
1: आज नच नच धरती हिलाउनी।

जी एब्सोल्युटली, आई थिंक डबल डबल रिमाइंडर की तो जरूरत नहीं होती, हम सब मिल जाते हैं, आवाज आ जाती है तो पता है कि कौन कहाँ कैसे बैठा है। आप बिल्कुल एकदम एप्ट जगह पर हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स आकाशवाणी पर, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ। एंड व्हाट बेटर कैन बी देन रेनबो। तो भाई ऐसा है, अब सब यही बोलते हैं बारिश आ जाए, भैया तो बारिश बहुत हो रही है, बारिश नहीं आए तो हुमस बहुत है, गर्मी बहुत है। तो भाई आज का जो मौसम है वो वाकई आते टाइम तो गर्मी लग रही थी, फिलहाल के लिए 37 डिग्रीज टेम्परेचर है। कहा जा रहा था कि पार्टली सनी रहेगा, पार्टली कहीं कहीं फुहारें आ सकती हैं, अगर आपके आसपास कहीं आई हैं बताना। गुड़गांव में तो मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल भी बारिश आने की संभावना है, अगर आ जाए तो कुछ कहते भी नहीं, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसे आसार नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब ज़्यादा गर्मी लगे तो बहुत ज़्यादा एसी के आगे ना बैठें, क्योंकि अगर आपको अंदर बाहर आना जाना पड़ता है तो फिर तबीयत नासाज हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि कुछ आप अपना, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा सह सकते हैं गर्मी को, तो थोड़ा सहना भी चाहिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये एक थेरेपी होती है। आपको पता है, आप अगर स्टीम और सोना गए हैं तो दैट इज़ पार्ट ऑफ अ थेरेपी, अगर नहीं गए हैं तो मैं कभी उस बारे में भी आपको बताऊँगी। तो बस मौसम का हाल अभी ऐसा है कि यहाँ पे दिल्ली में तो खासकर अच्छी खासी धूप निकली हुई है, देखने से ऐसा लगता है कि अरे हाँ कभी भी बारिश हो जाएगी, हो सकता है बादल थोड़े से आ जाए, थोड़ा सा ऐसा माहौल हो जाए जब फुहारे आने लगे, हल्की हल्की रेन, बट अभी हो नहीं रही, अचानक हो जाएगी तो फिर बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल बहुत सारी और बातें आपसे करनी है हमने, अगर आप सुनना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर का तो कोई ऑप्शन नहीं है, सुनना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना जी, हम सब एक दूसरे की इतनी सारी बातें शेयर करते हैं। आज क्या तारीख है भैया ये बताना ज़रूरी है, कौन सा डे है ये बताना ज़रूरी है। हंसो मत, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ हमारी जो मेमोरी है ना वो तो इतनी खूबसूरत हुई पड़ी आजकल कि याद नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई रिमाइंडर चाहिए होता है कि क्या डेट है। तो भी आज 14 तारीख है, 14th of July 2026 भी बतानी ज़रूरी है भाई। अगर आपको याद होगा हर प्रोग्राम में मैं बताती हूँ कि लोग कई बार अभी भी मैसेज भेजते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन आता है उस पर 2025 कई बार लिखा होता है, सो अभी तक वो 25 की छाप गई नहीं है, बिकॉज वी आर टू बिजी थिंकिंग, चीज़ों पे ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए। और आज दिन क्या

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी को ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। प्रोग्राम आप जानते ही हैं, सिटी लाइट्स। जी और क्या क्या हो रहा है सिटी में ये बताइए। आज बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि आज कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आज गप्पे मारो। गप्पे तो मारते हैं आपस में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मिलें, गप्पे ना मारें, बातें ना हों। दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन माई फ्रेंड। बट अभी के लिए कुछ चीज़ें हैं ना, देखो वो शेयर करना बताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं चाहती ना पिछड़े तरीके से सोचें या फिर कुछ चीज़ें जिसमें आपको बहुत लेट पता चले तो कैसे काम चलेगा ना। अच्छा एक बार बताओ, मेट्रो से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। मैं तो बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, आप सबको पता ही है मेट्रो की, बिकॉज़ वो भी एक टाइम था कि मुझे लगता था अगर अपनी गाड़ी से मैं नहीं आऊँगी तो मेरे काम होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैं इतनी सारी सीडीज़ कैरी, उस टाइम सीडीज़ का टाइम बहुत होता था, तो बहुत सारे ऐसे हम चीज़ें थे टेक्निकल जो कैरी करते थे, बहुत सारी बुक्स कैरी करते थे। लेकिन जब गुड़गांव से जाम लगने शुरू हुए ढाई ढाई तीन तीन घंटे के, बिकॉज़ हम लोग के लाइव शो होते हैं ना, वी हैव टू बी ऑन टाइम, तब लगा कि नहीं भाई अपना दिल पक्का करके मेट्रो में जाना शुरू करो। और फिर समझ आया कि मेट्रो की वैल्यू क्या है। हाँ कई बार भीड़ हो सकती है, बैठने की सीट नहीं मिलती, बहुत चीज़ें हैं। अगर कोई ख़ास टेक्निकल डिफ़िकल्टी ना हो, एटलीस्ट एक ये तो रहता है ना दिल में कि टाइम से पहुँच जाएँगे, तो भाई ये बहुत बड़ी मेट्रो की सुविधा है हम सब के लिए। एंड वी आर आई एम वेरी ग्रेटफुल, और हम सबको होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज़ करते हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मेट्रो, चाहे बस हो चाहे फिर ट्रेन हो, प्लीज़ जो एक बेसिक हमें सिविक एटिकेट्स हैं वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जो कि बार बार कहा जाता है कि मेट्रो में ना खाएं ना पिएं। और आप कोई भी ऐसी चीज़, आजकल रील्स का ज़माना है, लोग मेट्रो में डांस कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब बहुत बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ मेट्रो में आपको देखने को मिल जाएंगी, बिकॉज़ आजकल कंटेंट का ज़माना है। तो भाई बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सो ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बेसिकली डिसहार्मनी भी क्रिएट हो जाती है। और मैंने कितनी बार देखा है पता है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और सीट में बैठ क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनसे पहले जो उठ के गए हैं उन्होंने कुछ खाया होगा और वो सीट के ऊपर गिर दिया, गंदी सीट पड़ी हुई है सीट के नीचे, मतलब वहीं शेक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, गिर गई है, वहाँ लोगों को खड़े होने में मुश्किल हो रही है। तो ये कितनी, और प्लीज़ ये जो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कम से कम ऐसी चीज़ तो बिल्कुल ना खाएं जो कि स्मेल करती है। भेलपूरी लेके आप घुस जाते हैं, इतनी प्यास की स्मेल थ्रू आउट आपको, आई मीन स्मेल इतनी गंदी होती है कि कई बार लोग कहते हैं कि उनको उनका दिल ख़राब हो रहा है, तो तबीयत ख़राब हो जाती है लोगों की। सो बेसिकली ना ये चीज़ें तो आपको ज़रूर ज़रूर फैक्टर करनी चाहिए जब आप ट्रैवल करते हो। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी रीच से बाहर हैं, आप उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, अब उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ये है कि मेट्रो हैज़ स्टार्टेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। जी बिल्कुल, वो कल से स्टार्ट हो गया और वो 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक चलेगा, एक वन लॉन्ग मंथ। और आपके पास पूरी पूरी लिबर्टी है, आपके जो सजेशंस हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आप उनकी जो वेबसाइट है, मैं आपको अभी बहुत ही धीरे धीरे वो बताऊंगी वेबसाइट, ताकि आप उसको लिख लें अगर आपको नहीं पता, तो आप अपना पूरा सजेशन उस वेबसाइट पर लिख के दे सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाद में हम ये कहते हैं ना, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो फिर जब आपको मौका मिला है उस पर काम हो रहा है तो प्लीज़ अपनी पूरी साझेदारी दें उसमें, ताकि यू कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस, आपकी ऑब्जर्वेशन कई बार काम आ सकती हैं। वेबसाइट है www.delhimetrorail.com, एक बार फिर बता देती हूँ, www.delhimetrorail.com ये वेबसाइट है। तो ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मंथ ओवरऑल चलने वाला है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। It's better to voice than keep on cribbing about it.

क्या बात है दिलजीत भाजी, तुसी तां शाय होयो इदां वी उदां वी। लेकिन आपको पता है रिसेंटली एक लाइव किया था दिलजीत ने, और उसने बोला कि बहुत शिद्दत से वो सोच रहे थे एक दो महीने पहले कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बेसिकली लाइफ में बचा क्या है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एंगल में बात कर रहे थे वो, मतलब ही वॉज रेडी टू लीव, ही सेड मुझे कभी भी प्रभु बुला लेंगे। सो ऐसी बातें सुन के लोग घबरा गए कि ऐसी बातें दिलजीत कैसे कर रहे हैं, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिसके पास इतना पैसा है, इतना फेम है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए ये इतना प्राइम एग्जाम्पल है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कोई प्रॉब्लम है, इट्स अबाउट दैट द रियलाइजेशन कि पैसा और पावर ही सब कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द पीस। सो जब इतने बड़े आइकन लेवल के सिंगर्स ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को समझ आता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग वी हैव टू वर्क ऑन, वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स पीस, वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स कि हमारी लाइफ में हमें कैसे सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो किस किस के साथ ऐसे होता है, खासकर मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ जो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुके हैं, कई लोग वेट कर रहे हैं लिस्ट निकलने का, कि आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ चूज़ कर ली, उसके बाद आप रिग्रेट करते हैं, नहीं ये तो हमें लेना ही नहीं चाहिए था, ये हमने अच्छी चीज़ नहीं ली है, मेरी फ्रेंड ने जो ऑप्ट किया वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये थ्रू आउट चलती है जब तक आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हो जाता। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद आप कंपैरेटिव एनालिसिस में लगे ही रहते हैं कि अरे नहीं नहीं दिस वॉज नॉट इट, वी वॉन्टेड समथिंग बेटर, ये हमने क्या ले लिया। खैर कोई बात नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मजबूरी में अपने मार्क्स को ध्यान में रखते हुए, अपने ग्रेड्स को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे ऑप्ट करने पड़ते हैं कोर्सेज जो शायद आपके फर्स्ट चॉइस नहीं थे। अब क्या होता है ना कि पहली जो सूची निकलती है उसमें अगर आपको कॉलेज या फिर कोई कोर्स पसंद नहीं आता तो ये ऑप्शन होती है कि आप अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। मोस्टली बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि दे स्टिल कैन ऑप्ट फॉर अपग्रेड, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और ये ज़रूर है कि अगर आपने पहले कोई सीट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया बट आई डोंट वॉन्ट इट, उसके लिए थोड़ा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जिस कॉलेज में आप ट्राई कर रहे हैं, जहाँ ट्राई कर रहे हैं, वो आपको वहाँ इंडिविजुअल कॉलेज से जाकर पता करना

पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर साल जो है वो जितने भी छात्रों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और कई बार ऐसा होता है पहली जो सूची निकलती है उसमें वो सीट एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जो नेक्स्ट निकलेगी उसमें मेरी सीट आ जाएंगी। तो अगर आप ये रिस्क फैक्टर लेना चाहते हैं और वो कॉन्फिडेंस रखते हैं तो कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है ना, क्लैरिटी इज़ द की। और जिन लोगों ने काफ़ी सारे कोर्सेज एक्सेप्ट कर लिए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि 15 जुलाई लास्ट फी सबमिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। और जिन लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था ना कि आज की डेट क्या है, अगर आपको लगता है कि 14 तारीख आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेके आती है जो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी था, तो प्लीज़ उसको रिव्यू कर लेना, चाहे वो फीस सबमिटिंग है, चाहे वो बिल पे करने हैं। बार बार रिपीट करती हूँ, हर शो में बताती हूँ, मोबाइल का बिल पे करना है, कुछ भी, यानी कि बिल पेमेंट कुछ अपने सोसाइटी के बच्चे में पे कर देना भाई, ज़रूरी होती है। और ये जो गाना भी मैं प्ले करने वाली हूँ ना, क्योंकि आजकल सारे गाने पुराने वाले रीमेक हो के आ रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये क्रिएटिविटी बची है हमारी बॉलीवुड में। अब भाई यही बात होती है, क्रिएटिविटी बची या नहीं बची, ये बात की बातें हैं। लेकिन हाँ, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं कि वो पुराने गाने हमें पसंद थे, वो कब आएंगे, तो ये सब देखते हुए जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहते हैं वो पुराने गानों को ले आओ, प्ले करो, लोगों को अच्छा लगेगा, वो इन्जॉय करेंगे। अगर आपको ये ऐसे गाने कुछ पसंद हैं तो मैं आज की अपनी प्लेलिस्ट में डाल के लाई हूँ। ये गाना बहुत चला था उदित नारायण का, एंड दिस हैज कम एज अ रिफर्बिश, सुनो ना।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी बिल्कुल, देखिए वाणी का ना बहुत बड़ा रोल है। खाली ये बात नहीं है कि हम लोग बात कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसी हम वाणी बोलते हैं ना, हम कई बार मजाक में एक बहुत अच्छा दोहा है जिसको लोग ख़राब करके भी बोलते हैं ना। एक तो था ना ऐसी वाणी बोलिए, ये वाला जो दोहा था इसको लोगों ने उल्टा करके बोला ना, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो इसलिए है कि लोग ऐसे बात करते हैं आपस में कि उससे अक्सर लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। आप अगर कल का देखें, परसों की देखें, आपको अखबार भरी हुई मिल जाएगी कि क्या हुआ इतनी सी बात पर कि एक बच्ची स्कूटी चला रही है, उसकी जो स्कूटी की लाइट है आंख में किसी के चली गई, उनको लगा कि हाँ भाई मेरी आंख पे एकदम लाइट, कोई जानबूझ के तो मारी नहीं होगी ऑब्वियसली, तो फिर वहाँ पर रोड रेज हो गई, मार पिटाई हो गई। ऐसी कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप मतलब बहुत ही सिंपल बात है कि जैसे अगर किसी ने सामान ऊपर रखा है, उसका बड़ा बैग है, वो नीचे उतार रहा है, दूसरा इंसान ये कहता है कि आपने बीच में क्यों बैग अड़ा दिया, वो कहता है कि मैं सर पे रखूँगा, ऐसे आपने बात की, लड़ाई हो गई। तो बेसिकली जो बोलना है ना, वाणी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। तो इसीलिए कोशिश यही किया कीजिए कि थोड़ा सा सोच के रिप्लाई करें, या फिर बोलते टाइम आधा सेकंड ये सोच लें कि अगर कोई मुझे वैसा जवाब देगा तो कैसा लगेगा। बिकॉज दिस इज सिटी लाइट्स माई फ्रेंड, वी हैव टू बी वेरी हारमोनियस इन द सिटी, चाहे फिर वो दिल्ली की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, बंगाल की बात हो, ऑल ओवर द नेशन। और बेस्ट बात यह है, आप खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, हमारे थैंक्स टू आर ऐप आप हमें हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कहीं पर भी सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के द्वारा। बिकॉज देखिए जितनी भी ये जो एडवांसमेंट है ना, ये हमारी रीच के लिए ही नहीं है, हमारी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को फैक्टर किया कीजिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए कि व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग और यू आर ट्रैवलिंग, कम से कम इतना ज़रूर करें, और कुछ नहीं कर सकते तो बोलते टाइम सोचें। किसी की मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, मदद के नाम पे भी आपको कुछ बताना है। लेकिन पहले गाना सुनवा देती हूँ, सोनू निगम का मुझे बहुत पसंद है, टाइम बाद प्ले करते हैं, बट इन्जॉय करोगे आप।

जी, बिल्कुल, लठ तो मारना ही पड़ता है कई बार गोरियों को खास कर ना होली पे आप देखते होंगे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्रेडिशन है ना, मथुरा में तो आप जाते हैं देखते हैं लठमार होली होती है। बट अभी के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत सारी कंसर्न्स भी आई हैं, जैसे मैंने बोला ना एक सिविक सेंस होनी चाहिए, सिविक सेंस को लेकर तो कितने मीम्स भी बने हैं अभी, लेकिन एज आई जस्ट सेड कि कैसे आपको अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको पता है एक चीज़ जो बहुत ही प्राइम है, इस गाने से पहले मैंने बोली थी ना कि मदद, तो भाई मदद भी ना बहुत दोधारी तलवार हो गई है आज की डेट में। क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, वो भी आपको बताती हूँ। अब हम मदद की बात करते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए जब बाहर जाते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिड इंसिडेंट हो गए हैं कि लोगों को मदद एक्सेप्ट करने में भी घबराहट होती है। अब कैसे वो एक एक एक थिन लाइन ड्रॉ की जाए कि अगर आप किसी की वाकई मदद करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कोई परेशानी में है या आपको लगता है कि इसको मदद की ज़रूरत है, बिना उसको डराए बिना उसको इंटिमिडेट किए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो चैरिटी है ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी हो तभी दिखे, आप छोटी चैरिटी भी करेंगे ना तब भी वो बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप मेट्रो में, ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन में, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो क्या ही मदद करेंगे, अगर आप एयरपोर्ट में किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो 100% आपके अगेंस्ट जाएगी, आप किसी का सामान नहीं होल्ड कर सकते, किसी को नहीं कह सकते नहीं नहीं मुझे पकड़ा दीजिए आपके पास ज़्यादा सामान है मैं होल्ड कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, आप वॉशरूम चले जाइए अपना बैग मेरे पास छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप, दिस कैन नॉट बी डन। कुछ भी हो सकता है, किसी के बैग में कोई भी सामान हो सकता है, यू शुड नेवर डू दैट, है ना, क्योंकि इतनी चेकिंग है, कल को आपके पास वो सामान पकड़ा गया तो हो गया काम। दूसरी चीज़ है किसी को सीट ऑफर नहीं कर सकते, हर एक की अपनी सीट्स होती हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, अगर आप देखते हैं कोई बुज़ुर्ग महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी कोई हाथ में फ्रैक्चर है या

किसी का किसी की टांग में प्रॉब्लम है और आप बैठे हैं, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको ऑफ़र कर दीजिए, सबसे सेफेस्ट तरीका है हेल्प करने का। अब आप कहें कि नहीं जी, हम तो रेलवे स्टेशन में किसी को हम बोल रहे हैं चाय ले लीजिए, खाना ले लीजिए, पानी ले लीजिए, इतने सारे इंसिडेंट हो गए हैं कि खाने में कुछ डाल के खिला दिया, चाय में कुछ मिला के पिला दिया, लोग डरते हैं, तो इस तरीके की हेल्प बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई बैठ गई है फैमिली, या फिर कोई लड़की ट्रैवल कर रही है, कोई लड़का ट्रैवल कर रहा है, आप ओवरटली फ्रेंडली ना हो, डू नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस कि आपकी शादी हो गई, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, डू नॉट। एक तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की इन्वेजन है, और पता नहीं कोई कैसे यूज़ करे, तो अगर आप इतने भोले हैं या भोली हैं तो ना बताएं किसी को, और अगर आपको हैबिट है, इनक्विजिटिव है, आप पूछते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें। अपने साथ कोई मैगज़ीन कैरी कर लें, कोई बुक कैरी कर लें, या फिर आजकल तो मोबाइल पे कितने सारे गाने हैं वही सुन लें अगर आप बोर होते हैं। ओवर्टली फ्रेंडली किसी से ना हो, ये आपके लिए नेगेटिव जा सकता है, बिकॉज़ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग पूछने लगे, पता करने लगे, तो फ़ोन करके पुलिस वाले को कोई बुला लिया गया कि ये मुझे बार बार पूछ रहे हैं, मेरे वेयर अबाउट जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस तरीके से बताना चाह रही हूँ, कि जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, नेवर आस्क फॉर अ डिटेल इन्फॉर्मेशन, और ना ही कभी दें। ओके।

मीका पाजी का भी ये पुराना गाना सुपर डुपर हिट हो गया था दोबारा आके। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप अलग डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करो ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो हिट कैटेगरी में आ जाती हैं। और देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे यंगस्टर्स करना चाहते हैं, स्पेशली एनिमेशन की बात कर लें, गेमिंग की बात कर लें। और देखिए पहले कैसे हम लोग, इनफैक्ट जितने हमारे घर के बड़े होते थे, पेरेंट्स क्या बोलते थे, क्या बच्चे गेमिंग करते रहते हैं, क्या ही करेंगे ये। हालांकि मैं अभी भी मानती हूँ कि जो पूरा पूरा टाइम गेमिंग में लगे रहते हैं, खेलते हैं, उनके लिए बहुत ही डेट्रमेंटल सिचुएशन है, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है चीज़ों को लेकर, वो बाहर के लोगों से मिलते नहीं हैं, उनको पता नहीं चलता, तो एक सोशल एंग्जाइटी उनमें डेवलप हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेमिंग में सफलता पाई है, तो फिर लोगों को लगता है कि अगर ये कर सकते हैं खेल के तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए हर चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़रूरत क्या है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में कि अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे और कहाँ कितना टाइम आपको लगाना है और क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, पूरी डिटेलिंग चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आपको जानकर खुशी होगी कि अगर आप एनिमेशन, गेमिंग, डिज़ाइनिंग या फिर विजुअल इफ़ेक्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में एक अवसर देने का मौका दिया है। उन ऐसा कदम उठाया है, आप सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। जो DSEU है ना, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इसके साथ मिलकर उन्होंने 5 साल का एक ऐसा करार किया है जिसमें जो बच्चे हैं उनको इसकी एडुकेशन दी जाएगी, इसकी लर्निंग दी जाएगी, ताकि बच्चे अगर सोचते हैं कि वो इसमें अपना कुछ करियर बना सकते हैं या फिर इसमें कुछ एडवांस क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तो उनको एक अच्छा स्टार्ट मिले और उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री भी इसके बारे में प्राप्त होगी। तो होता है ना, जब आप स्किल सेट से आगे बढ़ते हैं देन यू विल लर्न समथिंग मोर प्रोफिशिएंट, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी प्रैक्टिकल, तो अगर आपको लगता है कि आप उनमें से हैं जो इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो एक और एडिशनल सर्टिफाइड आपको ज़रिया मिल गया है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कितना आपको टाइम लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितने एफर्ट देने हैं। ऐसे नहीं क्लूलेसली सारा टाइम बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, और अगर पेरेंट्स डांट रहे हैं या फिर उनको कंसर्न हो रहा है कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या आगे करोगे, तो आप बोले आपको पता नहीं है जी, सब ऐसे करते हैं और ऐसी करियर बन रहा है, इसी से करियर बन रहा है। तो आपको भी क्लैरिटी आएगी और आपके घर वालों को भी क्लैरिटी आएगी आप क्या कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देने के लिए हम यही हैं अभी आपके साथ स्टूडियो में। जी वही हूँ, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन रेनबो, दिल से दिल तक पर। और जानते हैं ना रेनबो पर और क्या क्या खबरें आपको मिल रही हैं, स्पेशल अभी थोड़ी देर में ना मैं बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी खबर देने वाली हूँ। उसका कारण क्या है ना, उसका कारण ये है कि हमारे जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो अपने आप को लेकर कई चीज़ों में बहुत सीरियस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके सुविधाओं को लेकर थोड़े कंसर्न होते हैं, तो वो मैं उनको बताऊंगी। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा सिटी लाइट्स।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: देखिए कितनी सारी चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी बता दी मैंने आपको, और अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं सिटी लाइट्स को टाटा बाय बाय कहने के लिए। लेकिन सिटी को टाटा बाय बाय थोड़ी कहना है, सिटी लाइट्स में जो बातें हुई हैं उन्हीं को टाटा बाय बाय कहना है, और उसका जो इम्पैक्ट है आपके पास महीनों हफ्तों लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। और जो मैं हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए एक स्पेशल OPD जिसको जेरियोट्रिक क्लिनिक कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत की गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि जो बुज़ुर्ग है ना उनके इलाज के लिए एक अलग OPD होगी, तो आराम से स्पेशल प्रेफरेंस में उनको प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिल सकेगा। और कितने ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं ना बुज़ुर्ग जो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो उनकी एडवांस में एक्सरे की जाँच हो जाएगी, और इंजेक्शन रूम भी अलग बनाया गया, उनका फिजियोथेरेपी की सुविधा भी अलग दी गई है। तो जितने भी 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं ना वो इस जेरियाट्रिक क्लिनिक में अपना उपचार करा सकते हैं। दिस इज़ स्पेशली गिवन इन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल OPD में। तो अगर आपको लगता है इससे आप किसी को फ़ायदा करवा सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है किसी का, तो मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, और क्या है, पानी की बड़ी दिक्कत बहुत लोग फेस करते हैं गर्मियों में, खासकर समझ नहीं आता क्या करें। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई पानी की दिक्कत है आपकी सोसाइटी में आपके आसपास, तो आपको क्या करना है, जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि जो दिल्ली का जल बोर्ड है वहाँ पे उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब मैंने पहले भी नंबर दिया, और मैं अमूमन कोशिश करती हूँ कि कई बार होता है ना लोग

अरे आप यहाँ पर कॉल करके टैंकर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मोबाइल आपके पास है, उनका ऐप तो आपको पता ही है, तो फिर आप वो ऐप के ज़रिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना कि आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है जब परेशानी होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको परेशानी से बचाया जाए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो दे दी जाए, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। और दूसरी चीज़, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट, जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है ना, SSSB, उन्होंने क्या किया है, प्राइमरी स्कूल के लिए एक स्पेशल एजुकेटर के लिए और साइंस के एजुकेशन के लिए उन्होंने 1979, इमेजिन, यानी कि 1979 उनको वैकेंसीज चाहिए हैं फॉर TGT, प्राइमरी एंड स्पेशल एजुकेटर्स। तो अगर आपको लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आप आवेदन दे सकते हैं। DSSB, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, DSSSB.delhi.gov.in पर, या फिर DSSSB यानी कि D के बाद 3 बार S और B है, /vacancies पर जाकर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर फिल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा आपके पास होनी चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम वैकेंसीज और आप इसमें खड़े उतरते हैं। आपकी एडुकेशन सपोर्ट करती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें देखिए सपोर्ट करती हैं, और वो ये है कि टाइम हमें सपोर्ट करता है जब हम स्टूडियो में आते हैं 5 बजे, फिर 6 बजने वाले होते हैं तो फिर हमें लगता है कि अभी हमें अपना वो जो टाइम है वो विड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज अम्बरीन आ गई हैं स्टूडियो में, वो आपको मैसेज मसाला मिक्स की जर्नी पे लेके जाने वाली हैं। हमेशा कहती हूँ जो मैसेजेस की कमी आपको यहाँ फील होती है वो आपको हमारे जो को एंकर आते हैं ना नेक्स्ट मैसेज मसाला मिक्स के शो में वो पूरी कर देते हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज मस्ती के साथ मज़ा और इन्फॉर्मेशन दोनों चाहिए। तो ये भी, और जल्दी में ये भी आपको बता देती हूँ कि पॉल्यूशन को लेकर इतनी चर्चा होती है तो एक नई डस्ट पोर्टल इंस्टॉल किए जाने वाले हैं उन जगहों पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये मॉनिटर करने के लिए कि वो उनकी जो डस्ट उड़ रही है वो पॉल्यूशन कितना क्रिएट कर रही है, उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही नहीं चलती हैं। दैट्स वाई वी आर हेयर इन द स्टूडियो टू टेल यू, बट अभी के लिए आपको अपनी गजब की गीतांजलि सोनी को देनी होगी इजाज़त, वो इसलिए क्योंकि जाएंगे तो फिर वापस आएंगे और एक नए एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ आपके मैसेजेस पढ़ने। अम्बरीन ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद हैं, तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ अगर आप इस टाइम घर के बाहर हैं, रोड पे हैं, तो प्लीज़ ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, अपने आसपास वालों की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा मैं कहती हूँ अगर आपको लगता है देर इज़ समथिंग लैकिंग, सो उसकी जजमेंट आप अपने लिए करें, लोगों के लिए ना करें। खुश रहिए, खुश रखें एक दूसरे को, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है हम अपनी खुशियों के लिए ना लोगों को लेकर थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन के साथ और बातों के साथ फिर से आपको मिलेगी आपकी गजब की गीतांजलि। बस इतना कहना चाहती हूँ, जाने दो मुझे जाना है, और भी बहुत सारे वादे हैं जो निभाने हैं। जल्दी मुलाकात होगी इस वादे के साथ कि आप भी अच्छे रहें, हम भी अच्छे रहें, और अम्बरीन आपको बहुत सारी खुशियाँ और इन्फॉर्मेशन देने वाली है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।

नमस्कार, पूरे 6 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडम मरुमध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए और बढ़ाया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम

सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ। कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 149 अंक लुढ़क कर 24,052 पर आ गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी है। फीफा विश्व कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई तक हल्की बारिश का अनुमान है। तो ये थे रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो। जी हाँ, मैं कौन आपकी अपनी एम्ब्रीन कौन सा प्रोग्राम लेकर, आपको पता है ना, आपको पता है ना 6 बजे का क्या टाइम होता है। अपनी दिल की बातें शेयर करनी होती है ना, खूब सारे मैसेज भेजिए, बताइए अपने इस टाइम क्या क्या क्या आज दिन भर में किया है। अभी तो वैसे शाम हुई है, सबके घर जाने का भी टाइम हो रहा है, सब अपने अपने ऑफिस से, कुछ अपने स्कूल से, कुछ अपने कॉलेज से नून में निकल गए हैं, कुछ अब निकल रहे होंगे, कुछ घर पहुंच चुके होंगे, कुछ जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि बस कब हम अपनी जो दिल की बात है ना वो बस फ़ौरन आकाशवाणी FM रेनबो तक पहुँचा दें। तो बस 6:03 और पूरे 30 सेकेंड हो गए हैं, पूरा अभी 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा कह सकते हैं ना, कहने को तो कह सकते हैं 1 घंटा है। अभी खूब सारी बातें करेंगे, अपने जो आज मैं पूछने वाली हूँ वो उसका भी ना जवाब बहुत बहुत बहुत बिल्कुल सच्चे दिल से देना है। पता है ना, वैसे तो आप हमेशा सच्चे दिल से देते हैं यही तो बात अच्छी लगती है कि जो हम बात करते हैं ना उस बात पर जब हम लोग बिल्कुल ऑनेस्टली से जो ऑनेस्ट होके जो बात करते हैं, जवाब बिल्कुल ऑनेस्टली आता है तो वो उसमें मज़ा आता है कि हाँ नहीं सही है, मेरा ये जो दोस्त है ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो मैं क्या पूछने वाली हूँ, थोड़ा इस गाने के बाद सुनते रहें मैसेज मसाला मिक्स। पता है ना, पहले अपने फटाफट खैरियत का पैगाम भेजिए 9868107070 पर, तब जो है आगे बढ़ेंगे, सुकून मिल जाएगा ना दिल को। पता है ना, पहले दिल को सुकून देना और दिमाग को भी थोड़ी सी ठंडक देनी है, शांति रखनी है तो सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

6:09 और पूरे 24 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, एमरीन आपके साथ है। जब कोई शिकायत करता है ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूछे क्यों? क्योंकि शिकायत भी उन्हीं से होती है जिनसे मोहब्बत होती है ना। तो शिकायत करना भी जायज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, अनिल शर्मा का मैसेज आया है। हाय हाय, क्या शिकायत की है, शिकायत के दिल में उतर गई है अनिल शर्मा जी। शिकायत जो है ना, आपकी दिल में उतर गई, क्योंकि उस शिकायत, वो मुझे शिकायत नहीं लग रही है, उसमें जो वो मुझे मोहब्बत दिख रही है ना, वो मोहब्बत उस पे जो है ना, दिल फिदा हो गया है। मतलब अपनों से ही तो शिकायत होती है ना। अब ये जो बोला है कि पहले पिछली बार वाले में जो है मैसेज शामिल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके मैसेज शामिल करूँ जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट लेती रहूँ जल्दी से। लेकिन क्या करें, टाइम का कई बार इतना ज़्यादा वो होने लगता है कि टाइम निकल रहा है, अगली शो का टाइम हो रहा होता है, तो कोशिश होती है, सबकी शिकायतें, तो मुझे लगता है कि ना शिकायत चलिए करिए आपने, मुझे अच्छा लगा कि उससे मुझे पता चल रहा है कि कितनी मोहब्बत है। तो बस इस मोहब्बत को हमेशा ना हमेशा कायम रखिएगा। और अब मैं आपके मैसेज का इंतज़ार कर रही हूँ अनिल, ठीक है, कि आप मुझे बताएंगे कि हाँ नहीं, वो तो वाकई में प्यार भी शिकायत थी। और भी मैसेज आए, भुवनेश क्या बात है, इन्होंने भी शिकायत कर दिया है, आज क्या बात हो गई है। बस देखिए, शिकायत

जगह पर, लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा हो जाते हैं ना हम, तब जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तकलीफ होने लगती है, दिल में दर्द होने लगता है, दिल नहीं लगता, क्या करें। गुस्से में तो कहीं पर भी बस ये होता है कि किसी तरीके से, किसी तरीके से बस पैचअप हो जाए, किसी तरीके से बातें हो जाए, बस सारी चीज़ ख़त्म कर देंगे। तो भुवनेश वही वाली चीज़ है, गुस्सा तो कौन ही होता है, लेकिन जैसे जैसे मैसेज आते हैं मैं फ़ौरन फ़ौरन फ़ौरन रीड करती रहती हूँ। मतलब एक दूसरे से बातें, तो हमारा यही टाइम है ना कि हम एक दूसरे से बातें करें, तो बस नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, और क्या, नाराज़गी हो भी ना तो फौरन उसको दूर कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने नाराज़गी दूर कर दी है। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश हुआ हूँ और एफएम रेनबो जो है सुन रहा हूँ, गाने इन्जॉय कर रहा हूँ। रंजीत कुमार, सब बढ़िया, सब अपने हालचाल भी लिख रहे हैं, फटाफट बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है। दिग्दर्शन कविता का भी मैसेज आ चुका है मेरठ से, कह रहे हैं जी एमरीन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, आप भी बता दीजिए कैसे। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और सोनू का भी मैसेज आ चुका है, प्यारी सी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। दीपा का भी मैसेज आ चुका है, दीपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है। अच्छा लग रहा है ये जानकर कि सब सही है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। नरेंद्र सोनी का भी मैसेज आ चुका है, हाँ सब बढ़िया, अच्छी बात है। खैर चलिए, अब सबके पैगाम तो आ चुके हैं और अब नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। आज इसी बात पे बात करते हैं, मुझे लगता है कि आज हमें इसी बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये बताइए कि गुस्सा तो सभी को आता है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन कोशिश करते हैं ना हम नाराज़गी को जल्दी से दूर कर लें और पैचअप कर लें, ताकि जो है ना दिल और दिमाग परेशान ना हो। लेकिन जब गुस्से में होते हैं हम सब, अब गुस्सा भी आता है, कई बातों पर आता है, तो अब ये बताना है कि आप में से कितने मेरे जो दोस्त हैं गुस्से में भी पेशेंस रखते हैं। और बिल्कुल सही बताना है, अभी मुझे देखिए मैसेज से तो पता चल ही जाएगा, भुवनेश तुम्हारा भी पता चलेगा, और किसका पता चलेगा, समझ गए होंगे, सब समझ गए हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन मुझे अब ये बताना है कि गुस्से में भी जो पेशेंस लेवल है वो बरकरार रहता है या नहीं रहता है। सबके मैसेज का इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से फटाफट बताइए, और मैसेज प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्ट में होना चाहिए ताकि मैं सबके मैसेज शामिल कर सकूँ। 9868107070 पर एम्ब्रीन इंतज़ार कर रही है। अब ये मत कहिएगा मुझे तो गुस्सा आता नहीं, बहुत वैसे कम ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अमूमन गुस्सा आ जाता है, कई बातों पर आ जाता है, लेकिन उसमें पेशेंस कौन कौन रखता है मेरा दोस्त, फटाफट बताएं, इंतज़ार करिए। एम्ब्रीन सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम आपका अपना चल रहा है। मैसेज मसाला मिक्स एम्ब्रीन आपके साथ है और आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपका गुस्सा, आपका पेशेंस सब इस टाइम मेरे पास है और आपके पास भी है। गुस्से में अनिल शर्मा जी का मैसेज है, कह रहे हैं कि गुस्से में आज मैंने रखा तभी तो मैसेज लिख कर भेज रहा हूँ। इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। मुझे पता था कि मतलब एक्सपेक्ट मैं ही कर रही थी कि कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आप कहेंगे, और वैसे भी ये तो दिल से रिश्ता है ना से, तो कैसे रूठ सकते हैं, और मैं भी कैसे मतलब मैं आपको कैसे नहीं मना सकती। इतनी अच्छी बातें आपने लिखी है ना कि बस छा गए। अनिल शर्मा जी, हमेशा ऐसे ही रहिए, हमेशा हम अपने रिलेशंस को ना एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मजबूत बना के रखेंगे। रूठना, गुस्सा, ये तो सब क्या है, एक टेम्परेरी चीज़ है। इनसे क्या होगा, इनसे दूरियां बढ़ती हैं, हमें तो नज़दीकियां बढ़ानी है, हमें तो अपने रिलेशंस को एक अच्छा करना है ना। तो बस कोई रूठे तो तुरंत बना लीजिए, देरी करने से दूरियां बढ़ जाती हैं। अभी मौका है, रूठे को सॉरी कहिए, बाद में बाद मौका मिलता है या नहीं। आहा अनिल शर्मा, देखिए कितनी अच्छी बात कही है ना आपने, कितनी अच्छी लाइंस आपने भेजी हैं, मज़ा आ गया। और ये मैसेज किसका है, हम तो गुस्से में भी उल्फत का भरम रखते हैं। आय हाय, शमसुल कमर का मैसेज आया है, हम तो गुस्से में भी उल्फत का भरम रखते हैं, ज़रा सी बात पर रिश्ता नहीं तोड़ा करते। क्या बात है, इन्होंने बता दिया कि गुस्से में भी ये जो पेशेंस लेवल है ना वो बरकरार रखते हैं, ताकि रिलेशन जो है ना वो हमेशा हमेशा बना रहे। और दीपा का भी मैसेज है, दीपा आपने जितनी बातें लिखी हैं समझ में मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि आपने लिखा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो श्रीनगर गए हुए हैं, उन्हें कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, आप बहुत गुस्से में हो गए, लेकिन आपने क्या, उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे आप फौरन मान गई, ठीक है। तो वो पेशेंस लेवल आपका दिख रहा है, लेकिन जो आपने लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ दोबारा से जल्दी से मैसेज करो, क्योंकि आप बताना कुछ चाह रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैसेज है,

लिखा है एमरीन, हमें तो गुस्सा आता है बहुत आता है, और पेशेंस नहीं, पेशेंस जो है वो कई बार नहीं रख पाते हैं। लिखा है गलत को गलत जाकर कह देते हैं, नरेंद्र सोनी कह रहे हैं। तो ये तो खैर अच्छी बात है कि गलत को जाकर गलत कह देते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही थी नरेंद्र कि जब गुस्सा आता है तो अब कई जगह ऐसी भी होती हैं कि हम बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। अगर हमारे बहुत बड़े हैं तो हम उनसे कई बार नहीं कुछ ऐसा बातें नहीं कह पाते, तो उस वक्त पेशेंस लेवल जो है वो सही वाला काम करते हैं ना, मतलब कि आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं या वहाँ से चले जाते हैं, ये चीज़ मैं पूछ रही थी। और गुड इवनिंग जी, किसका मैसेज है? ये है नीलम, स्वाति और किशु का, आनंद विहार से। कहते हैं कि गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा, अच्छा, जब ये बहुत गु़स्से में होते हैं तो क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी कोशिश क्या करते हैं ये समझ में नहीं आया, अपने पर काबू करने की पूरी कोशिश करते हैं, मतलब वही वाली बात है कि पेशेंस लेवल को बढ़ाते हैं या तो खामोश रहते हैं, है ना। और लिखा है तुम्हारा हमारा मैसेज ज़रूर शामिल करेगा, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे। आज जो जो गुस्से में हो गए ना, मैं आज उसको मना के छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल मनाती ही रहूँगी, क्योंकि मुझे तो पता है ना क्या है कि रिलेशंस जो है वो जोड़ने में, मोहब्बत कायम करने में भाई इतना, मतलब इतनी मुश्किल से दोस्ती जो है वो मिलती है, कैसे छोड़ देंगे, कैसे। आपको गुस्सा रहे तो आज पेशेंस लेवल भी जो है ना जम जम कर खूब लेते हुए जाएंगे सबके सब। सुनते रहे मैसेज मसाला मिक्स। और राकेश का भी मैसेज आ चुका है, लिखते हैं कि गुस्सा तो कभी कभी आता है, ये भी बात बहुत अच्छी है भाई, कभी कभी आता है, कभी कभी आना चाहिए, बस आना चाहिए लेकिन कभी कभी आता है। और गुस्से में बदलने से पहले, शायद यही लिखा है, से पहले शांत भी हो जाता हूँ। अच्छा, कि अगर अपने आप को बदलें गुस्से में कि मैं कुछ ऐसे डिसीजन ले लूँ, उससे पहले क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं कुछ मिनट्स में, मतलब कुछ मिनट्स के लिए, और जो है सबकी सारी चीज़ों को भुला देते हैं ताकि गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। राकेश, ये भी सही है कि उस वक्त पर या तो चुप हो जाओ गुस्सा जब आ रहा है, या कहीं चले जाओ, या उन सब बातों को भूल जाओ। मेरे ख्याल से भूलना बहुत सही है, क्योंकि जब हम लोग भूल जाते हैं ना तो दिल के अंदर ना किसी के लिए भी कोई कोई कोई वो नहीं रहती, मतलब जिसे बोलते हैं ना शिकवा शिकायतें, वो नहीं रहती है। दानिश का भी मैसेज है, दानिश कैसे हैं आप, वेलकम वेलकम। लेकिन मैं शिकायत नहीं, अब जो है ना पेशेंस लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ा लेना है हम सबको, क्योंकि जहाँ हमारा पेशेंस लेवल लूज़ हुआ ना, वहाँ गुस्सा जो है ना वो हमारे ऊपर हावी हुआ। तो बस गुस्से को कम करना है, हटाना है, मतलब कम कर देना है, और हमें अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना है ताकि बातें भूलें और आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो गाना है वो प्ले कर दिया जाए। तो जल्दी से मुझे बताएं कि हम में से क्या आप सब, जब गुस्सा आता है तो गुस्से में पेशेंस लेवल रखते हैं ना या नहीं रखते हैं, बता दीजिए बिल्कुल सच सच 9868107070 पर मैसेज मसाला मिक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए। सुनते रहें ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक पर।

प्यारी लाइन्स ये जिंदगी ने आपसे मिलवा दिया। वाकई हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस जिंदगी में इतने प्यारे प्यारे दोस्त, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हमें मिले हैं। वाकई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स, और एमरीन तो आपके साथ है ही। आप देखिए ना नीलम क्या कहती हैं, नीलम कहती हैं कि जब अपने आप पर जब गुस्सा आता है तो गुस्से पर काबू रखती हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे से बड़े हैं और ये मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, इसलिए गुस्सा जो है कंट्रोल करती हूँ और गुस्से पर काबू पा लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, यही पेशेंस लेवल है, अगर ये बढ़ता बढ़ता बढ़ता चला जाए तो हमारे रिश्ते जो है ना सारे अच्छे ही रहें और टूटे ही नहीं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, पेशेंस रखना बहुत बड़ी चीज़ है वाकई में। और ये किसका मैसेज है, गुस्से में पेशेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि गुस्से की वजह

मालूम हो जाए। रवि जोशी का मैसेज है। रवि, नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा दोबारा से बताओ ना प्लीज़, फटाफट जल्दी से मैसेज करो। और ये मैसेज है मिसबा का मैसेज है, बिजनौर से, कहते हैं गुस्सा आना तो सही है पर उस वक्त सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। ओए होए, मैं लिखा है मैंने सीखा है कि चुप रहकर हम बहुत कुछ संभाल सकते हैं, रिश्ते जल्दी नहीं बिखरते हैं, इसलिए मैं गुस्से में चुप रहना बेहतर समझती हूँ और थोड़ा सा ठहर ठहर कर बात करती हूँ। अच्छी बात है क्योंकि गुस्से में अगर हम ठहर ठहर कर भी बात करेंगे या खामोश हो जाएंगे तो बात जो है ना वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई एक इंसान कितना बोल सकता है, गुस्से में बोलता रहेगा लेकिन जब ये देखेगा कि सामने वाला हमारा दोस्त कुछ बोल ही नहीं रहा, खामोश है, तो वो भी एक वक्त पर आकर खामोश हो जाएगा और लगेगा कि ये रिलेशंस को जो है ना बचाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा होता है क्योंकि दोस्ती में तो पता चलता है, हर रिश्ते में पता चलता है। भुवनेश का भी मैसेज है, भुवनेश भी कह रहे हैं कि कि गुस्सा तो वाकई लाजमी है कि गुस्सा भी आता है, लेकिन उसको जो है मेंटेन, वो जो है जो इन्होंने लिखा है कि मेंटेन भी जो है बहुत इनका पहला वाला मैसेज कहाँ गया, एंग्री बट मैसेज तो मैं आपका ले रही हूँ भुवनेश, अभी भी जो है एक शिकायत का मैसेज कर दिया है। रब्बा क्या हो गया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोबारा से एक शिकायत का मैसेज। उफ, कैसी शिकायत आपकी दूर करूँ, देखिए आपका मैसेज लिया है, आप में जितना भी बात कर रहे हैं, आप पेशेंस जो है ना वो बढ़ाना है, वैसे आपने भी बढ़ा लिया है क्योंकि मैसेज के बाद उसके बाद आपने फ़ौरन मैसेज भेजा है, यही चीज़ है, इसी पर हमको काम करना है। और काम क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है, पेशेंस जो रखने वाला काम है ना बहुत है, क्योंकि नहीं है आजकल मुझे लगता है कि बहुत कम हो गया है, पेशेंस लेवल ही बहुत कम हो गया है, लेकिन मुझे पता है मेरे दोस्तों में ना पेशेंस लेवल अच्छा है। आप देखिए आपको शिकायत का मैसेज आएगा नहीं, दोबारा तो नहीं आएगा, ये तो मुझे मालूम है, ये मुझे इतना यकीन है अपने सभी दोस्तों पर। नाराज क्यों होते हो, किस बात पे रूठे, आए हाय, नाराज क्यों होते हो, किस बात पे हो रूठे, अच्छा चलो ये माना तुम सच्चे हम ही झूठे, कब तक छुपाओगे हमसे, कब तक छुपाओगे हमसे हो प्यार करते, गुस्से का है बहाना दिल से हो हम पर मरते। आए हाय ललित, क्या बात है क्या बात है, ललित का ये मैसेज है, बहुत प्यारी बात कही, मतलब जो बात का आपने जो अंदाज रखा है ना वो मज़ा आ गया कि मतलब हर चीज़ में जो है ना वो इतनी खूबसूरती से मोहब्बत से भी रोया है, नाराज़गी को भी, कि आए हाय दिल में उतर गई। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और सुदर्शन किसका, सुदर्शन मुक्ति का, अनीता का भी मैसेज आ चुका है, सिमरन का भी मैसेज आ चुका है, और कोई कुछ भी बोले हमेशा शांत रहो क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। ओ माय गॉड, क्या एग्जांपल दिया है, मतलब ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक तो बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि कोई कुछ भी बोले शांत रहो क्योंकि शांति से सारे काम बहुत अच्छे अच्छे से बन जाते हैं, अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी जल्दी और भी मैसेज का इंतज़ार हो रहा है, एक और मैसेज आ चुका है, लिखा है एम्ब्रीन गुड इवनिंग, जहाँ लिखा है गुस्से का है, जहाँ तक बात गुस्से की, मुझे गुस्सा तब आता है जब आप मेरा मैसेज नहीं शामिल करती हैं। हाँ मुझे पता था ये किसका मैसेज है, नियमित का मैसेज है कि तब गुस्सा आता है जब मैं शामिल, इसके अलावा गुस्सा ही नहीं आता, सच सच बताना, इसके अलावा गुस्सा नहीं आता है, आता तो होगा अब लिखा है आपसे यही शिकायत है, कोशिश आपकी, अच्छा अब शिकायत तो दूर हो गई ना, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि शिकायत दूर कर ली ना, अब मुझे अगला जो मैसेज आना चाहिए ना वो है कि शिकायत शिकवा कुछ नहीं है, ना नाराज़गी है, दोस्ती है वो तो हमेशा रहेगी बस, ठीक है। अब मैं तुम्हारे मैसेज का ना इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अब अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा रही हूँ, मैं तो गुस्सा नहीं करूँगी तो मैंने पक्का सोचा हुआ है। मैसेज मसाला मिक्स सुनते रहिए और ये वाले जो गाने हैं बहुत प्यारे प्यारे, ये भी इंजॉय करते रहिए, कहाँ पर, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक पर।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम। आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स, और खूब मैसेज आ रहे हैं, भर भर के मैसेज आ रहे हैं, और जल्दी जल्दी शामिल कर लूँ क्योंकि गुस्सा तो मुझे दिलाना नहीं है, और अगर गुस्सा आ भी गया ना तो पेशेंस पर हम बात करें। पेशेंस रखना ना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको कोशिश करिए उसको इम्प्लीमेंट करने की, कि ज़रा उसको अंदर शामिल कर लें, अपने अंदर शामिल कर लें। घर हो या ऑफिस, शांति बनाए रखने के लिए ना गुस्से पर पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा पता है कौन कह रहे हैं, रंजीत कुमार कह रहे हैं। देखा, ये भी कह रहे हैं कि पेशेंस रखना ना बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं भी हो, घर हो, ऑफिस हो, इसलिए मैं गुस्से का घूंट पी कर रह जाता हूँ। ये अच्छा था, गुस्से का घूंट पी कर रह जाता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन उससे ये तो देखें ना कि रिश्ते भी बचे रहते हैं, और आपकी जो वो एनर्जी है ना, जो गुस्से में बहुत हम लोगों की खर्च हो जाती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है, उसको हम बचा लेते हैं। गुस्से में पता है कितना नुकसान होता है अपना भी, दिल और दिमाग का तो होता ही है। दिल और दिमाग तो बिल्कुल बेचारे, वो तो साइड होकर बैठ जाते हैं कि क्या ही करें। बाकी और भी जो ऑर्गन्स हैं ना, उन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गुस्से में। इसलिए कह रही हूँ कि पेशेंस पर जो काम है ना, वो करना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। गुस्सा करने के बजाय मैं कारण जानने की कोशिश करता हूँ, और समाधान उसका क्या हो सकता है वो सोचता हूँ, और जो और सही लगे तो बताता भी हूँ। यदि ना सुनना चाहते हैं तो कोई, मैं अपने मतलब अगर कोई नहीं भी सुनना चाहता है तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ। इन्होंने कहा कि गुस्से की वजह जानने की कोशिश करता हूँ ताकि उसका सॉल्यूशन कुछ निकल सके, और वो जो है ना गुस्सा जो है वो लड़ाई में जो है तब्दील ना हो, मतलब लड़ाई में ना बदल जाए। अच्छी बात है, बढ़िया बात आपने कही। कोशिश सबकी यही चल रही है कि गुस्सा नहीं हो, लेकिन ये देखो गुस्से के भी मैसेज आ गए हैं। अब कहाँ गया पेशेंस लेवल? लेकिन नहीं, पेशेंस लेवल है, मैसेज आए हैं कि अब गुस्सा नहीं है। और आज के टॉपिक पर ये क्या कहना चाहते हैं, देहरादून से मैसेज है आलोक का। जिसने गुस्से को काबू में करना सीख लिया, उसने सारा जहां जीत लिया। देखा, इसलिए जीवन में गुस्सा तो नहीं करें, और इन्होंने कहा योग को अपनाएं। वाकई योगा से भी बहुत, कहते हैं ना कि मेडिटेशन करने से कितना सुकून मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी चीज़ों की प्राप्ति होती है कि जो हम नहीं हासिल कर पाते। अब सुबह सुबह भाग रहे हैं ऑफिस के लिए।

जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, नहाना धोना ब्रश, कुछ नहीं। पेशेंस जो ये योग का जो बताया है ना इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई आलो की, कि इससे भी जो है ना हम अपने पेशेंस लेवल को बहुत बहुत बहुत बढ़ा सकते हैं। और ये खाली गुस्से में नहीं, बहुत जगह पर काम आता है, बहुत जगह पर काम आता है। और ये किसका मैसेज आया है, दानिश का भी। दानिश कह रहे हैं कि लिखा है गुस्से में, गुस्से से तो मैं दूरियां रखनी चाहिए, दूरियां रखनी चाहिए। और कभी गुस्सा आता भी है तो गुस्सा जब आता है तो बाहर चला, मैं ये जो है बाहर चले जाते हैं। मैसेज आप इस तरीके से लिखते हो दानिश कि वो समझ भी बिल्कुल नहीं आता है। कोशिश करती हूँ समझने की, तो आपका जो भी स्टाइल है उस स्टाइल को थोड़ा सा बदल लीजिए। बदलेंगे तो मुझे कोशिश ये होगा कि मैं मैसेज को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकती हूँ। वो पूरा पूरा कैप्स में करके आप ऐसे इस तरीके से करके लिखते हैं, और हर उस पर वो जो होता है ना फुल स्टॉप टाइप वो होता है, तो समझ नहीं आता है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज करोगे दानिश तो बहुत फ्लो में मैं मैसेज जल्दी जल्दी पढ़ पाऊंगी। गुड्डू का भी मैसेज आ चुका है, लिखा है कि जब मैं गाँव में होता हूँ ना, गुस्सा आता है तो कम से कम बोलता हूँ, चुप रहने की कोशिश करता हूँ। आह ऐसा क्यों, गांव में जाकर ही क्यों गुस्सा आता है, पहले तो मुझे ये बताओ। आ सकता है गुस्सा तो कहीं पे भी आ सकता है, बताया ना, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे गांव हो या शहर हो, गुस्सा तो कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन ये अच्छी बात करते हैं आपकी, चुप रहकर जो है ना, चुप रहने की कोशिश करते हैं और गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अच्छी बात। ये मैसेज है किसका, पंजाब से तो मैसेज है लेकिन समझ नहीं आ रहा नाम। लिखा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई बिना किसी वजह के छोड़ कर चला जाता है। सतपाल का मैसेज है, ये बात तो सही कही सतपाल, बिना किसी रीजन के गुस्सा करना या लड़ाई करना या छोड़ कर चले जाना या रिश्ते को खत्म कर देना, रिश्ते को तोड़ देना, तब बहुत गुस्सा आता है सही में। कि कोई रीज़न नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और गुस्सा करके आपने रिलेशन तोड़ दिया, ये गलत बात है। ये तो गुस्सा बनता है, या ये जायज़, मतलब ये बात आप, मुझे भी लग रहा है कि जायज़ है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि पेशेंस लेवल बढ़ाएं, और अगर कॉन्टैक्ट हो सकता है तो कोशिश कर सकते हैं वजह जानने की। तो बस वजह जब पता चलेगी तो रिलेशन जो है वो हमारा बच सकता है और बचेगा। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस टाइम पेशेंस लेवल पर। बहुत अच्छा वाला काम है ये। मैसेज मसाला मिक्स इंतज़ार कर रहा है आपके और मैसेज का, 9868107070 पर इंतज़ार बेसब्री से है। ये वाला गाना सुनते हैं, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: 6:55 और पूरे 27 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक मैसेज मसाला मिक्स। और अब देखें ना, आप जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। शिकवे शिकायतें नहीं होनी चाहिए, शिकवे शिकायतें सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आपने अपनी शिकायत की और उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब बात ख़त्म हो जाती है ना, तो रिश्ते जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं और मज़बूत बने रहे।

करते हैं, तो हमें भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखना है। ये छोटी छोटी बातों को तो नज़रअंदाज करते हुए चलना है। जब नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे ना, तो जो हमारा पेशेंस लेवल है वो हर चीज़ पर, जिसे बोलते हैं ना फतेह हासिल कर लेना, हर चीज़ पर फतेह हासिल कर लेगा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है पेशेंस लेवल को अपने अंदर बरकरार रखना। तो फिलहाल लैमरीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर अभी थोड़ी देर में मिलूंगी ना, अभी बस 8 बजे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आस

0: Where the Streets Have No Name. That was a song by Pet Shop Boys, and it went out for another friend, a listener friend from Noida, is Sumit. Thank you, Sumit, for your message. And, well, listeners, we are splitting for a very tiny break here. Stay tuned in. We'll be right back.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

नमस्कार, पूरे 8 बज चुके हैं। पेश हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए और बढ़ाया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल शुरू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संगीत नाटक अकादमी कल देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव का आयोजन करेगा। ये महोत्सव कल शाम 6 बजे से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ नाट्य मंचन के साथ शुरू होगा। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़क कर 24,052 पर आ गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया है। फीफा विश्व कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आठ बजकर 3 मिनट और पूरे 5 सेकंड। जी हाँ, ये आपका कौन सा टाइम है? म्यूजिक मस्ती। तो बस म्यूजिक के साथ मस्ती करनी है, एंजॉय करना है और इसे 1 घंटे पूरा रिलैक्स किया, अच्छे से रिलैक्स करना है।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

8:12 और पूरे 5 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती एम्ब्रीन के साथ। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर वक्त खुश रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम खुश रहें। अब वो खुशी अगर

म्यूजिक से भी मिल रही है ना, तो बस हासिल कर लीजिए। तो वही काम मैं कर रही हूँ और आप भी उसको एंजॉय करने की पूरी पूरी कोशिश नहीं करनी, एंजॉय करना है। सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

8:25 और पूरे 48 सेकेंड हो गए हैं। आप सुन रही हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिक मस्ती तो चल रहा है। और मुझे पता है कि जो म्यूजिक मैं प्ले कर रही हूँ उसमें उसको जो है ना आप खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही इंजॉय करती रहिए हमारे साथ, क्योंकि जब आप इंजॉय करते हैं तो यहाँ दिल को सुकून मिलता है। और सुकून लेना जो है ना, क्योंकि जब हम सुकून ढूंढते रहते हैं ना, कई बार सुकून ही नहीं मिलता है, और जब सुकून मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो दिल और दिमाग को सुकून देना बहुत ज़रूरी है, तो बस इस सुकून को बनाए रखें और हमारे साथ बने रहें, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर

जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

8:43 और पूरे 40 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक और प्रोग्राम में आपका अपना म्यूजिक मस्ती। हाँ, ये वाला गाना बहुत टाइम के बाद सुन रहे हैं, इंजॉय कीजिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती अमरीन के साथ। कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ। और फिलहाल टाइम तो मैं बता दूं ना क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, वो हो रहा है 8:52 और पूरे 7 सेकंड हो गए हैं। अब देखिए ना वक्त कितनी जल्दी, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी, क्योंकि वक्त ऐसे ही भागता है जल्दी, क्या करें, वक्त को पकड़ भी तो नहीं सकते, और अगर पकड़ लिया ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमें अपने लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही नहीं है, हमें तो वक्त के साथ चलना है और वक्त के साथ ही सारे कामों को अंजाम देना है। तो बस वक्त के साथ साथ जो काम मैं बताती रहती हूँ ना, क्या बताती रहती हूँ कि मतलब वक्त के साथ चलना है, वक्त के साथ भागना है, वक्त के साथ रफ्तार पकड़ लेनी है। तो फिर देखिए हमारे ये सारे काम कैसे बनते चले जाते हैं, फिर देखिए जो हमारी लाइफ है वो कितना सक्सेस की तरफ भागती। तो बहुत मतलब मैं ये वर्ड भी जो है ना ये कम है, मतलब पकड़ में आ जाएगी। तो बस कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ और इस प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती को एंजॉय करते रहें। फिलहाल बस एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक। और ये सफ़र जो है ना, ख़त्म सफ़र जो है ना कभी नहीं होता है, सफ़र जो है हमेशा चलता रहता है। और हमारा भी जो सफ़र है कभी नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। हमेशा कहती हूँ ना कि आने के लिए तो जाना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और जो इंतज़ार का जो मज़ा है वो वाकई इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा होता है कि बस जब वो इंतज़ार का जो फल है जब मिलता है तो मज़ा आ जाता है ना। मज़ा क्यों नहीं आएगा, मज़ा तो आएगा ही आएगा। फिलहाल एमडीन को भी अब दीजिए ना इजाज़त। हाय क्या करें, कह रही हूँ ना कि टाइम जो है ना उसके साथ हमें चलना पड़ता है, वक्त के साथ चलना पड़ता है। वक्त के साथ चलेंगे तो हर जो कोशिशें हैं, जो अंजाम है, वो बहुत ही प्यारा होगा। चलिए, हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का खास ख्याल रखिए और अपने पड़ोसियों का भी खास ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।

अग्रणी रेनबो ब्रा वक्त है मुख्य समाचारों का। भारत ने हॉर्मूज जल डमरो मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई है। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल शुरू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभारंभ का अनावरण किया। संगीत नाटक अकादमी कल देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव का आयोजन करेगा। ये महोत्सव कल शाम 6 बजे से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ नाट्य मंचन के साथ शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया है। फीफा विश्व कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया। आकाशवाणी के

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी साहब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और साथियों कहते हैं कि यादें कभी दस्तक नहीं देती, बस किसी धुन के सहारे दिल में उतर जाती हैं। और कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को याद करता है जिन्हें उस वक्त उसने कभी ख़ास समझा ही नहीं था। घर का खुला हुआ आंगन हो या फिर शाम को लौटते परिंदों की आवाज़, मोहल्ले की चाय की दुकान या फिर बिना किसी वजह के देर रात तक दोस्तों के साथ की गई बातें। वक्त जब गुजरता है तब एहसास होता है कि ज़िंदगी की असली दौलत तो बड़ी बड़ी कामयाबी नहीं बल्कि वो छोटे छोटे लम्हे थे जिन्हें हमने जी भर कर जिया था। आज की इस महफिल में कोशिश होगी कि गीतों के बहाने हम भी फिर से उन्हीं रास्तों पर चलें जहां यादें मुस्कुराती हैं, रिश्ते महकते हैं और दिल बेवजह हल्का हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नगमे के साथ जो आज भी सुना जाता है। जी हाँ, 90s का सॉन्ग है और यकीनन आपको पसंद आएगा। आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

और यकीन ये है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वैसे आपने महसूस किया कि कुछ खुशबुएं भी यादों की तरह होती हैं, पहली बारिश की मिट्टी की महक की तरह, या फिर किसी पुरानी किताब के पन्नों की खुशबू की तरह, या फिर माँ के हाथों से बनी चाय, या सर्दियों की धूप में बैठकर मूंगफलियाँ खाना। खैर, ये बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं। और अजीब बात यह है कि इन खुशबुओं का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन ये सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं और फिर बरसों पुराने लम्हे बिना आवाज़ दिए हमारी आंखों के सामने उतर जाते हैं। जैसे पुराने गीत भी कुछ ऐसे ही होते हैं ना कि ये सिर्फ धुन नहीं सुनाते, बल्कि कहें कि बीते हुए मौसम की खुशबू भी साथ लेकर आते हैं। इसलिए 90s के दशक के गीत जो हैं, गाने जो हैं, आज भी इतने अपने लगते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ संगीत नहीं था, एक पूरा दौर सांस लेता है। बहरहाल, ये अगला जो गीत मैं आपको सुना रहा हूँ ना, बड़ा खूबसूरत है। और आपने, अगर आपने 90s का दौर देखा है, तो यकीनन ये गीत आपको बेहद पसंद होगा। हालांकि आज के ज़माने में भी लोग इसे सुनते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं। आप भी सुनिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: और जब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और जब प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, और आपने कभी और क्या है कि ज़िंदगी में कुछ जगहें भी कहें कि इंसानों की तरह हमारी अपनी हो जाती हैं, कोई पुराना रेलवे स्टेशन हो, मैदान हो स्कूल का, या फिर कॉलेज का गलियारा हो, या घर की वो छत जहाँ बैठकर हम घंटों आसमान को देखा करते थे। पर साहब हमें तो उस जगह से भी मोहब्बत हो गई थी जहाँ हम अपने महबूब से मिला करते थे और आज शायद वो जगहें बदल गई होंगी, वहाँ नए लोग आ गए होंगे, लेकिन हमारी यादों में वो अब भी वैसे ही बसी हुई हैं। दीवारें बदल जाती हैं, रास्ते बदल जाते हैं, मगर उनसे जुड़ी हुई हंसी, शरारतें और छोटे छोटे सपने कभी पुराने नहीं होते। शायद इसलिए जब पुराने गीत बजते हैं ना, तो सिर्फ वो धुन सुनाई नहीं देती है, उन गलियों की आहट भी सुनाई देती है जहां हम हमारा बचपन और हमारी जवानी बेफिक्री से टहला करती थी। चलिए उसी एहसास को एक बार फिर से जीते हैं और अपने महबूब को याद करते हैं किस तरह से, ज़रा 90s के अंदाज़ में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और साहब, प्रोग्राम आप जानते हैं, प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। और यकीन मानिए कि ज़िंदगी में हर मुलाकात का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। कुछ लोग हमें हंसना सिखाते हैं और कुछ लोग भरोसा करना सिखाते हैं और कुछ लोग चुपचाप हमें मजबूत बना देते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी का सबसे गहरा असर डाला था हमारी ज़िंदगी पर, उन्होंने शायद कभी खुद ये महसूस भी नहीं किया होगा कि उनकी ज़िंदगी में हम इतना असर डाल पा रहे हैं। वैसे अगर कोई टीचर की कही हुई बात या फिर किसी टीचर ने आपसे कही हो या किसी दोस्त का कंधे पे रखा हुआ हाथ हो या फिर किसी अजनबी की छोटी सी मदद, ये सारी चीज़ें हमें बरसों याद रहती हैं, क्योंकि उस मोमेंट पर उन्होंने हमारा साथ दिया था जिस वक्त हमें उनकी ज़रूरत थी। इसलिए जब भी मौका मिले किसी की ज़िंदगी में आसानी बोझ मत बनिए, बल्कि उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए उनका साथ दीजिए। और हो सकता है कि आपकी एक मुस्कुराहट किसी की सबसे प्यारी याद बन जाए। बहरहाल, ये अगला गीत आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है।

कहते हैं घड़ी की सुइयां कभी रुकती नहीं है, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। किसी अपने के साथ पी हुई एक कप चाय का प्याला हो, या फिर बारिश में भीगे हुए कहीं लंबी बातें की गई हों, भीगते हुए किसी के साथ सफ़र में खिड़की से बाहर देखते हुए सुनाया गया कोई गीत हो, या फिर यूं ही किसी का ये कहना कि अपना ख्याल रखना। यकीन मानिए, ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी कहें कि सबसे असली खुशी या फिर बड़ी कामयाबियों में नहीं होती, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हमें खुशी देते हैं। आज किसी से मिलकर कहिएगा, दिल से कहिएगा कि आप जैसे भी हैं अपना ख्याल रखना। यकीन मानिए कि उसे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आज आपके पास फुर्सत है तो मोबाइल की स्क्रीन पर मत बिठाइए, मोबाइल की स्क्रीन पर आप घंटों मत बिताइए, और फोन उठाइए और उससे बात कीजिए जिसे शायद आपकी ज़रूरत है। बहरहाल यादों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल गीत और सुनते हैं।

ज़िंदगी कितनी दिलचस्प किताब है। इसमें कुछ लोग पूरी कहानी बन जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पन्ना होकर भी पूरी उम्र हमें याद रखते हैं। वैसे ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बस चंद लम्हों की होती हैं, लेकिन उनकी जो गर्माहट है बरसों तक हमारे साथ रहती है। किसी मुसाफिर से ट्रेन में हुई बातचीत हो, या फिर किसी पड़ोसी की दुआ, या किसी उस्ताद की नसीहत, ये सब हमारी ज़िंदगी के ऐसे किरदार हैं जो चुपचाप हमें बेहतर इंसान बना जाते हैं। इसलिए जब भी किसी से मिलिए, अपने लहजे में मोहब्बत रखिए। कौन जाने आपकी आवाज़ की यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। बहरहाल अगला गीत आप तक आ रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। हम अक्सर कहते हैं कि काश वो दिन फिर से लौट आए, लेकिन शायद जिंदगी का हुस्न इसी बात में है कि दिन लौट कर नहीं आते बल्कि उनकी यादें लौट कर आ जाती हैं, और यही यादें हमें मुस्कराना सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती है। और वैसे जो वक्त गुजर गया उसे अफसोस बनाकर मत रखिए, उसे कहें कि उसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि हर गुजरा हुआ लम्हा हमें कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाता है। अगर किसी ने साथ निभाया तो वो याद बन गया, अगर किसी ने साथ छोड़ दिया तो वो भी एक सबक बन गया। दोनों ही हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती हिस्से हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है। बहरहाल अगला नजराना आप तक पेश कर रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है, यादें ताज़ा हो जाएंगी और चेहरे पे मुस्कान भी आएगी।

और जब देखते ही देखते आज की महफिल अपने इख्तिमाम तक पहुंच गई है और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद, और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपने कीमती लम्हे हमारे साथ बांटने के लिए। बहरहाल रुखसत होने से पहले बस एक छोटी सी बात ज़रूर कहूंगा कि ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नई सुबह दिखाती है, लेकिन हर शाम हमसे एक दिन लेकर चली जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके अपने लोग कभी ये ना कहें कि काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। अपनों को अपना वक्त ज़रूर दीजिएगा और अपने लफ्ज़ों में नरमी रखिए, और जब भी मौका मिले किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बन जाइए। यकीन मानिए कि इंसान दुनिया से चला जाता है, मगर उसका अच्छा बर्ताव और उसकी मोहब्बत लोगों की यादों में हमेशा ज़िंदा रहती है। और इसी दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत लम्हों, सच्चे रिश्तों और मीठी यादों के साथ आबाद रखें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। 11 बजे फिर मुलाकात होगी।

आकाशवाणी पर वक्त है अब मुख्य समाचार का। भारत ने हॉर्मूज डमरू जल डमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में आज विरासत के साथ चलना आवश्यकता से पहचान तक शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी 24 जुलाई तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया है। आकाशवाणी के पर अब ये थे मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जैसा आप 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप और प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगी महफिल। जिंदगी हमें हर रोज बहुत कुछ सिखाती है, शहरों का शोर, बाजारों की हलचल, जिम्मेदारियों की आवाज, लेकिन इन सब के बीच हमारे दिल की आवाज अक्सर कहीं दब जाती है। गजल शायद उसी आवाज का नाम है जो शोर में भी सुकून तलाश लेती है। ये हमें ठहरना सिखाती है, सुनना सिखाती है और सबसे बढ़कर महसूस करना सिखाती है। और आज की इस महफिल में कोशिश यही रहेगी कि कुछ पल के लिए हम दुनिया की रफ्तार से थोड़ा अलग होकर अपने दिल के करीब बैठें, क्योंकि जो इंसान अपने दिल से जुड़ा रहता है वो कभी तन्हा नहीं होता।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम के लहरों पर। और साहब, कभी कभी हम आईने के सामने तो रोज खड़े होते हैं, लेकिन अपने दिल के सामने खड़े होने की फुर्सत नहीं निकाल पाते। हम ये जरूर देखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान है या नहीं है, मगर ये काम भी पूछते हैं कि दिल आज भी उतना ही रोशन है या नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ ऊंचा मकाम हासिल करना नहीं है, बल्कि असली कामयाबी तो वो है जो मकाम बदल जाए। यानी असली कामयाबी तो ये है कि मकाम बदल जाए, लेकिन इंसान का लहजा, उसकी तहजीब और उसका दिल ना बदले। गज़लें हमें यही दिखाती हैं कि अल्फाज जब तक मुकम्मल नहीं होते, जब तक उनमें एहसास शामिल ना हो, और एहसास वही पैदा होता है जहाँ दिल में नमी और नरमी और नज़र में मोहब्बत हो। बहरहाल, ये अगला नजराना आपके लिए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कहते हैं इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं बल्कि उसके लहजे से होती है। मीठे अल्फाज कभी जेब हल्की नहीं करते और दिल हमारा ज़रूर भर देते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी आवाज़ भी एक दुआ बन सकती है और एक शिकायत भी बन सकती है। किसी थके हुए इंसान से मोहब्बत से की गई दो बातें उसके पूरे दिन का बोझ हल्का कर सकती हैं। शायरी और गज़ल हमें यही सलीका सिखाती है, कम बोलिए मगर ऐसा बोलिए कि अल्फाज के बाद भी उसकी खुशबू बाकी रह जाए। आज की ये गज़ल भी नरमी, तहजीब और दिल की कैफियत को बड़े सलीके से बयां करती है। आइए सुनते हैं।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: हम सब जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ जमा करते हैं और साहब किताबें, तस्वीरें, ख़त, यादें, ये सब आप अपनी ज़िंदगी में जमा करते रहते हैं, लेकिन शायद सबसे कीमती चीज़ जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं वो है लोगों की दी हुई मोहब्बत। दुनिया की हर दौलत एक दिन यहीं रह जाएगी, लेकिन किसी की दुआ, किसी की नेक नियत और किसी के दिल से निकली हुई दुआ उम्र भर हमारा साथ देगी। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि अपने हिस्से की मोहब्बत खर्च करते रहो, ये वो दौलत है जो जितनी बांटो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और गज़लें भी मोहब्बत को सिर्फ इश्क तक सीमित नहीं रखती हैं, वो इंसानियत, रिश्तों और दिल की रोशनी की भी बात करती हैं। तो इसलिए गज़लें भी अपनी ज़िंदगी में रखिए और खूबसूरत नजराने हम FM रेनबो पर आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी के, सुनते रहिए है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जब आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम है रंग महफिल। कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान सारी उम्र सुकून की तलाश में भटकता रहता है। कोई उसे दौलत में ढूंढता है, कोई शोहरत में, कोई ऊंचे मकाम में उसे ढूंढता है, लेकिन सुकून अक्सर वहाँ मिलता है जहाँ दिल शिकायत करना छोड़ देता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब दूसरों से मिलाना बंद कर देते हैं, तब अपने हिस्से की खुशियां नज़र आने लगती हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है और हर शाम शुक्र अदा करने का वक्त होता है। बहरहाल, शायर बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहता है कि जिसे जो मिला उसी में रज़ा ढूंढ ली उसने, यही हुनर उसे हर हाल में मुस्कुराना सिखा गया।

जिंदगी हमें हर रोज ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से होती है। ये आप भी जानते होंगे। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी ही दिल को सुकून दे जाती है, और कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी दिल तक नहीं पहुंच पाते। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा इंसान बनने में पूरी उम्र लग जाती है और बुरा बनने में सिर्फ एक लम्हा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ भी जाएं अपने पीछे अच्छे अल्फाज, अच्छी यादें और एक मुस्कुराहट ज़रूर छोड़ कर जाएं, क्योंकि यही चीज़ें उम्र से लंबी होती हैं। बहरहाल अब सुनते एक ऐसी गज़ल जो रिश्तों की नरमी और इंसानी जज्बात को बड़ी खूबसूरती से पेश करती हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेडियो चैनल 102.6 FM बिलेरू पर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। जिंदगी को हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों में मत तलाशिए। कभी सुबह की ठंडी हवा में, किसी बच्चे की मासूम हंसी में, और किसी बुजुर्ग की दुआ में, किसी दोस्त की बेवजह आई हुई कॉल में, और फिर किसी पुराने गीत की धुन में जिंदगी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मुस्कुराती हुई मिलेगी। बहरहाल गज़लें हमें ये याद दिलाती हैं कि इंसान सिर्फ सांसों से नहीं जीता, बल्कि वो एहसासों से भी जीता है। और जब एहसास जिंदा रहें तो उम्र चाहे जितनी भी हो, दिल हमेशा जवान रहता है। इसी दुआ के साथ कि अपनी ज़िंदगी अदब, मोहब्बत, सुकून और खूबसूरत लम्हों से आबाद रखेंगे आप, मुझे इजाज़त दें। और जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे महफिल। रात्रि के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत ने होमुर्जी जल डमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका के संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू होगा। अधिकांश निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेमन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में विरासत के साथ चलना आवश्यकता से पहचान तक शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी 24 जुलाई तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। समाचार समाप्त हुए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेमन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। बंकिंगहम में खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है। अब

एसएमएस कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

सुहानी रात कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस समय रात्रि के ठीक 2 बजे हैं। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत ने होमुर्जी जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका में

संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राजस्थान में जयपुर में आयोजित होने वाले विधायक गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्य

आयामी के आठवें चरण की शुरुआत करेंगे। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेमन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच जारी। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन 2-0 से आगे। मुख्य समाचार अब समाप्त हुए।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बब्बल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की 1178000 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं।

वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है हम आधी रात के 3:02 और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और शो का नाम है मिडनाइट मेलोडीज। इसमें नॉनस्टॉप गानों का आप मजा लीजिए। शुरुआत करते हैं शुभम शिरुला और आकाशदीप सिंगर की आवाज में इस गाने के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुबह के 4 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवाहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कल रवाना हुए। यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई है। बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने

के 4:02 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने और कार्यक्रम का नाम है सारे गामा। तो ऐसे ही गानों का आनंद लेते रहिए और झूमते रहिए।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दी स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

सुबह के 5 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया और फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अभी समय हुआ है सुबह के 5:03 और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन कार्यक्रम आराधना में। शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा और नरसी फिट की आवाज में इस भजन के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।